मीडियम वेव 396.8 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। हमारे कार्यक्रम आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 30 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 50 सेकंड हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत

0: दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आरंभ करते हैं इस देशभक्ति गीत के साथ। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। देश प्रेम की भावना से उत्पुरुत इन भावों के साथ आइए सुने समूह स्वर में ये देशभक्ति गीत।

सच्ची भक्ति मंदिर के घंटियों में नहीं, उस इंसान के आचरण में गूंजती है जो हर जीव में भगवान देखता है। भगवान के प्रति सच्ची भक्ति भावना को उजागर करता, आइए सुने हरिओम शरण का गाया ये भजन।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:20 होने को हैं। लीजिए अब सुनिए आज का चिंतन।
1: मनुष्य का जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। संघर्ष का सकारात्मक पक्ष परिश्रम एवं चेष्टा करने को प्रेरित करना है। कभी कभी परिस्थितियां तनाव को जन्म देती हैं। तनाव मुक्त होने का सरल उपाय तनाव को हल्के में लेना है, जिसमें हास्य, मनोरंजन, संगीत, बच्चों के साथ समय व्यतीत करना अन्य हैं। हंसना मनुष्य की स्वाभाविक प्रक्रिया है। विचारकों ने इसे हंसता हुआ प्राणी कहकर परिभाषित किया है, पर बढ़ती हुई तनावपूर्ण जीवन शैली ने मनुष्य का हंसना गुनगुनाना भी भुला दिया है। इस भूल के कारण शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। व्यक्ति अनेक व्यथाओं से घिर जाता है। जीविका कमाने का संघर्ष एवं भौतिकता को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने की होड़ ने मनुष्य की प्रसन्नता को छीन लिया है। वह भूल गया है कि सफल जीवन के लिए हंसती हंसाती हल्की मनस्थिति ही आवश्यक है। अकारण चिंतित एवं गंभीर बने रहने से कुछ प्राप्त नहीं होता। जीवन में चाहे जितना भी संघर्ष करना पड़ता हो, शारीरिक मानसिक जटिलताओं का सामना करना होता हो, इससे जीवन में शुष्कता को प्रवेश नहीं पाने देना चाहिए। हंसी का फव्वारा ही वह स्रोत है जो शरीर में रोग मुक्त करने वाली जीवनी शक्ति को बढ़ावा देता है और मन में नया उत्साह पैदा करता है। व्यक्ति में स्वयं अपने प्रति विनोद की भावना होनी चाहिए। यहाँ काम को गंभीरता से न लेने का अभिप्राय गैर जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी मनस्थिति है जो कार्याधिक्य से प्रभावित नहीं होती। हंसी प्रदान करने वाले चिकित्सकों ने यह भी निर्धारित कर दिया है कि एक मजदूर को दिन में कितनी बार हंसना चाहिए। हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। शरीर में पेट और छाती के बीच एक डायफ्राम होता है जो हंसते समय कंपित होता है, जिससे सारे आंतरिक अवयवों में गतिशीलता आती है। नियमित रूप से हंसना शरीर के सभी अवयवों को ताकतवर और पुष्ट बनाता है।

0: एकाकीपन थकान मानसिक तनाव से राहत दिलाता है। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि अधिक हंसने वाले बच्चे अधिक कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। हंसना उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रख्यात सामाजिक चिंतक और लेखक डेल कार्नेगी का कथन है कि हमें हंसी या मुस्कुराहट पर कुछ खर्च नहीं करना पड़ता है, यह बहुत कुछ पैदा कर सकती है। पाने वाला भी तृप्त हो जाता है और देने वाला कभी गरीब नहीं होता। रोग से दूर रहने का अचूक उपाय हास्य है। जब खुलकर कहकहा लगाया जाता है तो उदर, फेफड़े और यकृत सभी का मसाज होता है। प्रत्येक मनुष्य हंसने का प्राकृतिक रहस्य समझ ले तो वह बीमारी से बच सकता है। हंसने को संक्रामक रोग की तरह फैलने दिया जाए तो विशेष रोगों पर बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। एक विचारक ने कहा है, अगर तुम हंसोगे तो दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, अगर तुम रोओगे तो कोई तुम्हारा साथ न देगा। जीवन को सामाजिक बनाने के लिए भी हास्य की आवश्यकता है। दैनंदिन जीवन के तनाव से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय है जीवन को एक खेल की तरह जिया जाए, अपनी बेवकूफियों पर स्वयं हंसा जाए व दूसरों को प्रफुल्ल रखा जाए, हंसी खुशी का वातावरण बनाए। यही मनुष्य जीवन की स्वाभाविक स्थिति है।
1: ये था आज का चिंतन। आलेख और स्वर माधुरी महापात्र का था। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:25 होने को हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का गायन, स्वर ए हरिहरण का, संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

जगत के समस्त जीव मनह रोग से ग्रस्त हैं। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, सभी जीव हर्ष, विषाद, भय, प्रीति और वियोग के दुख से दुखी हैं। ये रोग सबको व्याप्त हैं, किंतु इनकी प्रतीति विरलों को ही होती है। विषय वासना के रूप में यह रोग मुनियों के हृदय में भी उपजते हैं। इनके निदान के लिए एकमात्र संजीवनी जड़ी है भक्ति, किंतु इस औषधि के लिए आवश्यकता होती है एक साधन की, और वो साधन है श्रद्धा युक्त सुबुद्धि। इस उपचार से ये रोग मिट जाएं तो मिट जाएं, अन्यथा करोड़ों उपाय करके भी मनह रोगों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। मन के स्वस्थ होने से आत्मिक बल बढ़ता है और उसके फलस्वरूप माया मोह से विराग उत्पन्न होता है, जिसकी परिणति प्रभु प्रेम में होती है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन। स्वर ए हरिहरण का था। संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:35 होने को हैं। अब लीजिए सुनिए कृषि सामी की बेड़ा खड़ा चुकोट।
1: किसान भाई बहन मन, जसन तुम्हें जानास कि आमी तुमके कई एक सरकारी योजना मंच जानकारी देते रहो से जे चले तुम्हें सपाए लोग सरकारी योजना मंच लाभ धरुक सकास। आज ही बोले आमी तुमके कोटो सरकारी योजना चो जानकारी देऊ से। ए योजना चो नाव राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना है। एके इनाम योजना बोले बलुआत केंद्र सरकार लोग मन के सस्ता ने खातो जिनिस मन देतो काजे ए योजना चुमूर करली से। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना चुमूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अप्रैल 2016 के करला। ये अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग पोर्टल है जेचो भीतरे रलो कृषि उपज विपणन समिति मन और दूसर कृषि मंडी मन के नेटवर्क ले जुड़ून गोटुक बड़े बाजार बनाला से। यथा कोनी बले किसान व्यापारी देश चो कोनी बले कृषि मंडी ले सामान घिनुक और भी कुकला सके। ए योजना भीतरे राज्य चो कृषि बाजार के कई बाजार ने बाटुआत और हुंचो उपज मन के आंतो नेतो हिसाब के दखुआत। इनाम संगे जुड़तो राज्य चो मंडी मन चो जरूरत के पूरा करतो और हुंचो हिसाब ले चलातो रहे। ए योजना भीतरे हरियाणा चो दुई मंडी अम्बाला और शाहबाद के 1 जून 2016 के इनाम संगे जोड़ला से। राष्ट्रीय कृषि बाजार मंडी के गोटुक नेटवर्क ने जोड़ून किसान और कृषि व्यापारी मन के आमने सामने करे से। ये योजना घिनतो लोग मन के देश चो कई मंडी मन ले जोड़े से। दूसर राज्य चो लोग बोले आप लो राज्य ने रहून दूसर राज्य चो सामान घेनुक सकोत। राष्ट्रीय कृषि बाजार कसन काम करुआ बोलो ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एचो बाढ़ती काजे काम करे से। एचो काजे इंटरनेट व्यापार पोर्टल बनली से। एचे संगे कृषि उपज मंडी चो कर्मचारी और व्यापारी मन चो ट्रेनिंग काजे पैसा बोले दे से। राष्ट्रीय कृषि बाजार चो उद्देश्य बिक्री और कीमत काजे बाजार मंच तैयार करतो रहे। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना भीतरे राज्य भर चो सपाई व्यापारी मन चो गोटुक लाइसेंस हो दे जोन राज्य चो सपाई बाजार मन ने मान्य हो दे। राष्ट्रीय कृषि बाजार चो का लाभ है के बोले जाना। ए योजना भीतरे किसान मन आप लोग लगे चो मंडी ने उपज के बिकुक सकोत। राज्य चो व्यापारी मन मंडी ने ई नाम ले देश चो दूसर बाजार तक अमरुक सकोत। कोचिया कम हो दे देश भर ने कृषि सामान मन चो कीमत एक समान हो दे। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना काजे काय का जरूरी दस्तावेज लागे से। ये योजना चो लाभ धरतो काजे एक कागजात मन हो जरूरी है जसन आधार कार्ड चो फोटो कापी राशन कार्ड चो फोटो कापी मतदाता पहचान पत्र पासपोर्ट साइज चो फोटो बैंक पासबुक चो फोटो कापी। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना ने ऑनलाइन पंजीकरण करातो काजे ए ऑफिशियल

कार्यक्रम हुलहुली में अभी आप सुन रहे थे भारत और साथियों का बजाया भीम संदेव पाठ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज की सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आज रात 9:30 पर कार्यक्रम साहित्य भारती हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह और सुबह 9:00 कार्यक्रम बातों बातों में। इन दोनों ही कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। अब से थोड़ी ही देर में सुबह 7:05 पर होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। इसके आकर्षण होंगे हास्य तरंग सब्ज बाग, प्रस्तुति होगी अवध किशोर शर्मा की, पत्रकारिता में हिंदी की भूमिका विषय पर आशा रानी पटनायक की वार्ता और साथ ही होगी फिल्मी गीतों की मधुरी माँ। सुबह 9:15 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। कार्यक्रम

0: एक ही फिल्म से आप सुन सकते हैं सुबह 9:30 पर। आज का हमारे कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्म होगी प्यार की जीत पर। आज जी जो सगा ये कार्यक्रम होगा सुबह 10:00। इसमें सुनिएगा अर्जुन सिंह नाग से बलबीर सिंह कच्छ की ली गई भेंटवार्ता। लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दू में सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे सीएल मार्कंडे और साथियों के गाये छत्तीसगढ़ी लोकगीत। कार्यक्रम एक ही कलाकार सुबह 11:00। आज का हमारे ये कार्यक्रम केंद्रित होगा चरित्र अभिनेता परेश रावल पर। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता हम पेश करेंगे दिन के 11:30 पर। फरमाइशी लोक गीतों का फोन इन कार्यक्रम लोकरस सुनिएगा दिन के 12:00। प्रस्तुति होगी सुखचंद मंडावी की, संयोजन चंद्र ऋषि ठाकुर का होगा। कृषि सामयिक की बेड़ा खाड़ा चुगोट का पुनः प्रसारण हम करेंगे दोपहर 1:05 पर। दोपहर 1:10 का समय होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम श्रोता सुमन का। कार्यक्रम कला और कलाकार दोपहर 2:30 पर। हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5:05 पर सुनिएगा देशभक्ति गीत। युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:10 पर। शाम 6:35 पर हम आपको सुनवाएंगे मेघनाथ पटनायक और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत। हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर शाम 7:00। प्रायोजित कार्यक्रम फोन इन किसानवाणी का प्रसारण हम करेंगे शाम 7:30 पर। लोक गीतों का कार्यक्रम जोनी उजर होगा रात 8:00। इसमें सुनिएगा सुखमती और साथियों के गाए भत्री लोकगीत। पीलामन का जिगोट ये कार्यक्रम सुनिएगा रात 8:30 पर। प्रस्तुति होगी संतोष कुमार बघेल की। रात 9:15 पर आमचो रान आमचो जीवना कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकेंगे संतुराम मौर्य से बलबीर सिंह कच्छ की ली गई भेंटवार्ता। और रात 10:00 लोक वाद्य धुन के कार्यक्रम पाड़ में सुनिएगा मावली माता पाड़ और फिरंता देवी पाड़। वादक कलाकार होंगे मंगलू और साथी। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज की सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। संस्कृत में समाचार अब से थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहः नूतनस्य क्वाड्रिपार्टाइड सिक्योरिटी ग्रिड इत्यस्य प्रवर्तनेन सीमा प्रबंधने प्रमुखस्य परिवर्तनस्य घोषणाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् अस्माकं सीमायाः रक्षणम् अवैधप्रवासस्य निर्मूलनं च राष्ट्रस्य जनसांख्यिक्याः रक्षणाय महत्वपूर्णमस्ति। सः ह्यः गुजरातस्य भुजनगरे भारत पाकिस्तान सीमायां सामरिकदृष्ट्या महत्वपूर्णानां G7 तथा G13 बॉर्डर आउटपोस्ट इत्येतेषाम् उद्घाटनानन्तरं सैनिकान् जनसमूहं च सम्बोधयन् आसीत्।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: म्यांमार देशस्य राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग इत्येषः अद्य प्रातः 5-दिवसीय भारत यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्ष्यति। तेन सह नैके मंत्रिमंडलस्य मंत्रिणः वरिष्ठाधिकारिणः व्यापारनेतारः

0: उच्चस्तरीय प्रतिनिधिदलं च भविष्यति। राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य एषा प्रथमा भारतयात्रा भविष्यति। अद्य अपराह्ने राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः नवदिल्ल्यां प्राप्स्यति। सः सायंकाले विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण सह मेलनं करिष्यति। श्वः म्यान्मारदेशस्य राष्ट्रपतिः म्यान्मार भारत व्यापार मञ्चे भागं ग्रहीष्यति इत्यपेक्षास्ति। सोमवासरे राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह द्वयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकं सम्बन्धं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यति। सर्वकारः अवदत् यत् देशे पेट्रोल डीजल एलपीजी इत्येतेषां पर्याप्तः भण्डारः अस्ति। सर्वे शोधनागाराणि इष्टतमस्तरे एव प्रचलन्ति। नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयीय मन्त्रिमण्डलस्य विवरणं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवा सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् प्राकृतिक गैस इत्यस्य उत्पादनं सर्वकालिकोच्चतमस्तरे अस्ति यत् प्रतिदिनं एलपीजी इत्यस्य 290,000 टन परिमितम् अस्ति। श्रीमती शर्मा सूचितवती यत् कस्यामपि एलपीजी वितरण संस्थायां शुष्कतायाः सूचना न प्राप्ता। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन समग्र शिक्षाभियानस्य अन्तर्गतं निधि प्रसारणस्य तस्य उपयोगस्य च विषये विस्तृत समीक्षा सभायाः अध्यक्षता कृता। यस्याः लक्ष्यं समग्र शिक्षा 3.0 अधिकं दक्षं पारदर्शकं तथा परिणाम अभिमुखीकरणम् आसीत्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीप्रधानः अवदत् यत् समग्र शिक्षाभियानं पीएम पोषणम् उल्लासः पीएम श्री इत्यादीनां प्रमुखयोजनानां एकीकृत पद्धत्याः प्रसारणम् अस्मिन्नेव वर्षे आरभ्यते। सः अवदत् यत् एतेन विद्यालयीय शिक्षाव्यवस्थायां बृहत्तरः समन्वयः प्रभावश्च सुनिश्चितः भविष्यति। केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् कृषकाणां कृते बीजानाम् उपलब्धता सुनिश्चेतुं 74,000 क्विंटल परिमितस्य राष्ट्रिय बीज संरक्षणस्य स्थापना कृतास्ति। सः ह्यः नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य खरीफ अभियानस्य कृते कृषि विषयकस्य राष्ट्रिय सम्मेलनस्य द्वितीय दिने प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयनासीत्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतसायं महाराजा यादविन्द्र सिंह अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडांगणे न्यू चण्डीगढ़ नगरे महत्वपूर्णे क्वालिफायर द्वितीय स्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 7 पराजितम्। अधुना गुजरात टाइटन्स दलं श्वः रविवासरे अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: गृहमंत्री ने ड्रोन रडार निगरानी टावर अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों वरिष्ठ अधिकारियों और

0: व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति की कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कल कहा कि तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एज एआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। हमारे कार्यक्रम आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

सुबह की लालिमा सिर्फ रोशनी नहीं लाती, साथ में एक मौका भी लाती है खुद को बेहतर बनाने का। गर्मी की इस सुबह में हमें पसीना बहाने और मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ठंडी छांव मेहनत के बाद ही अच्छी लगती है। तपिश भरी नई सुबह में नए इरादे और नई शुरुआत के भाव के साथ आज का नमस्कार जगदलपुर लेकर हाजिर हूं मैं सुशील सिंह ठाकुर। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। कार्यक्रम में आज है हास्य तरंग, वार्ता और सुमधुर गीतों की मधुरिमा। श्रोताओं, ज्येष्ठ मास का ये समय जिसमें दिन गर्म हैं, उमस भरे हैं और साथ ही लंबे हैं, सूरज की चिलचिलाती गर्मी का प्रभाव चरम पर है और सभी को छांव और पंखी कूलर की हवा रास आ रही है।

0: श्रोताओं, गर्मी के इस मौसम में हमारा शरीर ऊर्जाहीन महसूस करता है। शरीर में थकान होती है और केवल आराम करने को जी करता है। और इन परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण होता है हम हमारे शरीर को आहार कैसा दे रहे हैं। गर्मियों में हमें हिदायत दी जाती है कि हम भरपूर मात्रा में पानी पिएं, फल सब्जियों का सेवन करें और अपने आहार में ऐसी चीजें शामिल करें जो हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाए और हमें ऊर्जावान रखे। मीठे खाद्य पदार्थों से परहेज और गर्म मसालेदार और अत्यधिक नमकीन खाद्य पदार्थों में कमी का भी हमें इस मौसम में ध्यान रखना चाहिए। गर्मी में कम भोजन लेकिन छोटे अंतरालों में तरोताजा भोजन को प्राथमिकता देना उचित माना जाता है। श्रोताओं, जब भी आहार और भोजन की बात आती है तो एक ऐसी सब्जी का जिक्र जरूर आता है जिसके बिना भारतीय व्यंजन मानो अधूरा सा लगता हो। वो सब्जी है आलू। श्रोताओं, आज हम आलू की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज 30 मई का दिन पूरे विश्व भर में इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो यानी अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा इस दिन की शुरुआत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में भूखमरी को खत्म करना और इस बहुमुखी और पौष्टिक फसल के इतिहास, कृषि और पोषण संबंधी फायदों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। श्रोताओं, आयुर्वेद के अनुसार आलू प्रकृति में शीतल माना जाता है। इसमें भरपूर पोषक तत्व होते हैं जो गर्मी में हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करते हैं और ऊर्जा देने से लेकर वजन नियंत्रण में भी मदद करते हैं। श्रोताओं, गर्मी में जहां सही भोजन की आवश्यकता होती है वहां आलू दुश्मन नहीं बल्कि साथी की तरह हमारी सहायता कर सकता है, बस तरीका सही होना चाहिए। श्रोताओं, गर्मी में संतुलित भोजन ही सबसे अच्छी दवा है। चाहे आलू हो, फल या सब्जियां, हमारे आहार में यदि सही तरीके से शामिल हो तो हमारा स्वास्थ्य गर्मी में भी बेहतर हो सकता है। श्रोताओं, गर्मी के समय में संतुलित भोजन करें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, ज्यादा पानी पिए, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।
1: आलू की भाजी, बैंगन का भरता,

0: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
1: पवन के ठंडे झोंके के साथ
0: हिलोरे लेगी
1: आकाश की वाणी।
0: आकाशवाणी
2: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
0: या फोन करें 222150 या 222400,
1: 222150 या 222400।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1512।
6: आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हास्य तरंग की ओर और सुनते हैं हास्य तरंग सब्ज बाग। प्रस्तुति है अवध किशोर शर्मा की।
7: आज मैं अपनी रचना लेकर उपस्थित हूं दोस्तों। इसका शीर्षक सब्ज बाग है। सब्ज बाग का वास्तविक अर्थ है कि झूठे वायदों और वायदों की बगिया दिखाना। दोस्तों, मैं दो दो सब्जियों का खर्च वहन नहीं कर सकता, इसलिए पत्नी से हमेशा किचकिच होती रहती है। जो सब्जी मुझे पसंद है वह उन्हें नहीं, और जो सब्जी उसे पसंद है वह मुझे पसंद नहीं आती है। वे तो भाई बरसात में भी भाजी और बैगन की फरमाइश कर बैठती हैं। होटल में कभी कभार जाने पर जब वे वेटर से बैगन की फरमाइश करती हैं तो अपना मुंह दबाकर वे भी हंसते हैं, फिर श्रीमती जी भी हंस पड़ती हैं। इसी सब्जी की रस्साकशी ने हमें अलग अलग शहरों में रहने को मजबूर कर दिया है। पिछले महीने जब मेरे रिश्तेदार की शादी में शामिल होने वे घर आईं तो मुझे रोज भोजन बनाते देखकर द्रवित हो उठीं और अतिरिक्त प्रेम का प्रदर्शन करते हुए अपने वापस जाने से पहले ही मेरे लिए टिफिन सेंटर से टिफिन बंधवा दिया। शुरू शुरू में तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि रोज दो तीन घंटे किचन में रहने पर मेरे सभी मुवक्किलों के केसों का सत्यानाश हो रहा था। मैं उनके प्रकरणों में समय नहीं दे पाता था, जूनियर वकील मुझसे आगे निकलते जा रहे थे। टिफिन रोज आने पर मैंने शुरुआती कुछ दिनों तक तो राहत की सांस ली, लेकिन बाद में पता चला कि मेरे घर वालों ने मुझसे कितना खूबसूरत बदला लिया है। कारण यह कि मेरा टिफिन पहुंचाने वाला टिफिन सेंटर का मालिक दुनिया का सबसे कंजूस व्यक्ति है। अनेकों बार निवेदन करने के बाद भी उसने मुझे सस्ती तथा घटिया सब्जियां खिलाना नहीं छोड़ा। ठंड के सीजन में भी वह मुझसे कभी सूखे चने तो कभी सूखे मटर की सब्जियां मुझे खिलाता था। जो बरबट्टी नहीं बिकती उसके बीज निकालकर सब्जी बनवाता, जिसे हम लोग स्थानीय भाषा बोली में झुनगा कहते हैं। राजमा तथा सोया बड़ी के अलावा वह माह में 10 दिनों तक मुनगे की सूखी सब्जी खिलाता है। हाँ, मैं लौकी का उल्लेख करना तो भूल ही गया था। अब मैं छिपकर उसके घर जाकर देखना चाहता हूँ कि कहीं उसने मुनगे का पेड़ तो घर में नहीं लगा रखा है।

0: ना होगा कि उपरोक्त सभी सब्जियों से मुझे सख्त नफरत है। जेल में कैदियों को भी बेहतर सब्जियां मिलती होंगी। पूरा सीजन बीत जाने के बाद भी मुझे अपने टिफिन में गोभी, ग्रीन मटर, गाजर तथा शिमला मिर्च के दर्शन नहीं हुए। अब श्रीमती जी के पास जाकर मैं भी किचन नहीं हंगर स्ट्राइक करना चाहता हूँ। घर के सामने सब्जी का ठेला रोज आता है। वे स्वयं तो रोज मनचाही सब्जियों का आनंद ले रही हैं और मैं यहाँ गंभीर रूप से तपस्यारत हूँ। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि गोभी और शिमला मिर्च तो छोड़ें, मेथी, पालक तथा बथुआ व कोलियारी भाजी जैसी मामूली सब्जी भी मेरे लिए दुर्लभ तथा विलासिता की वस्तु है, जिसे खाने वाले काफी अमीर होते होंगे। मालूम हो कि कोलियारी भाजी चर्म रोगों में तथा करेला व मेथी भाजी कैंसर जैसे खतरनाक रोगों की रामबाण औषधि है। यह बात कई मेडिकल शोधों से भी प्रमाणित हो चुकी है। नीम की पत्तियां चबाने की सलाह तो चिकित्सक हमेशा से देते रहे हैं। कुछ लोग सब्जियां धूप में सुखाकर रखते हैं ताकि 12 महीने उसका उपयोग कर सकें। इसमें सर्वाधिक लोकप्रिय सब्जी मेथी भाजी व आलू है। सब्जियां वैसे तो सैकड़ों बल्कि यों कहें कि हजारों हैं। इनमें से किसे सब्जियों का राजा कहें और किसे रानी कहें, मित्रों, यह तो अपनी अपनी पसंद पर निर्भर करता है। अनेक सब्जियां ऐसी हैं जो शरीर में जाते ही औषधि का काम करती हैं। इनमें मूली, मेथी भाजी, बथुआ, करेला तथा कोलियारी भाजी प्रमुख हैं। दिल के आकार वाली नरम कोलियारी भाजी की सब्जी चने की दाल के साथ स्वादिष्ट बनती है। अनेक प्रकार के चर्म रोग तथा कुष्ठ रोगों की यह एक कारगर दवा है। मेरे किचन में इनमें से एक भी सब्जी नहीं आ पाती है, क्योंकि मैं एक कंजूस टिफिन वाले के हवाले हूँ। टिफिन बंधवाकर श्रीमती जी यानी हमारी मैडम गई हैं और उनके हुक्म की उदूली करना मेरे बस की बात तो कतई नहीं है। वे वहीं से आंख दिखाती हैं और मैं शहीद हो जाता हूँ। मेरे टिफिन में चावल मोटा आने के कारण मैं चावल देने से पहले ही टिफिन सेंटर के मालिक को मना कर चुका हूँ कि मुझे चावल भूलकर भी नहीं देना। अब दाल भी मना करने वाला हूँ क्योंकि वह बहुत ही पतली आ रही है। अब बची रोटी और सब्जी। सब्जियाँ मनपसंद न होने तथा घटिया दर्जे की होने के कारण उसे भी बंद करने का मन बना चुका हूँ, लेकिन खाली रोटियाँ कैसे चबाऊँगा यह सोचकर असमंजस में हूँ। मित्रों, कहीं मुझे उपवास ही ना करना पड़े, जिसे मैं अपने टिफिन सेंटर के खिलाफ हंगर स्ट्राइक का नाम देता हूँ। यदि आप सब मुझ में जरा सी भी सहानुभूति रखते हो तो मुझे अति शीघ्र पेइंग गेस्ट भी बनाने का ऑफर दे सकते हैं। यह ध्यान रखें कि मुझे लौकी, कद्दू, झुनगा, चना व पोपट अर्थात सेम के बीज कतई न खिलाएं। मुझे इससे सख्त परहेज है। महानगरों की तर्ज पर तेजी से बढ़ रहे न्यायधानी में जाकर रहने की सलाह मेरे मित्रगण मुझे देते हैं, तो दोस्तों, मैं भी उनकी बिना मांगी गई सलाह को झटक कर चचा गालिब का यह शेर पढ़ देता हूँ कि जख्म भरते तलक नाखून न बढ़ाएंगे क्या, ये माना कि दिल्ली में रहे पर खाएंगे क्या। मित्रों, मेरे किचन अर्थात हंगर स्ट्राइक का समय नज़दीक आता जा रहा है और मेरे राजधानी गाड़ी का समय भी हो रहा है। तो अगली मुलाकात तक हमारी सभी श्रोताओं को जय जय आमीन।
1: अभी आप सुन रहे थे हास्य तरंग सब्ज बाग। प्रस्तुति थी अवध किशोर शर्मा की।
2: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
3: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
2: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर,

0: ये होटल रूम पर शून्य GST है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% GST लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% GST लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ दो ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% GST देना होगा।
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782-222-666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
2: आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। श्रोताओं, अखबार और पत्रिकाएं लोगों के दिन की अच्छी शुरुआत प्रदान करती हैं। अखबार आमतौर पर हमें दिन की मुख्य खबरों के बारे में बताती हैं, तो वहीं पत्रिकाएं हमें हमारे परिवेश में घटित विभिन्न घटनाओं का व्यापक और अधिक संपूर्ण परिप्रेक्ष्य प्रदान करती हैं। अखबारों और पत्रिकाओं के लिए सामग्री तैयार करना, साथ ही समाचार वेबसाइटों पर कहानियां लिखना और वितरित करना, ये सभी पत्रकारिता के उदाहरण हैं। इसका मूल उद्देश्य दुनियाभर के लोगों को दुनिया में घटित घटनाओं से अवगत कराना है। आज की दुनिया में पत्रकारिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बेआवाज लोगों की आवाज बनकर हमारे समाज के सभी सदस्यों के विचारों को व्यक्त करती हैं। श्रोताओं, हमारे देश में हर साल 30 मई यानी आज के दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1826 में हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। इस दिन को हिंदी प्रेस की शुरुआत, भाषाई पत्रकारिता के विकास और पत्रकारों के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। श्रोताओं, पत्रकारिता समाज का दर्पण और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, जो जनता को सटीक सूचना, जागरूक करने और सत्ता को जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्रोताओं, आज नमस्कार जगदलपुर में पत्रकारिता के विषय में ही हम लेकर आए हैं वार्ता। वार्ताकार हैं आशा रानी पटनायक। तो आइए सुनते हैं पत्रकारिता में हिंदी की भूमिका विषय पर ये वार्ता। वार्ताकार हैं आशा रानी पटनायक।
3: वर्तमान जीवन की परिघटना, विसंगतियों, आवश्यकताओं, उपलब्धि तथा अनिवार्य को सही ढंग से प्रकट करने का कार्य जिस माध्यम के द्वारा अधिकार पूर्वक संपन्न हो रहा है, वह माध्यम है पत्रकारिता। यह चुनौती भरा कार्य केवल पत्रकारिता ही कर सकती है। यदि हम ऐसा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वास्तव में ऐसा सूत्र है जो मानव को मानव से व समाज को विश्व से जोड़ता है। इसे राष्ट्र के चौथे स्तंभ की संज्ञा दी गई है। पत्रकारिता लोकतंत्र की प्रहरी है, अतः पत्रकारिता एक गंभीर एवं उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है। इसका लक्ष्य एक आदर्श समाज की स्थापना करना है। पत्रकारिता अभिव्यक्ति की एक मनोरम कला भी है। इसका कार्य जनता तथा जन नेताओं के समक्ष लोक कल्याण संबंधी कार्यों की सूची प्रस्तुत करना है। संपादक विखेम स्टडी कहते हैं, मैं समझता हूँ कि पत्रकारिता कला भी है, कृति भी है और जनसेवा भी है। जब तक कोई यह नहीं समझता कि मेरा कर्तव्य अपने पत्र के द्वारा लोगों का ज्ञान बढ़ाना, उनका मार्गदर्शन करना, तब तक उसे पत्रकारिता की जितनी भी प्रशिक्षण दी जाए, वह पूर्ण रूपेण पत्रकार नहीं बन सकता। समाचार पत्रों में सत्यम शिवम सुंदरम की आराधना होती है। समाचार पत्रों का स्वस्थ उद्देश्य समाज को एक नई दृष्टि प्रदान कर समाज में सुव्य

व्यवस्था प्रतिस्थापित करता है, इसलिए लोग पत्रकारिता को उम्मीद की नजरों से देखते हैं, इस पर विश्वास करते हैं। हिंदी पत्रकारिता का वर्तमान स्वर किसी भी तरह से अपनी पूर्व पत्रकारिता से कमजोर दिखाई नहीं पड़ती। स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी पत्रकारिता विषय केंद्रित थी, आज़ादी प्राप्त करने की दिशा में एक साधन के रूप में, परंतु आज चुनौती दूसरी है, समृद्ध राष्ट्र की कल्पना और उसको मूर्त रूप प्रदान करना है। पत्रकारिता अंग्रेजी के जर्नलिज्म का हिंदी रूपांतर है। अर्थ की दृष्टि से जर्नलिज्म शब्द जनरल से निर्मित है, दैनिक अर्थात जिसमें दैनिक कार्यों का, सरकारी बैठकों का विवरण हो, किंतु आज जनरल शब्द मैगजीन घोतक हो चला है। ज्ञान और विज्ञान शब्दों तथा चित्रों के रूप में दूसरों तक पहुंचाना पत्रकारिता है। अकबर इलाहाबादी ने कहा है कि जब तोप से मुकाबला करना हो तो समाचार पत्र निकालिए। हिंदी खड़ी बोली को प्रांजल बनाने और उसमें साहित्य सृजन करने के लिए पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ऐतिहासिक कार्य किया है। प्रारंभ में पत्रकारिता केवल समाचारों के संकलन तथा प्रसारण तक ही सीमित थी। इंसान की जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण ही इर्द गिर्द घटी घटनाओं की जड़ तक पहुंचना उनका स्वभाव बन चुका है। ज्यों ज्यों मानव सभ्यता का विकास होता रहा, त्यों त्यों उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति का भी। यही कारण है पत्रकारिता का उदय हुआ। मनुष्य का स्वभाव उसके मन के साथ आता है, इस मनुष्य स्वभाव के साथ ही पत्रकारिता का जन्म हुआ। राजकिशोर, हिंदी पत्रकारिता में तीन संकटों का उल्लेख किया गया है। लेख में वर्तमान पत्रकारिता के मूल्यों की काफी आलोचना करते हुए कहते हैं कि हिंदी पत्रकारिता का सामाजिक आधार आज पहले से कहीं ज्यादा भविष्यहीन है। इसे बाजार की क्रूर शक्तियों के भरोसे छोड़ दिया गया है और उसकी राजनीति मुक्ति आंदोलन को ऊर्जाहीन बना रही है। वे आरोप लगाते हैं कि आज़ादी के बाद से हिंदी पत्रकारिता की दुनिया आम तौर पर एक आदर्श विहीन दुनिया रही है। यही कारण है कि हमें अपने नायकों के खोज के लिए बार बार स्वाधीनता संघर्ष की परतें उधेड़नी पड़ती हैं। नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर समाप्त हो जाने के बाद संपादक नाम की संस्था कभी खड़ी ही नहीं थी। अक्षय कुमार दुबे इस विषय पर लिखते हैं कि हिंदी पत्रकारिता की जात अभी अधूरी है। पहला चरण, जिसमें अपना ऐलान करना, प्रसार व प्रभाव का स्तर, व्यवसाय का स्तर पर वे कामयाबी प्राप्त कर चुके हैं। अब दूसरे चरण की बारी है, जिसमें वे भाषा, अभिव्यक्ति और पेशेवराना दृष्टिकोण के स्तर पर स्वायत्तता को हासिल करने को लक्ष्य मानते हैं। वे मानते हैं कि हिंदी पत्रकारिता ने स्वयं को अंग्रेजी पत्रकारिता से पूरी तरह स्वतंत्र नहीं किया है। हिंदी एक विकासशील जीवंत भाषा है। प्राचीन काल से लेकर आज तक की हिंदी भाषा की विकास यात्रा का सिंहावलोकन करने पर यह स्पष्ट हुआ कि हिंदी एक व्यापक और बहुमुखी तथा समाज के जीवन की गतिविधि की गतिशीलता से प्रवर्तित संबंधित भाषा के रूप में अनवरत विकासोन्मुख है। आज संस्कृति और जीवन दर्शन के अंतर्गत हिंदी भाषा की व्यवहारगत भूमिका बृहद ही नहीं, व्यापक भी हो रही है। भारत के अतिरिक्त अनेक देशों, मॉरिशस, युगाना, सुरीनाम, फिजी आदि देशों की यह व्यापक संपर्क भाषा बन चुकी है। परिणामतः भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों सेवाओं के विस्तार के लिए अपनाई गई भाषाई माध्यम हिंदी ने स्वभावतः ऐसा विकास करना शुरू किया जिसने इस भाषा को देश के व्यावसायिक कार्यकलापों की धड़कन बना दिया। हिंदी भाषा, राजभाषा हिंदी और पत्रकारिता के संदर्भ में हिंदी भाषा के तान वितान, नियति और नियमन का एक संक्षिप्त किंतु परिमार्जित चित्र का परिदर्शन दर्शनीय है। यह भी दृष्टव्य है कि राजभाषा हिंदी का विकास किस तरह परिस्थिति जन्य विविध कारणों से और विभिन्न क्षेत्रों से

0: संवर्धित संपुष्ट हुआ है, व्यापकता पाया है और आधोपांत यह गति अबाधित रूप से प्रवाहमान है। भिन्न भिन्न व्यवसाय में लगे भारत सरकार के अलग अलग कुछ संगठनों की राजभाषा पत्रिकाओं से प्रस्तुत उपयुक्त कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने का उद्देश्य मात्र यह है कि हम प्रत्यक्षतः ऐसे संगठनों में राजभाषा हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी के राजकीय प्रयोग विषयानुरूप भाषा के सतत प्रयोग से परिचित हो सकें।
1: अभी आप सुन रहे थे पत्रकारिता में हिंदी की भूमिका विषय पर ये वार्ता। वार्ताकार थी आशा रानी पटनायक। नमस्कार, जगदलपुर में अब वक्त हो चला है मधुरिमा का, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की 4 दरें लगती हैं। 1,000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 जीएसटी है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा।
1: अब पेश है मधुरिमा। समंदर भी प्यासा लगे तेरी चाहत के आगे, आसमान भी छोटा लगे तेरी मोहब्बत के आगे। ना माप सकूं ना तोल सकूं इस प्यार को, बस इतना जानू तू है तो सब है मेरे आगे।

पहले जो गाने बेमतलब लगते थे अब सब अपने लगते हैं। पहले जो चांद सिर्फ चांद था अब उसमें तू नजर आता है। मौसम भी बदल गया, हवा भी बदल गई, तेरे आने से मेरी हर दुआ भी बदल गई।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे

0: शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
1: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: हजारों फूल हैं बाग में, पर नजर तुझ पर ही रुके। भवरा हूं बदनाम सही, पर दिल का सच्चा हूं। रस चुराना फितरत नहीं, बस तुझसे मोहब्बत है। एक फूल से जो बंध गया वो भवरा नहीं किस्मत है।

गोरी गोरी सूरत पे लाल बिंदिया जब दमके, लगता है जैसे सुबह की लाली पूरब से चमके। तू चलती है तो बिंदिया भी संगती रखती है, मेरी किस्मत भी तेरे नाम से ही धड़कती है।

ना चांद चाहिए ना फलक चाहिए, तेरी गली का एक झोंका सा बस लत चाहिए। दीवाने हैं हम मांगते नहीं जमाना, बस तेरे नाम से धड़कता हुआ दिल चाहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
5: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने excise duty कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को workout करने के लिए कहा है कि LPG का जो reserve है, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it.

0: एंड सिमिलरली फॉर क्रूड ऑल्सो वी आर वर्किंग।
1: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
2: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6 चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमा और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
3: म्यांमा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
4: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
1: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमा के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
5: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा

0: कि कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
2: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कुंकड़ी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित सीएसआईआर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद कनक। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने सीबीएसई की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा एक साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए टीईटी पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, डीके शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून, 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Center asks oil marketing companies to build 30 days LPG reserves as West Asia conflict persists. National Family Health Survey shows major gains in maternal and child health. Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a 5-day visit. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian Under-20 Athletics Championships in Hong Kong, clinch 7 medals including 4 gold on day 2. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Rajasthan Royals by 7 wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru. The government has asked the public sector oil marketing companies to set up liquefied petroleum gas LPG reserves for at least 30 days as the West Asia conflict persists, disrupting global energy supplies. Joint Secretary at the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, stated this while talking to reporters yesterday during the inter-ministerial press briefing on the West Asia conflict. Outlining the precautionary measures to safeguard against supply shocks, Ms. Sharma said India was also working to increase crude oil storage capacity.
3: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
2: Additional Secretary Gulf in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said that the government is closely monitoring developments in the Gulf and West Asia region. He said Indian embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance to Indian

0: श्रोताओं नमस्कार, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, जीवन की सबसे बड़ी पूंजी स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहने का तात्पर्य मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से चुस्त और स्थिर रहना है। श्रोताओं, स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है कि हमें उन दिनचर्याओं का पालन करना चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। लेकिन कुछ आदतें होती हैं कि जिससे स्वास्थ्य पर उसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। इन गलत प्रभावों के कारण हम कई बार कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और शुरुआती तौर पर इन बीमारियों का पता लगे तो हम इसका बेहतर उपचार करवा सकते हैं और इन्हीं बीमारियों को जब हम नजरअंदाज करते हैं तो इसके गंभीर परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। और श्रोताओं, जब हम बात करते हैं भारत की तो यहाँ युवा जो है काफी नशे की गिरफ्त में दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो नशा किसी भी तरह का हो, लेकिन उस नशे के आदि होने के बाद नशे के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं और ये नशा ही है जो हमारे युवाओं को भटकाता भी है। तो श्रोताओं, 31 मई को हम नो टोबैको डे मनाते हैं, विश्व स्तर पर मनाते हैं और इसका उद्देश्य यही है कि तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में हम लोगों को जागरूक करें। और तंबाकू जो हमारे भारत में कई गंभीर बीमारियों के लिए उत्तरदायी होता है, इसी के बारे में 31 मई को नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। तंबाकू से होने वाले नुकसान और इससे बचने के तरीके क्या हो सकते हैं और तंबाकू का हमारे जीवन में कौन कौन से दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इस बारे में जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर रश्मि राय जी को, जो एक ओरल कैंसर स्पेशलिस्ट और मैक्सिलोफेशियल सर्जन है बालको मेडिकल सेंटर रायपुर में। तो डॉक्टर रश्मि जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो छत्तीसगढ़ के आसपास के सारे केंद्रों में हम इस बारे में बात कर पाएं कि टोबैको कितना हानिकारक हो सकता है, तंबाकू कितना हानिकारक हो सकता है हमारे

0: शरीर के लिए और मुंह के कैंसर के लिए तो एक वो नोन कॉज है. तो जितना ही उसके बारे में बात करेंगे उतना ही हम उसको समझ पाएंगे, और इस तरह से हम अवेयरनेस जितना बढ़ाएंगे हम अपनी जो युवा पीढ़ी है उसको बचा सकते हैं तंबाकू के दुष्प्रभावों से.
1: जी जी डॉक्टर साहिबा. डॉक्टर रश्मि जी, वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है 31 मई को, तो इस दिन का क्या महत्व है और खासकर हम देखें छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में?
0: जैसे कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो अवेयरनेस के लिए है. ये अवेयरनेस हर तरह के लेवल पे पहुंचे, हर जगह पे. जिस तरह से तंबाकू का सेवन बहुत प्रचलित है छत्तीसगढ़ में, बहुत सारे फॉर्म्स में तरीके से सेवन किया जा सकता है. बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया, जो कॉमनली यहाँ तो बीड़ी का सेवन ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ मुख्य रूप से यूज़ करने वाला जो तत्व जिस फॉर्म में करते हैं वो है गुटखा या गुड़ाखू. सुबह शाम दांत में जैसे टूथपेस्ट किया जाता है वैसे इसका यूज़ होता है. और एक मिथ है, एक भ्रांति है कि ये तंबाकू नहीं है और इससे हमें तंबाकू से जो दुष्प्रभाव होते हैं वो इससे नहीं होता है. ये हमारे मोस्ट कॉमनली जब हम हॉस्पिटल में बैठे होते हैं तब इस तरह की चीज़ें जब हम उनको बोलते हैं कि आप और किस फॉर्म में खाते हैं तो वो कभी भी गुड़ाखू का नाम नहीं लेते. तो पहले तो ये समझना है कि ये जो गुटखा है, गुड़ाखू है, ये सब तंबाकू के ही प्रकार हैं. तंबाकू इटसेल्फ उसमें इतने कंटेंट्स होते हैं, जैसे कि उसमें कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जैसे नाइट्रोसामिन होता है, बेंजीनाल्डिहाइड है, इस तरह के जो केमिकल कंपाउंड से बड़े नाम हैं उसी तरह से वो हमारे शरीर के कणों को खराब करते हैं. और तंबाकू से जुड़े कम से कम 20 से ज़्यादा कैंसर में तंबाकू का रोल है. और बहुत सारी और बीमारियां जैसे कि सांस लेने में जो तकलीफ वाली जो हमारी फेफड़े की बीमारियां होती हैं, हमारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होते हैं, ये भी तंबाकू द्वारा होता है जो कि हम जनरली नहीं सोच पाते हैं. हमारा जो कर्तव्य है, जो नो टोबैको डे का पर्पस है कि हम इस बारे में अवेयर कराएं और इस चीज़ को अपनी युवा से दूर रखें.
1: जी जी जी बहुत अच्छी बात बताई है आपने. तो डॉक्टर रश्मि जी, जब कोई व्यक्ति तंबाकू का सेवन कर रहा है, नशीले पदार्थों का सेवन करता है, तो उसमें ओरल कैंसर होने की संभावना काफी हो जाती है, तो वो कौन से जो है प्राइमरी सिम्टम्स है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं?
0: कई बार क्या होता है कि गुटखा और तंबाकू वो गाल में रखते हैं साइड में, तो वहां पे सफेद पैच या जबान में भी सफेद पैच या लाल पैचेस जैसे बनते हैं, मतलब एक छाला जैसा बनेगा जो सतह में बहुत खुरदुरा कलर, रेड कलर हो सकता है, लाल कलर हो सकता है, सफेद कलर हो सकता है, तो हम लोग उसको ल्यूकोप्लेकिया या एरिथ्रोप्लेकिया कहते हैं. तो ये इनमें इस तरह के जो छाले होते हैं और कोई गांठ है, आपके गले में गांठ है, आपकी आवाज़ में कोई बदलाव आ रहा है, तो ये जो और जैसे अचानक से आपकी हड्डी मसूड़े जो होते हैं उसमें सूजन आ जाती है, तो कई बार क्या होता है कि घरों में लोग सोचते हैं कि ये हमारी दांत की तकलीफ है ना कि कोई बीमारी है. तो हमारा जो बेसिकली सभी को कम से कम 3 महीने में एक बार जाके कोई डेंटल क्लिनिक हो गया या आसपास के कोई भी ENT सर्जन को जाके अगर मुंह में इस तरह की कोई छाला गांठ है तो दिखाना चाहिए. फिर निगलने में तकलीफ हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, सब तंबाकू द्वारा हुए कैंसर. जैसे आपकी स्वर पेटी में अगर कैंसर हो जाता है तो आपकी आवाज़ बदल जाती है. तो इस तरह से कुछ चीजें हैं, जैसे गांठें हो गई, अल्सर हो गया, जो लंबे समय से उसको इग्नोर ना करें तो बेहतर रहता है.
1: जी, तो डॉक्टर रश्मि जी, जब हम ओरल कैंसर की बात करते हैं तो और तंबाकू के कारणों की बात करते हैं, तो यदि कोई व्यक्ति तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इस तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करता है तो उसके मुंह से संबंधित किन किन स्थानों पर कैंसर होने की संभावना होती है?
0: देखिए, मुंह में जनरली दो तरीके से तंबाकू का असर होता है. एक तो वो आपका पूरे मुंह में जो उसका रस रहता है और उसमें केमिकल होता है पूरे मुंह को अफेक्ट करते हैं. उसके अलावा जिस जगह पे रहता है वहां पे डायरेक्ट ट्रॉमा भी होता है. तो जनरली होठ के पीछे रखने की आदत होती है, गालों में पीछे दबाने की आदत होती है और वो लगा के सो जाते हैं, तो वो एरिया तो बहुत कॉमन है. इसके अलावा मसूड़ों में हो सकता है, जबान में हो सकता है, जबान के नीचे सतह में हो सकता है, आपके तालू पे हो सकता है, फिर इस और इवन जबान के पीछे के एरिया में जो कि कई बार दिखाई नहीं देता, आपको वो तकलीफ देगा, दर्द होगा, आवाज में थोड़ा सा लगेगा कि मोटी हो गई है, तो ये जबान का पीछे का एरिया होता है. तो और उस वजह से कई बार गले में गांठें होती हैं, तो ये एरियाज मेनली जो है कैंसर से ग्रसित होते हैं, जो अगर मुंह का कैंसर हम सिर्फ देखें तो.
1: जी जी, तो डॉक्टर रश्मि जी, आपने बताया कि जो छाले होते हैं उनसे जो है मुंह के छाले जो हो जाते हैं तो उनमें कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ नॉर्मल छाले भी होते हैं जो मुंह में अक्सर होते रहते हैं, तो एक

0: नॉर्मल माउथ अल्सर और कैंसरस अल्सर को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं?
1: ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि एक छोटे अल्सर को देख के हम डर भी सकते हैं, लेकिन कोई छाला जो कि 3 हफ्ते से ज़्यादा है और उससे आसपास की जो सतह है वो थोड़ी खुरदुरी मोटी हो गई है और वो जगह आजू बाजू लाल है और उभर जाता है और बीच में छाला जो है वो गड्ढे जैसा आपको क्रेटर जैसा दिख रहा है, तो ये सारे ना छाले जो होते हैं उनको हमको दिखाना है। 3 हफ्ते से ज़्यादा कोई भी छाला है उसे हम इवेल्युएट कराएं, उसी में भलाई होती है। कई बार ये कैंसर का प्री कैंसर कंडीशंस भी होते हैं, तो अगर हम उसको उस लेवल पे ट्रीट करते हैं तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं और हम उनको फॉलोअप पे कुछ दवाइयाँ देके और ठीक भी कर सकते हैं।
0: जी जी जी तो डॉक्टर रश्मि जी, अभी जो वर्ल्ड टोबैको डे के विषय में हमने तंबाकू से संबंधित जानकारी दी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के जो समय में तंबाकू का सेवन जो है काफ़ी बढ़ गया है और इस तरह की समस्याएं काफ़ी देखने को मिल रही हैं। तो कार्यक्रम में हम एक छोटा सा अंतराल लेंगे और चाहेंगे कि आपकी पसंद का एक कोई गीत हम सुने।
1: पल पल दिल के पास।

0: श्रोताओं, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर रश्मि राजी से, जो एक ओरल कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और साथ ही मैक्सिलोफेशियल सर्जन भी हैं, और बात कर रहे हैं हम वर्ल्ड नो टोबैको डे के बारे में और तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में। तो डॉक्टर रश्मि जी, ओरल कैंसर की बात करते हैं, तो जब किसी मरीज को ऐसे लक्षण प्रकट हो रहे हैं कि उसे ओरल कैंसर हो सकता है, इसके लिए कौन कौन सी जो है आधुनिक जांचें जो अभी हमको जो है अवश्य रूप से जो है करवानी चाहिए और अभी के समय में वो उपलब्ध है?
1: देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको लग रहा है कि आपको लक्षण है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप होता है वो होता है कि एग्जामिनेशन। आपको किसी डॉक्टर के पास जाना है और अपनी जांच करवानी है। ये पहला स्टेप होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मतलब हम अपनी आंखों से पहले समझते हैं कि ये किस प्रकार की बीमारी है। ये क्यों समझना जरूरी है? मान लीजिए मुंह में ना, जैसे हड्डी के पास की कोई जगह है, तो हम अगर उसका कुछ उसको समझना चाहते हैं कि इसका फैलाव कैसा है, तो हम हड्डी के लिए सीटी स्कैन बेटर होता है। और अगर हम जबान को देखें तो वो मसल का बना हुआ पूरा स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए एमआरआई बेटर होता है। तो इसीलिए पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन इम्पॉर्टेंट है। तो आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, पहले समझिए कि हमें कौन सा स्कैन कराना है। स्कैन का काम है पहले ये समझना कि ये, क्योंकि ये कैंसर क्या है कि वो लोकल एरिया में भी फैलता है और शरीर में भी फैलता है। तो पहला स्टेप होगा कि हम पहले ये समझें कि इसका फैलाव कैसा है, लोकल एरिया में कितना फैला है। तो उसके लिए अगर बोन के पास है तो हम सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई करा लेते हैं। फिर है ये कण की बीमारी, सेल में चेंजेस आते हैं। तो जब तक हम इसको प्रूफ ना कर लें, तो वो हम कर पाते हैं, हम वहां से एक सैंपल टिश्यू लेते हैं जिसे बायोप्सी की प्रक्रिया कहते हैं, और उसको फिर हम माइक्रोस्कोपिकली समझते हैं कि ये बीमारी किस प्रकार की। मुंह में भी अलग अलग तरह के कैंसर होते हैं। ये तो मुंह का कैंसर जो आप तंबाकू से रिलेटेड है वो तो होता ही है, साथ में हमारी जो थूक की ग्रंथि और इसके आसपास के स्ट्रक्चर्स में भी कैंसर हो सकता है। तो बेस्ड ऑन दैट हमारा एक बायोप्सी जब आता है वो हमको बताता है कि इसको हमको ट्रीटमेंट कैसे देना है। तो मेन इम्पॉर्टेंट है इमेजिंग, और दूसरा है बायोप्सी। तो सीटी स्कैन, एमआरआई और बायोप्सी जो रिक्वायर्ड है। अगर बीमारी बहुत बड़ी है तो पेट सीटी करके, होल बॉडी पेट सीटी होता है, या दोबारा बीमारी हुई है, उन सब केसेस में पेट सीटी का योगदान बहुत है। वो हमें बीमारी के फैलाव को समझने में बेटर तरीके से हेल्प करता है।
0: तो डॉक्टर रश्मि जी, जब हम मुंह के हेल्थ की बात करते हैं तो हम इसे घर में रह के स्वयं ही कैसे कर सकते हैं, हम कैसे अपना मुंह के हेल्थ को एग्जामिन कर सकते हैं घर पे रहते हुए?
1: ये बहुत ही जरूरी है, जो क्योंकि हम हमेशा अस्पताल के करीब तो नहीं होते, तो और आप अपने शरीर से बेहतर कोई भी कोई दूसरा आदमी हमें नहीं पहचान सकता। तो हमें सेल्फ चेकिंग के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक प्रॉपर लाइट वाला एरिया चाहिए, एक मिरर चाहिए, और आपको या तो कई हमारे पास टंग ब्लेड्स होते हैं, या तो आप नॉर्मली आप फिंगर से भी कर सकते हैं। आप अच्छे से हाथ धोइए, आईने के अंदर आपके होठ के पीछे का एरिया, सबसे पहले हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, तो होठ के पीछे का एरिया, गालों का एरिया और मसूड़ों को, जबान के नीचे, जबान के ऊपर, तालू, इन सब चीजों को हमको प्रॉपर लाइट में और मिरर के सामने देखना है। हमें क्या देखना है? कोई भी

0: लाल सफेद छाला, कोई भी दांत अचानक से हिल रहा है, कोई ऐसी जड़ों और उसके आजू बाजू सूजन है जो पहले नहीं था, और ये जो चीज है अगर 3 हफ्ते से ज्यादा हो गई है तो हमें जरूरी करके अपने आप को अस्पताल में जाके दिखाना चाहिए।
1: जी। डॉक्टर रश्मि जी, एक जो सबसे बड़ी भ्रांति हम देखते हैं कि कई लोगों को कैंसर की संभावना देखी जाती है, छाले होते हैं तो उन्हें बायोप्सी के लिए बोला जाता है, तो लोग बायोप्सी से बचने की कोशिश करते हैं, कहते हैं बायोप्सी के बाद कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है?
0: जैसे कि आपने खुद ही कहा कि ये भ्रांति है, तो
1: जी
0: इसमें सच्चाई तथ्य नहीं है।
1: जी
0: देखिए, अब एक होता है कि कोई भी चीज को तथ्य मानने के लिए उसका पीछे एक साइंटिफिक आधार होना चाहिए। हम यहाँ पे हेयर से में रहते हैं, उसने कहा और मैंने सुना,
1: जी जी
0: है ना? तो जब हम इस तरह की सोच में फंस जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है हमें डर लगता है, उस डर को हमें कोई बोल दे कि हाँ तुम ये नहीं कराओगे, क्योंकि कोई भी आपके शरीर का कुछ भी कटता है आपको दर्द देता है।
1: जी
0: तो आपसे अगर हम बोलें कि हम एक सैंपल देने जा रहे हैं, तो पहले तो आप उस प्रोसीजर से डर रहे हो, फिर आपको कोई बोल देता है कि हाँ इससे तुम्हारा कैंसर बढ़ जाएगा, तो ये आपके उस डर को हेल्प करता है कि मैं इस वजह से नहीं करा रहा हूँ। तो ये होता है डिनायल, जो
1: जी
0: चीज है उसमें हम उसका हेल्प लेते हैं। कभी हुआ कि 100 में से जो है एक पेशेंट आए थे, उनको हमने बायोप्सी किया, क्योंकि बीमारी अपने आप ही बढ़ने के फेज में चल रही है, और बायोप्सी ली और उसके बाद बढ़ गया। अब ऑब्जर्वेशन में ये है कि जब भी बायोप्सी की जाएगी तो बीमारी बढ़ जाएगी। किसी और से बात किया, उसको भी यही बताया, इस तरह से मास में ये बात फैल जाती है। हम बिना बायोप्सी के ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। हमारी दुविधा ये है, जब तक कर्ण को हम डिफाइन नहीं करेंगे तो ट्रीटमेंट देना गलत होगा। तो बेहतर है कि हम बायोप्सी से डरे ना, वो बहुत जरूरी स्टेप है किसी भी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने के लिए।
1: डॉक्टर रश्मि जी, जब पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति को कैंसर डिटेक्ट हो चुका है, तो इसके कितने स्टेजेस होते हैं और किन किन स्टेजेस में कितने जो है रिकवरी और बचने के चांस हो सकते हैं, और उनके लिए कौन कौन से अभी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां उपलब्ध हैं?
0: ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमें जब डायग्नोसिस मिलता है कि हमें कैंसर है, तो सबसे पहले तो हम डर जाते हैं, क्योंकि कैंसर को माना जाता है कि ये आपका एंड ऑफ लाइफ का स्टार्ट हो गया है।
1: जी
0: लेकिन ऐसा नहीं है। मुंह के कैंसर में अगर हम जल्दी अर्ली डिटेक्शन होता है तो हम अच्छा रिजल्ट मिलता है, हम अच्छे से चीज़ों को ट्रीट कर सकते हैं, एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। मेरे खुद के इतने पेशेंट हैं जो 10 से ज़्यादा साल जी चुके हैं। तो हमें ये समझना है कि हमें इलाज कराना है। अब इसके जो स्टेजेस होते हैं वो, अब मैंने कहा कि अर्ली स्टेज में स्टेज 1, स्टेज 2, हम जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है, 3 एंड 4, मेनली चार स्टेजेस में इस बीमारी को क्लासिफाई किया गया। क्योंकि मुंह का कैंसर, मुंह में जो हमारे सारे मेन जैसे हड्डी और स्किन वगैरह सब पास में है, तो कोई अगर थोड़ा भी लेट होता है तो हम स्टेज 4 में पहुंच जाते हैं। जो एक्चुअली स्टेजेस में डिफाइन करने का मतलब ये रहता है कि बीमारी जो है हम उसको कैसे ट्रीट करने के बाद दोबारा होने की क्षमता, ये जो होता है, तो वो साइज के हिसाब से हम लोग जनरली मानते हैं। अगर छोटी बीमारी है, less than 2 सेंटीमीटर है, तो हम स्टेज 1 में मानते हैं, और उसको हम सिर्फ सर्जरी करके, मतलब हम जिन जो बीमारी हमें दिख रही है उसके आसपास का 1 सेंटीमीटर भाग हम निकालते हैं और हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब जो हमने निकाला है उसको हम लोग जनरली टेस्ट करते हैं। तो स्टेजिंग जो बेसिकली होती है वो हमारी जो फाइनल बायोप्सी रिपोर्ट आती है उस बेसिस पे होती है। अब मान लीजिए कई बार जो स्टेज 1 लग रहा है वो हमारे बेस्ड ऑन बायोप्सी रिपोर्ट स्टेज 2 भी हो जाता है, तो वो केसेस में कभी कभी हमको मेन सर्जरी से साथ साथ एक और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ऐड करने की जरूरत पड़ती है। मोस्टली रेडिएशन करते हैं। उसके बाद 3, 4 जैसे ऐसे बीमारी बढ़ती जाती है, दोनों ही कंडीशन, मतलब जैसे जो लेटेस्ट स्टेजेस होते हैं उसमें सर्जरी प्लस रेडिएशन का प्रावधान है, और जब तक हम ये कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तब तक हम बीमारी से आगे नहीं निकल सकते हैं। तो बेसिकली 4 स्टेजेस हैं, और स्टेज 4 में भी अगर आपकी बीमारी डिटेक्ट हो रही है तो भी 50 से 60% लोग उसमें ठीक होते हैं। तो हमें ये सोचना है हम उस 50-60 के लिए हैं जिन्हें ट्रीटमेंट पूरा अगर हम करेंगे तो हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं।
1: जी। और डॉक्टर रश्मि जी, किसी व्यक्ति को कैंसर डिटेक्ट होता है तो इसका विपरीत प्रभाव तो स्वास्थ्य पर पड़ता ही है, लेकिन उस व्यक्ति की जो इकोनॉमिकली और सोशली जो कंडीशन होती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है?
0: ये बहुत ही एक्चुअली होलिस्टिक वे में अगर हम सोचें तो ये एक आदमी को कैंसर होता है जो एक मोस्टली वो ब्रेड अर्नर रहता है अपने परिवार का, दूसरा आदमी उसे

0: लेके आते हैं कई बार। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में है कि मोस्टली मैंने देखा है कि परिवार बहुत आपस में बंधे रहते हैं, लेकिन होता क्या है, वो भी अपना परिवार अपना काम छोड़ के आ रहे हैं। तो भले ही एक आदमी को कैंसर हुआ है, वो तो काम नहीं कर पा रहा है 3-4 महीने के लिए जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन एक आदमी दूसरा भी है जो अपना काम छोड़ के आ रहा है।
1: जी
0: तो ये दो फैमिली एक तरह से अफेक्ट हो रही है। हमारे पास सुविधा है, सरकार ने बहुत अच्छी आयुष्मान योजना इस तरह की सुविधाएं दी हुई है जिससे कि हम मदद कर पाते हैं। और बहुत सारे फंड्स भी होते हैं, बड़े कुछ अस्पतालों में फंड की अवेलेबिलिटी भी रहती है। जैसे हमारे यहाँ अरुण कुरकुरे फंड है जो कि इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता है। अगर हम उन योजनाओं का हेल्प लें तो हमें खर्चा वहाँ पे कम हो जाता है, लेकिन जनरली एक मोटा मोटी 12 से 15 हज़ार रुपये का खर्च एक आदमी को लगता है जब हम जांच कराने जाते हैं, प्लस आना जाना। और ये 3 महीने का जो समय रहता है, सर्जरी हुई है, रेडिएशन हुआ है, 1.5 महीने के करीब रेडिएशन चलता है, तो आप काम छोड़ के जब बैठे हो तो फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी जो हम कहते हैं कि
1: जी
0: वो बढ़ती जाती है।
1: जी
0: काम नहीं हो रहा है प्लस खर्चा हो रहा है। तो मैंने ये देखा है कि है ना, इसीलिए हमें तंबाकू से दूर रहना है। ये एक ऐसा चीज है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंटेबल है अगर हम तंबाकू से दूर रहें। भले ही कुछ बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि तंबाकू हम नहीं खाते थे लेकिन हमें हो गया,
1: जी
0: लेकिन वो परसेंटेज कम है। तंबाकू अगर आप सेवन कर रहे हो तो आपको कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो तंबाकू आपको, आप पहले जीवन भर तंबाकू पे खर्च करते हो, फिर उसकी इलाज के लिए खर्च करते हो, आपने जितना कमाया रहता है आप अपने ऊपर खर्च करके चले जाते हो।
1: जी
0: तो जो डिपेंडेंट फैमिली है उसके पास कुछ नहीं बचता है।
1: जी और डॉक्टर रश्मि जी, कई ऐसे भी हमने देखा है व्यक्ति होते हैं जो तंबाकू को छोड़ना चाहते हैं, और चूंकि उनकी हैबिट हो जाती है तो उसे छोड़ पाना उनके लिए कठिन होता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए चिकित्सा में इनको जो है एडिक्शन से मुक्त करा सके।
0: चिकित्सा में एक्चुअली टोबैको सीजेशन एक बहुत बड़ा मुहिम है जो कि सरकार चला रही है। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम्स चलते हैं, और ये अगर किसी में इच्छा शक्ति आ गई है तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि आप इस तरह के जो क्लिनिक्स होते हैं, टोबैको सीजेशन क्लिनिक्स, ये मोस्टली हर सरकारी अस्पताल में आपको, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ आपको गाइडेड वे में सिखाया जाता है, जिसमें कि फिजिकल एक्सरसाइजेस के अलावा आपको कब, आपका डिपेंडिंग कि आपको कितनी आदत है, पहले वो असेस किया जाता है। बेस्ड ऑन दैट फिर हमें आपको क्या दवाई की आवश्यकता है, या आप सिर्फ ट्रेनिंग से, मतलब आपके विचारों की ट्रेनिंग से, आपकी फिजिकल ट्रेनिंग से क्या हम इसको कम कर सकते हैं, ये असेसमेंट उस क्लिनिक में होता है। जिन केसेस में हमें लगता है कि ये नहीं हो पा रहा है, आप भी चाह रहे हो हम भी चाह रहे हैं लेकिन डिपेंडेंसी इतनी है, उन केसेस में कभी कभी निकोटीन के पैचेस होते हैं, निकोटीन के च्विंगम्स आते हैं, बट ये ऑफ द लेबल नहीं लेना है, मतलब बिना डॉक्टर की सलाह के आपको इनको नहीं लेना है। पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के थ्रू अगर हम जाते हैं टोबैको सीजेशन के, तो हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। मैंने कई लोगों को स्वयं अपने क्लिनिक में बैठ के काउंसलिंग करके हमने टोबैको की जो आदत है उससे मुक्ति दिलाई है।
1: जी
0: तो हमें इन योजनाओं का हेल्प लेना चाहिए, और उसके बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स भी अवेलेबल हैं। अगर हम मान लीजिए क्लिनिक तक नहीं जाते हैं तो नेशनल क्विट लाइन नंबर बोलते हैं, टोबैको क्विट लाइन नंबर है 1800112356।
1: जी
0: तो वो एक नंबर है जिसपे आप खुद फोन करके उनसे आप ले सकते हैं। प्लस आजकल जो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के तहत मोबाइल में भी आपको एप्स मिल गए हैं जो कि रिवॉर्ड और इस तरह की चीजें, छोटे गेमिंग फॉर्म जैसा रहता है, अगर आप उनका यूज करें तो आपको इसमें मदद हो सकती है।
1: जी, ये बहुत अच्छी जानकारी थी डॉक्टर रश्मि जी। डॉक्टर रश्मि जी, कार्यक्रम में चले उससे पहले आप हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगी?
0: मेरा आप सभी श्रोताओं से सिर्फ यही निवेदन है कि तंबाकू एक ऐसी चीज है जिसकी लत आपको जीवन में सक्सेस की तरफ नहीं ले जा सकती, उसके दुष्प्रभाव आपको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, आप मेंटली उसके गुलाम एक तो हो जाते हैं, तो आपका जो डिपेंडेंसी है वो आपको आपके 100% परफॉर्मेंस में हेल्प नहीं करता।
1: जी
0: हमारी जो यंग जनता है जिसका, जो हम देश निर्माण में हेल्प कर सकती है, वो फंस जाती है तंबाकू के इस जाल में, फिर हम बीमार पड़ते हैं, जो हमारा प्रोडक्टिव ईयर है वो हम अपने इलाज में बिता देते हैं। हम जो अपने परिवार के ग्रोथ और अपने स्वयं के ग्रोथ को जो टाइम देना चाहिए, या अपने जो भी आपका के जो पैसे हैं, आप जो भी कमा रहे हो, वो इन सारी चीजों में खत्म हो जाता है। तो आप सबसे यही निवेदन है कि हम सब मिलके एक दूसरे की मदद करके इससे हम दूर होने की कोशिश

0: करें, और जहां भी जरूरत हो इतने सारे सेंटर्स से, है, सरकार भी रेडी है हेल्प करने के लिए, आप लोग आइए। और अगर आप किसी नशे की आदत में है तो उसको छोड़ा जा सकता है, बस एक विल पावर चाहिए।
1: ये बहुत अच्छी बात है। और श्रोताओं, वर्ल्ड नो टोबैको डे पर आज डॉक्टर रश्मि रायर जी ने जो भी बातें बताई हैं इनका अनुसरण करना काफी आवश्यक है, क्योंकि धीरे धीरे भारत में तंबाकू से होने वाले कैंसर की संख्या काफी बढ़ती जा रही है। और जो भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हो और वो तंबाकू या कोई भी नशीले पदार्थों का एडिक्शन हो, वो आज ही तंबाकू छोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि तंबाकू से होने वाली बीमारी सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं पूरे परिवार के लिए नुकसानदेह होती है। और श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे डॉक्टर रश्मि राय जी से, जिन्होंने वर्ल्ड नो टोबैको डे और साथ ही तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों, उनके लक्षण और इलाज के बारे में बातें बताई। तो डॉक्टर रश्मि जी, कार्यक्रम में आ पाए और हमारे श्रोताओं को जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे विश्व तंबाकू निषेध दिवस और तंबाकू से संबंधित रोगों के लक्षण और उपचार पर डॉक्टर रश्मि राय, ओरल कैंसर विशेषज्ञ, बालको मेडिकल सेंटर रायपुर से ली गई भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थे रमा शंकर। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9 बजे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। प्रस्तुत है कार्यक्रम बातों बातों में। इसमें सुनिए ग्रीष्म लहर और मानसून पर रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री वाणी से ली गई भेंटवार्ता। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ला की है।
1: श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, इन दिनों छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। ग्रीष्म लहर भी अनेक स्थानों पर चल रही है। इस बीच राहत की बात यह है कि मानसून के करीब 1 जून के आसपास केरल में दस्तक देने की संभावना है। श्रोताओं, ग्रीष्म लहर और मानसून जैसे विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गायत्री वाणी। डॉक्टर गायत्री मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर में वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर गायत्री, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
2: नमस्कार
1: मैडम। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस समय छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक हिस्सों में ग्रीष्म लहर चल रही है, तो हमारे श्रोताओं को ये बताइए आसान भाषा में कि ये जो ग्रीष्म लहर है वो किन स्थितियों में बनती है, चलती है और किसी स्थान पर कितना तापमान होना चाहिए जब ग्रीष्म लहर बनने की स्थितियां पैदा होती हैं?
2: कोई भी स्थान पे अधिकतम तापमान अगर 45 से ऊपर है
1: जी,
2: अथवा 40 डिग्री से ऊपर होने के बाद
1: जी,
2: सामान्य से अगर 4.5 डिग्री से अधिक है
1: जी,
2: तब ग्रीष्म लहर का स्थिति हम डिक्लेयर करते हैं
1: जी। इसमें जैसे जो है वो आप बताते हैं, पूर्वानुमान देते हैं मौसम विभाग का, हर रोज मिलता है मीडिया को, तो वो पूर्वानुमान किस आधार पर आप देते हैं कि हाँ भाई इन इन स्थानों पर ग्रीष्म लहर चलने की चेतावनी दी जाती है?
2: अभी ये पूर्वानुमान जो है
1: जी,
2: ऑब्जर्वेशंस के साथ न्यूमेरिकल मॉडल्स में इनपुट देके हमको एक पूर्वानुमान आता है कि अभी आगामी दिनों में तापमान जो है सामान्य से अधिक होने वाला है और कितना अधिक होने वाला है। जब भी हम 2 दिन से ज्यादा अगर तापमान जो है 45 से ज्यादा नहीं है तो 40 डिग्री से अधिक होके सामान्य से भी 4.5 डिग्री से अधिक है
1: जी,
2: तब हम ये स्टेशन को हीट वेव डिक्लेयर करते हैं
1: जी। जैसे मौसम विभाग हम देखते हैं कि येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी करता है, तो ये जो अलर्ट्स होते हैं इनका आधार क्या होता है और ये तीनों अलर्ट्स के बीच में क्या अंतर है, क्या परिस्थितियां होती हैं जब येलो को या फिर ऑरेंज को या फिर रेड अलर्ट को जारी किया जाता है?
2: कोई भी मौसम का फिनोमिना हो, ग्रीष्म लहर हो या मेघ गर्जन का एक्टिविटी हो या

0: का स्थिति पे हो, कुछ भी स्थिति पे भारत मौसम विज्ञान विभाग का तौर से येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी करता है। येलो अलर्ट का मतलब ये होता है कि निगरानी रखे, मतलब जागरूक रहे
1: जी।
0: इसका मतलब है आपका आसपास एरिया में ये आने का चांसेस है, ये थोड़ा लो इंटेंसिटी का फिनोमिना हो सकता है। अभी ग्रीष्म लहर की बात किया तो आपका जिलों में अगर येलो अलर्ट जारी किया इसका मतलब होता है एक दो स्थानों पर आपको तापमान जो है सामान्य से अधिक होने का संभावना है
1: जी।
0: यदि ऑरेंज अलर्ट जारी किया मतलब चेतावनी ऑलरेडी जारी कर चुका है तो कोई भी कार्यवाही लेने के लिए आप तैयार रहिए, इसका मतलब ऑरेंज अलर्ट का वो होता है। जब रेड अलर्ट जारी करता है इसका मतलब होता है कि बहुत सतर्क रहे और कार्यवाही तुरंत कराए।
1: ये कार्रवाई से आपका आशय क्या है कि मतलब कार्रवाई क्या करें?
0: अभी ये अलर्ट जो है वो किस फिनोमिना के लिए हमने दिया गया है इसका ऊपर है। अभी ग्रीष्म लहर है, ग्रीष्म लहर के अलग अलग ये होता है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 12 बजे से 4 बजे हम बोलते हैं कि बाहर ना निकले। अगर रेड अलर्ट जारी किया है आपको 100% ये फॉलो करना ये होता है। अदरवाइज
1: अच्छा।
0: अगर मेघ गर्जन का एक्टिविटी और लाइटनिंग का एक्टिविटी दिया आपको इंडोर्स जाना पड़ता है, नहीं है तो खुला मैदान पर है तो उकड़ू बैठना पड़ता है। अदरवाइज फ्लड कंडीशन है, भारी वर्ष का चेतावनी है, रेड अलर्ट है तो आपको थोड़ा सुरक्षित जगह पे जाना होता है। ऐसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर फिनोमिना के लिए आपको अलग अलग कार्यवाही लेना पड़ता है
1: जी। मैडम, जो ग्रीष्म लहर जो चलती है या जिसे हम आम भाषा में लू भी कहते हैं, तो इस दौरान लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए आमतौर पर, और साथ ही प्रशासन को भी कभी कभी आप कहती हैं कि ये उपाय या इंतजाम या व्यवस्था की जाए, ये इसके बारे में बताएं।
0: सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम ग्रीष्म लहर का चेतावनी इश्यू करता है, येलो अलर्ट हो या ऑरेंज अलर्ट हो या रेड अलर्ट हो
1: जी,
0: जितना हो सके 12 बजे से लेके 4 बजे के बीच में अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले, और काफी ज्यादा पानी या तरल पदार्थ जो है वो लेना चाहिए ताकि बॉडी डिहाइड्रेटेड ना रहे। इसका अलावा चेतावनी जब भारत मौसम विज्ञान विभाग का तौर हम जारी करते हैं, ये राहत आयुक्त को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को और हेल्थ डिपार्टमेंट को, ये सारा स्टेक होल्डर्स को हम जारी करते हैं। जैसा ही हम जारी करते हैं सूचना मिलते ही राज्य सरकार और प्रशासन पब्लिक को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एडवाइजरीज जारी करते जाते हैं, एंड ये एडवाइजरीज के साथ भी कुछ एक्शंस जैसा सभी कॉमन प्लेसेस में पीने के पानी की व्यवस्था करना या क्लोज्ड शेल्टर्स करना, अभी हम देखते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल्स पर ग्रीन शेड डालना, ये सब ऑलरेडी प्रशासन जो है हमारा चेतावनी का आधार पर करते जाता है।
1: मैडम, ये देखने आता है कि जैसे अप्रैल, मई, जून, ये सब जो है वो आमतौर पर गर्मी के महीने होते हैं, भीषण गर्मी का दौर रहता है, लेकिन बीच बीच में एकदम से मौसम बदलता है, मेघ गर्जन की एक्टिविटीज भी होती हैं, हल्की बारिश भी होती है, इसकी क्या वजह होती है?
0: ये मार्च अप्रैल मई का सीजन जो है ये सीजन को हम प्री मानसून सीजन कहते हैं।
1: अच्छा।
0: ये हमारा प्रदेश में मानसून होता है जून से लेकर सितंबर तक, और ये प्री मानसून सीजन में जब भी उत्तर पश्चिमी और के साइड से ड्राई विंड्स जो है, शुष्क हवा जो आता है, और दक्षिण पूर्वी का और से नमी युक्त हवा जो बे ऑफ बंगाल से आता है, ये दोनों का इंट्रैक्शन की वजह से ये मेघ गर्जन का एक्टिविटी पूरा प्रदेश में होता है। ये छत्तीसगढ़ में लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये कॉमन फिनोमिना है ये सीजन में होना।
1: अब गर्मी की बातें काफी हो गई, अब मानसून की बात करते हैं, लोगों को थोड़ी सी राहत मिले। तो भारत में यदि हम मानसून की बात करें तो छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचता है, तो कितनी तरह के मानसून का प्रभाव हमारे देश भारत में पड़ता है, और छत्तीसगढ़ में कौन सा मानसून प्रभावी होता है और क्यों, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं।
0: भारत में मुख्यतः दो प्रकार के मानसून होते हैं
1: जी।
0: एक तो दक्षिण पश्चिमी मानसून जो जून से लेकर सितंबर तक होती है, और दूसरा मानसून है उत्तर पूर्वी मानसून जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक होती है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो है मुख्य रूप से पश्चिमी का और मध्य भारत, उत्तर भारत और पूर्वी भारत को ज्यादातर वर्षा देती है, और ये नॉर्थ ईस्ट मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून जो है मुख्य रूप से अक्टूबर से दिसंबर तक ये दक्षिण पूर्वी स्टेट्स है, जैसा आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु पांडिचेरी तक, ये पूरा रीजन में ज्यादातर वर्षा देती है।
1: अच्छा,
0: छत्तीसगढ़ का बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगभग 80% का वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून में मिलती है।
1: जी, एक बात और है मैडम कि हमारे श्रोताओं को ये भी बताएं कि हम मानसून तो हमेशा सुनते हैं कि मानसून आ गया, इसके बनने की क्या स्थितियां होती हैं और आगे बढ़ने की भी क्या स्थितियां बनती हैं, क्योंकि

0: कभी हम सुनते हैं कि मानसून ने दस्तक देगी लेकिन वो अटक गया है, मतलब हम एक आम बोलचाल की भाषा में कह रहे हैं, तो मानसून कैसे बनता है, उसका आगमन जब होता है कैसे होता है और फिर वो आगे बढ़ता है तो क्या स्थितियां बनती है, थोड़ा सा आसान भाषा में हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: नॉर्मल तौर पर पूरा भारत में सबसे पहले मानसून जो है केरल में एंट्री करती है
0: जी।
1: एंट्री का नॉर्मल डेट है, सामान्य तिथि है 1 जून है। जैसा ही 1 जून में केरल का ऊपर ऑनसेट होती है, लगभग जुलाई फर्स्ट वीक तक पूरा भारत कवर कर लेती है। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बस्तर संभाग में इसका एंट्री लगभग जून 12 का आसपास होते हैं, वो भी सामान्य तिथि है। ये सामान्य तिथि से अंतर ग्लोबल कंडीशंस का ऊपर भी डिपेंड करते हैं। एंड इस बार अगर मानसून की बात करें तो भारत में अभी केरल में भी मानसून ऑनसेट डिक्लेयर करने के लिए आपको विंड का दिशा जो है वो साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिमी का ओर होना, नमी का ये देखना, एंड एक क्राइटेरिया होता है कि स्टेशन इतना नंबर ऑफ स्टेशन में इससे ज्यादा बारिश हुआ, कंटिन्यूअस 5 दिन हुआ तो इसका मध्य तिथि जो है वो ऑनसेट डिक्लेयर करता है। इसका अलावा सोलर रेडिएशन भी हम देखते हैं, ऐसा कुछ कुछ मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं जो क्राइटेरिया फॉर्म करते हैं ये डिक्लेयर करने के लिए। जैसे ही मानसून का ऑनसेट होता है केरल में उसके बाद आसपास स्टेशन को देखते हुए इसका प्रोग्रेस हम धीरे धीरे मानसून का नॉर्दर्न लिमिट करके बोलते हैं। जैसा हमने बोला कि पूरा भारत कवर करने में लगभग आपको 1 महीना लग जाएगा।
0: अच्छा, इस साल मानसून के कब तक दस्तक देने की संभावना है?
1: अभी जैसा बोला मैंने कि मानसून का ऑनसेट जो है सामान्य तिथि जो केरला का ऊपर 1 जून है, बट आज का स्थिति में देखा है तो आगामी 2 से 3 दिन तक लक्षद्वीप एरिया तक पहुंचने की तो संभावना है और उसके पश्चात ही हम बोल पाएंगे कि केरला के आने के पश्चात इसका प्रोग्रेशन और वर्षा का गतिविधि देखकर ही छत्तीसगढ़ के ऊपर कब तक आने की चांसेस है वो हम बता पाएंगे।
0: जी, एक बात और है मैडम कि इस वर्ष की यदि बात करें वर्ष 2026 की, तो कहा जा रहा है कि मानसून के दौरान सामान्य से कम वर्षा होगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है और इसकी वजह जो है वो सुपर अल नीनो इफेक्ट जो प्रभाव है उसको इसका कारण बताया जा रहा है। तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि अल नीनो जो प्रभाव है या इफेक्ट है वो क्या होता है और अल नीनो तथा सुपर अल नीनो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है।
1: सबसे पहले एल नीनो क्या है वो डिस्कस करते हैं। एल नीनो जो है एक एटमॉस्फेयर एंड ओशन का, ये दोनों का संबंधित एक पैटर्न है। इसका मेन क्षेत्र जो है प्रशांत महासागर में, पूर्वी और मध्य क्षेत्र में अगर समुद्र का सतह टेम्परेचर जो है वो सामान्य से अधिक रहा, यूजुअली ये फिनोमिना जो है 2 साल से लेके 7 साल में एक बार आने की संभावना होता है।
0: अच्छा।
1: जब भी वहां तापमान जो है सामान्य से अधिक रहते हैं पूरा ग्लोबल वेदर पैटर्न जो है वो सब में आपको प्रभाव पड़ने की चांसेस है, जिसमें हमारा मॉनसून भी, वो भी मुख्य रूप से हमारा दक्षिण पश्चिम मॉनसून भी इफेक्ट होती है।
0: जी।
1: और इस साल हमारा पूर्वानुमान है अभी ये एल नीनो जो है न्यूट्रल कंडीशन में है, एनसो कंडीशन न्यूट्रल में है, बट भारत मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि लगभग जुलाई और अगस्त मिड मॉनसून तक एल नीनो कंडीशंस बनने की चांस है, जिसका वजह से इस बार पूरा मॉनसून का भारत देश में सामान्य से कम रहने के चांस है, वो भी लगभग लॉन्ग टर्म एवरेज दीर्घकालिक जो मॉनसून रेनफॉल होता है वो मॉनसून रेनफॉल का लगभग 92% होने के चांस है जो बिलो नॉर्मल है।
0: जी, एक बात और है, जैसे आपने कहा कि एल नीनो के बारे में तो आपने बताया लेकिन एल नीनो सुपर एल नीनो ये दोनों के बीच में क्या अंतर है?
1: सुपर एल नीनो जो है कोई साइंटिफिकली प्रूवन टर्म नहीं है।
0: ओके।
1: और आमतौर पर ऐसा इंटेंसिटी मतलब जितना तीव्रता से एल नीनो है उसके लिए आमतौर से ये यूज करते जा रहे, लेकिन कोई साइंटिफिकली प्रूवन शब्द ये नहीं है। अभी साइंटिफिकली देखा है तो एल नीनो ही एक शब्द है जो हम बात करते हैं।
0: यदि हम पिछले वर्षों की बात करें तो भारत में एल नीनो का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो कब कब देखने को मिला है, कुछ ऐसे आंकड़े हैं क्या आपके पास में?
1: भारत देश में लगभग 1950 से लेके 2025 तक अगर देखा है तो लगभग 16 इवेंट्स हुआ है एल नीनो का, जिसमें 7 इवेंट्स है जहां एल नीनो में ये दक्षिण पश्चिमी मानसून का रेनफॉल में कमी देखने के लिए मिले थे। 1-to-1 कोरिलेशन एग्जैक्टली नहीं है लेकिन ज्यादातर केसेस में ये दक्षिण पश्चिमी मानसून का रेनफॉल में कमी आने की संभावना है। जैसा मैंने बताया 16 इवेंट्स में 7 इवेंट्स जैसा है जहां कम है, वो भी पूरा

0: भारत में कम होने की तो संभावना एग्जैक्टली नहीं हो सकता। अभी लेटेस्ट इवेंट देखा है तो आपको 2016 में भी एक इवेंट आए थे, लिनो इवेंट, तब कुछ क्षेत्र में मॉनसून का रेनफॉल सामान्य रहा, लेकिन कुछ क्षेत्र में जैसा उत्तर और उत्तर पश्चिमी का भारत में सामान्य से काफी कम रहा।
1: एक आखिरी सवाल कि समय के साथ साथ हमने देखा है हाल के वर्षों में जो मौसम विभाग है उन्होंने लोगों को सावधान करने के लिए, सतर्क करने के लिए, उन तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए मीडिया के अलावा भी जो आधुनिक संचार के जो साधन हैं SMS के माध्यम से या इसका भी जो है उसने जो है वो उपयोग करना शुरू किया है, थोड़ा ये भी बताएं, क्योंकि हम देखते हैं कई बार SMS आता है कि नहीं अलर्ट रहें और पर्टिकुलर रीजन को फोकस करके आप वहां पर देते हैं, थोड़ा सा ये भी बताएं।
0: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा कोई भी चेतावनी है सबसे इम्पोर्टेंट सारा स्टेक होल्डर्स को, जैसा मैंने बताया राहत आयुक्त को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को, यह सबको पहुंचने के पश्चात एक कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल करके एक ऐप होता है जिसमें हमने स्टेट अथॉरिटीज को इश्यू करने के पश्चात वो लोग लोकेशन बेस्ड पे आपका सिम प्रोवाइडर्स को, जैसा हमारा BSNL होता है, एयरटेल होता है, जियो होता है, वो सिम प्रोवाइडर्स के साथ कोलैबोरेट करके आपका एरिया में ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट आपको पुश करते हैं, जिसका वजह से आपका मोबाइल में वो अलर्ट आते हैं। इसका अलावा गवर्नमेंट का दो इम्पोर्टेंट ऐप्स है जो किसान भाई लोग के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। एक तो दामिनी, ये दामिनी ऐप हमको जानकारी देती है कि आपके आसपास क्षेत्र में कहां मेघ गर्जन का एक्टिविटी हो रहे, कहां वज्रपात हो रहे। अभी हमारा द्वारा ये कह जाता है कि आपको अगले 24 घंटों में आपका क्षेत्र में सिवियर थंडरस्टॉर्म्स, तीव्र मेघ गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। हम पूरा 24 घंटा काम कम नहीं कर सकते हैं, तो ये ऐप डाउनलोड करने से हमको अगले 1-2 घंटे में आपका यहाँ अगर कोई वज्रपात हो इसका आपको जानकारी जो है वो ऐप से मिल जाती है। इसका अलावा मेघदूत करके एक ऐप जो है वो सिर्फ कृषि संबंधी जानकारी के लिए बना हुआ है, जो हमारा किसान भाई लोग के लिए काफी यूजफुल होगा। इसका अलावा मौसम ऐप जो है, आप लोकेशन इसमें एनेबल करने से आपका जहां लोकेशन है वो लोकेशन पर आपको कितना तापमान है, कौन सा चेतावनी जारी किया है, यह सब आपको मिल जाएगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री मैडम, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी हैं और निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गायत्री वाणी जो मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर में वैज्ञानिक है, उनके साथ हमारी ये बातचीत। अब हम आपसे विदा लेते हैं, अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।
2: आकाशवाणी की रायपुर केंद्र से आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातों बातों में। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:15 हो चुके हैं। अब लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना संगीतबद्ध किया है आनंद मिलिंद ने। फिल्म है कयामत से कयामत तक।

फिल्म जो जीता वो ही सिकंदर से आइए सुने मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत। आवाजें उदित नारायण और साधना सरगम की, संगीतकार हैं जतिन ललित।

अलका याग्निक की आवाज में पेश है कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। जतिन ललित का संगीत बोल आनंद बख्शी की फिल्म है दिल क्या करे।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है साल 1999 में रिलीज हुई लोकप्रिय बॉलीवुड रोमांटिक एक्शन फिल्म होगी प्यार की जीत।

अपनी बेहतरीन रोमांटिक केमिस्ट्री, कॉमेडी और पारिवारिक ड्रामा के लिए लोकप्रिय फिल्म होगी प्यार की जीत 7 मई 1999 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अजय देवगन, अरशद वारसी, नेहा और मयूरी कांगू मुख्य भूमिकाओं में थे। वहीं मोहन जोशी ने ठाकुर गजेंद्र सिंह का खलनायक का किरदार निभाया था।

पी वासु निर्देशित इस फिल्म का निर्माण अनिल शर्मा द्वारा किया गया था। फिल्म की कहानी दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने पिता की मौत और अपमान का बदला लेने की योजना बनाते हैं और बाद में खलनायक की बेटियों से प्रेम में पड़ जाते हैं।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
4: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
2: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे,
7: RBI कहता है।
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: श्रोताओं, फिल्म होगी प्यार की जीत का संगीत सफल रहा था। आनंद मिलिंद की जोड़ी ने संगीत तैयार किया था और गीत समीर ने लिखे थे। कम बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था और फिल्म हिट रही थी। इस फिल्म के गाने आज भी खूब पसंद किए जाते हैं।

इस फिल्म में अजय देवगन और अरशद वारसी पहली बार साथ नजर आए थे। इसके बाद दोनों ने कई फिल्में साथ में की। फिल्म होगी प्यार की जीत में जितना एक्शन है उतना इमोशन भी देखने को मिलता है। फिल्म में दो अलग अलग लव स्टोरीज दिखाई गई हैं और कुछ किरदार ऐसे भी हैं जो दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं। इस फिल्म को अजय देवगन के दमदार अभिनय के लिए भी याद किया जाता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म थी होगी प्यार की जीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: वाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का कल राज्यपाल ने किया शुभारंभ। कोंडागांव सहित दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में तेज आंधी और बारिश के कारण जनजीवन हुआ प्रभावित और हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रायपुर प्रेस क्लब आज राजधानी में कर रहा है संगोष्ठी का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय आम महोत्सव का आज दूसरा दिन है। महोत्सव का उद्घाटन कल राज्यपाल रमन डेका ने किया था। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आम उत्पादन और मैंगो टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने किसानों से पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक तकनीकों को अपनाने और आम के वैल्यू एडिशन पर ध्यान देने का आह्वान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने में आम की खेती महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। महोत्सव में देशभर की 250 से अधिक किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए हैं। ये महोत्सव कल रविवार तक चलेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अधिकारियों और कर्मचारियों को 6,00,000 रुपए का निशुल्क लाइफ टर्म इंश्योरेंस कवर मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने संबंध में बैंक ऑफ इंडिया के साथ MOU करने की अनुमति दी है। ये सुविधा उन NHM कर्मचारियों को मिलेगी जिनका वेतन खाता बैंक ऑफ इंडिया में संचालित है। सामान्य मृत्यु की स्थिति में ये बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि इस पहल से NHM के हजारों कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का अतिरिक्त लाभ मिलेगा और उनके परिवारों को आर्थिक संबल प्राप्त होगा। कोंडागांव जिले में तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार चिपावंड गांव में 2 दर्जन से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा लखनपुरी में 1, बड़े सिलाटी में 3 और बड़े कनेरा में 1 मकान को नुकसान पहुंचा है। धनपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 1 मवेशी की मौत हो गई। आंधी के कारण कई पेड़ उखड़ गए तथा बिजली के खंभे और तार क्षतिग्रस्त होने से बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। राजस्व विभाग प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन कर रहा है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आज राजधानी रायपुर में VIP रोड पर स्थित श्रीराम मंदिर के पास सुंदर सदन में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। कार्यक्रम के दौरान कुल 4 सत्र होंगे, जिनमें वरिष्ठ पत्रकार, मीडिया विशेषज्ञ और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि पत्रकारिता से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। देशव्यापी जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत रायपुर शहरी जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण का एक सफल मॉडल बनकर उभरा है। एक समय जलभराव और गिरते भूजल स्तर की समस्या

0: से जूझ रहे शहर में अब वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। रायपुर नगर निगम ने तकनीकी विशेषज्ञों, बिल्डरों, संस्थानों और नागरिकों के सहयोग से ये पहल शुरू की है। इसके तहत वर्ष 2025 में शहर में लगभग 32,000 वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण संरचनाएं बनाई गई हैं। इनमें रिचार्ज कुएं, परकुलेशन पिट, इंजेक्शन वेल, रिचार्ज शाफ्ट और रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम जैसी संरचनाएं शामिल हैं। जशपुर में कृषि विभाग की टीम ने फरसाबहार विकासखंड के खारीबहार गांव में छापेमार कार्रवाई कर अवैध उर्वरक भंडारण का खुलासा किया है। जांच के दौरान एक मकान से 342 बोरी ऑर्गेनिक खाद बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इसे किसानों को डीएपी खाद बताकर बेचा जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम राकेश पैकरा ने मौके पर पहुंचकर मकान को सील कर दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का कल राज्यपाल ने किया शुभारंभ। कोंडागांव सहित दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में तेज आंधी और बारिश के कारण जनजीवन हुआ प्रभावित और हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रायपुर प्रेस क्लब आज राजधानी में कर रहा है संगोष्ठी का आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आजी जो सगा। इसमें अर्जुन सिंह नाग से भेंट कर रहे हैं बलबीर सिंह गज।
2: रेडियो सुनतो भाई बहन मन सपाय के खुबे खुबे सेवा जोहार। जसन के आपन मन आमचो ये कार्यक्रम बलने आजी चो सगा ने कई कसन बलने आप लो जीवना ने संघर्ष मेहनत मसागत करुन बाती कई कसन सेवा चो क्षेत्र बने रहसोत आरु आमी तो आम जानू से कि आगे जुगे असन माने के बलने बार तो काजे कई असन साधन नि रली टेबल एबल का है कि असन मेहनत मसागत करुन बाती कई लोग बोले आगे बाढ़ सोत समाज क्षेत्र ने कहीं न कहीं सेवा कर सोत तो असन लोग मन संगे आमी गोट बात करुन बाती आपन मन के सुनाओ से जेचो ने कहा है कि जोन आमचो ये तो पीढ़िया थुन मन के कहीं न कहीं असन सीख मेरो बाट मेरो आगे बढ़ तो काजे उन मन के मंजी ने कहीं चिपाई लेने कसन लड़ूक सक दे असन गोट बात कर लेने आम के जानू खुलाई मेरे से तो असने ची आज ही बोले मैं गोट बात करें से मंतर ए मंचो जन परिचय आए जन्म बाढ़ आए पढ़ाई लिखाई आए यही मंचो टोंडले आमी जानू कुलाए चाहवा तो सब ले आगे खूबे खूबे जुहार बोलने से आरु
3: जुहार का इच्छा
2: जुहार आरु सब ले पहल तो मैं तुम चो जन परिचय आए बोले ने कहा कि तुम चो जन जन्म बाढ़ आए पढ़ाई लिखे कसन होली कहाँ होली इताले मोर
3: मैं सबसे आगे अपन संग संगे और जित्रो सुन तो दादा दीन दीदी मन के बोले जोहार करें से मच नाव अर्जुन सिंह नाग है और मचो जन्म बाड़न गांव जयदगिरी है जो बकाउंट तहसील में
2: अच्छा।
3: और हमी जो आऊ खेती और लेबर घराना लेबर मजदूरी वर्ग चो हम चो घराना रहे घर रहे और बेड़ा खड़ा का है कि बाप दादी मन खूबे भाई होलो कारण में जब बंटवारा होली तो थोड़े थोड़े होली एक एकड़ डेढ़ एकड़ सन बाप मन की मिली उन कारण में हम जो परिवार में थोड़े ज्यादा जीव तो बोले तकलीफ
2: रही।
3: मैं आदिवासी बरक चु और हलवा जाति चु और मचो उम्र एबे 73 साल पूरा होली और 74 साल एबे चले से।
2: अच्छा
3: जी। और मचो पढ़ाई मिडिल स्कूल तक 8वीं तक जैदगिरी में ही होली हंचो बाद में मैं जगदलपुर ले जगदलपुर में नेहरू छात्रावास में रोहन भाती मैं हायर सेकेंडरी
2: अच्छा
3: आगे 11वीं मैट्रिक रहे उन हिसाब में मैं पढ़ ले और हुन साल मैट्रिक पास हो तो के 11वीं पास हो तो के ये जूनियर कॉलेज कनिष्ठ महाविद्यालय बोले हुन बस्तर हाई स्कूल में खुल ली होता मैं फिर कॉलेज चो पहला साल होता मैं पढ़ ले।
2: अच्छा।
3: उनके बाद में मैं कॉलेज में गेले कॉलेज में जाऊन भाती मैं साइंस विषय धरून भाती पढ़ ले और

0: 1972 में मैं ग्रेजुएट होले
1: अच्छा
0: साइंस विषय में, और मैं मके शांत का जे मके बड़ी गर्व लागू है कि धर्मपुरा कॉलेज में पहला आदिवासी लेका साइंस ग्रेजुएट मैं आए।
1: अच्छा
0: हाँ मचो आगे ये साइंस ग्रेजुएट हो तो मचो आगे कोनी बोले आदिवासी लेका नीरव, मैं आदिवासी लेका च बात करें।
1: हाँ
0: उनके बाद में मैं 1972 में जब मैं ग्रेजुएशन होले तो उनके बाद में मैं मके मास्टर नौकरी मिल ली।
1: अच्छा
0: तो उन समय में हमन मन के सांग तो लोग को नहीं रहोत कि पीएससी दे तो रहा है कि तहसीलदार का जाए कि कलेक्टर का जाए, ये परीक्षा दे तो काज हुन समय में सांग तो नहीं कहा है, पता ही नहीं रहे
1: नहीं
0: हम जो लोग बोले शहर में बहुत कम रहो। तो हमन मन जसनी ग्रेजुएट होते गेलू हम संगवारी मन लेखा मन संग, तो बाद में मास्टर तो इंटरव्यू दे तो के मास्टर में मैं नौकरी लग ली। और ये मुंडा गांव लग चु भानपुरी ले पर गुड़िया गांव में मैं जाऊन भाती स्कूल खोल ले प्राइमरी स्कूल।
1: अच्छा
0: होता रहते रहते फिर बाद में मके घोटिया में मिडिल स्कूल में पठाला, होता रहते फिर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं गेले।
1: अच्छा
0: सेंट्रल गवर्नमेंट में दंडकारण्य प्रोजेक्ट रहे, ये 1978 में मैं दंडकारण्य प्रोजेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी में गेले हूँ मास्टर नौकरी छाड़ू। और उनके बाद में दंडकार प्रोजेक्ट बस्तर जिला में खत्म होते के मके पठाला कोरापुट उड़ीसा में।
1: अच्छा
0: होटा रोहन भाती में नौकरी करते करते उड़ीसा चो राज में बोले ये दंडकारण प्रोजेक्ट बंद होते के तुम्हारे मके दिल्ली पठाला।
1: अच्छा दिल्ली,
0: दिल्ली में होता पे एंड अकाउंट ऑफिस में होम मिनिस्ट्री चो पे एंड अकाउंट ऑफिस में मके कनिष्ठ वेतन पे वेतन ले अधिकारी में चु रूप में मके पठाला। फिर होता मैं कम से कम 3-1 साल रहे।
1: अच्छा
0: हाँ और उनके बाद में फिर मैं होता ले रिटायरमेंट मांग ले, और रिटायरमेंट समय ले आगे मके रिटायरमेंट मांग ले कहन बोल मके था जो जो जमीन बाड़ी जो भी मैं बनाऊ रहे उन सब चीज के दख तो लोग बल नहीं रहो सोने कारण में फिर मैं रिटायरमेंट धरन बात ले। यही में साहब जब ये डीएन के प्रोजेक्ट में जगदलपुर में रहते रहते मैं जब वो सर्विस करते रहे तो हुन समय में वकालत पढ़ तो काजे ये था कॉलेज खुल ली।
1: अच्छा
0: तो कॉलेज खुल तो के मैं ही बीच में वकालत बल पास करू रहे, और जब मैं दिल्ली ले मैं जब रिटायर हूँ भाती ले तो मैं वकालत प्रैक्टिस चालू कर ले।
1: अच्छा
0: हाँ हूँ समय ले अभी तक बोले मैं समाज सेवा और वकालत चुका हूँ मैं ये भी करें।
1: अच्छा हाँ हाँ तो अर्जुन सिंह नाग राज जसन की तुम चो ये तो होली बोले पूरा तुम चो पढ़ाई लिखाई चु कहानी सर्विस चु कहानी वकालत चु कहानी सांगलास मंत्र ये भी कहा कि तुम चो जो पर्यावरण संरक्षण जो क्षेत्र ने बोलू भी खूबे नाम सुनु खो से जानू खो से देश विदेश ले बोले असन तुम चो बोले कई कसन मान सम्मान असन नाव जाना ची ना से तो ये केवल मैं जानू चाहे से ये भी ये चो काय काम कर सास कसन काम कर सास।
0: हाँ तो जब मैं ये था वकालत में जब ये तो उनके बाद में मैं ये देख ले कि हम चो लोग के मैंने बहुत से चीज आजकल जो जिंदगी में चल तो में थोड़े तकलीफ होए से या हुन मन के ये तो में बोले संकोच होए से झिझक होए से।
1: अच्छा
0: उन कारण ये है कि यथा हमन मन के खास करके बस्तर चो लोग के और बस्तर में बोले आदिवासी के ये आदिवासी के लोग आगे बढ़ा तो काजे उन्हीं को बाढ़ दखा तो लोग निहां मैं दख ले और मैं पाव ले जगह चो स्थिति के। तो हमन मन मैं संग और फिर दो कर साथ ही मन रहो तो आदिवासी हरिजन कल्याण समिति आगे बना लो।
1: अच्छा
0: और होता लोग के जागरूक कर तो काजी ये हम चो हम संस्था आगे काम करते रहे।
1: अच्छा।
0: हम मन हम समय में कोई गाड़ी घोड़ा नहीं रहे और कुछ ये नहीं रहे और कहाँ ले सहायता बल मीर तो मुश्किल रहे तो होने रहते रहते होता फिर हम मन पैदल जाते और गांव चो लोग के सांग तोर ये सब जीव तो आए कि हुसन के भी कहीं होलो में ये जागरूकता आन तो काजी ये सब चीज हम मन के सांगते गेलु। सांगते सांगते बाद में जब सब आदमी मन हम तो काम करते लोग बोले अलग अलग मन बिछुड़ते गेला कहन बोलो मैं सब कुछ तो और

0: फिर नौकरी में गेला तो और कुछ होली कहीं कुछ होली तो हुन संस्था ले बाद में मैं और हम चोर बाकी संगवारी मन लीफ नाव चो एक संस्था बना लो। ये 2004 चो बात है।
1: अच्छा
0: हुन लीफ चो मने पूरा नाम, हालांकि ये अंग्रेजी नाव है लीफ, लीफ मने तुम जान सास्ती ये पत्ता, पान, पाना, पान तो है ना, तो ये है LEAF, लेकिन हुन चो फुल ये है पूरा नाम लीगल एंड इन्वायरमेंटल एक्शन फाउंडेशन। हुन चो हिंदी में विधिक एवं पर्यावरण कार्य संस्था।
1: अच्छा,
0: ये पूरा संस्था चो
1: नाम है।
0: ये संस्था चो उद्देश्य ये है साहब कि हम चो लोग चो ये विचार होली जित्रो बोले गांव चो लोग चो कि साहब हमन में जो संस्था बनाऊ से ये संस्था में हम जो जब पर्यावरण कार्य संस्था है विधिक साक्षरता बोलिए आए हमके जागरूकता करुआ तुमन मन तो ये यथा हमन मन जो जंगल के बचा तो पहला काम हम जो होते है तो जंगल कसन जंगल के बचावा तो देशी प्रजाति चो जंगल, देशी प्रजाति चो जंगल हम जो आगे बाप दादी समय में खूब ये रहे मतलब गांव तक रहे घर तक रहे, धीरे धीरे जंगल ले भी हम जो गांव ले पराई से दूर तो एक एक कसन बल
1: बचा सको।
0: हाँ तो हुन कारण में हमन मन फिर नर्सरी तैयार करते गेलू।
1: अच्छा,
0: ये हम जो लीफ संस्था में 5 नर्सरी आसे।
1: अच्छा,
0: और जंगल देसी प्रजाति चो बीच के जंगल ले हम मन के जमा कराउन भाते, फिर उनके नर्सरी बराउन भाते। साहब जहाँ जहाँ बोले जंगल बिगड़ ली से, और जहाँ बोले या जंगल न्याय उसन जमीन बोले आसे गांव चो लोग में, तो हुन मन के समझाउन भाते अभी प्लांटेशन करूँ से।
1: अच्छा,
0: एक हर गेलू हम ये संतकरमरी गाँव, ये बकाउंड ब्लॉक तहसील जो है ना, जो उड़ीसा और बॉर्डर जो ना, हुन गांव च बीच ले एक ठन कुरंदी नाव चो नदी बहे से भी बोले।
1: अच्छा,
0: हुन नदी बारिश में ही थोड़े पानी रहे से, लेकिन जैसन जैसन हुन गर्मी एते जाए से तो एकदम सूखे से, लेकिन हमन मन जब छोटे रहूं तो होलल्ला हुन नदी में अच्छा पानी रहे और खेती बाड़ी बल कर चलते रहे हुन लग चो किनारे चो लोग मन के।
1: अच्छा,
0: तो हमन मन ये सोच लो कि लोग हम के सांगला आगे से जानकर, नहीं साहब ये था जंगल खूब रहे तो पानी चो स्रोत बले रहे तो पानी आते नहीं रहे, तो ये सोच तो के हमन मन फिर संस्था चो लोग मैं लिखुन भाती ग्रोटरी नाव चो संस्था मन के लिख तो के हुन मन बोल के नहीं ठीक है हुन नदी में अगर तुम मन के बचा तो तुम मन नदी के आए तो फिर प्लांटेशन अगर करा हुआ हर जाले हम तुमके हेल्प करूँ। तो हुन साल 15 किलोमीटर दूर नदी चो उपजा असले धरुन भाती ये था दुर्गा बेड़ा अब जान होता तक में आया हमी 1,00,000 पौधा तो प्लांटेशन कर लो।
1: अच्छा,
0: और गांव के लोग उनके रक्षा करते गए। ये भी हुन जंगल है भी थोड़े थोड़े बाढ़े ते भी लगनो 2-3 साल हो से, तो अगर हुन बाचलो में नदी चो स्थिति बल अच्छा हो से। और ये पूर्व चो बात है कि ये बड़े आरापुर में बोले हुन गांव में बल जाऊन भद्दक तो के हुन निस्तार जमीन रहे तो हम उनमन सब गोठिया तो के होता लोग बोले राजी होला बचा तो काज बोले राजी होला 50,000 पौधा होता बल लगा लू से। और उसने संग ये साल बोले छिंदावाड़ा में गोंचापारा में 50,000 पौधा हुन मन चो जंगल बर्बाद होते रहे हो रहे होता बोले हमें लगाऊ से।
1: अच्छा
0: जी, ये होली हम जो ये हम जो संस्था चुका है में हम जो संस्था जो है विदेश जो लोक संगे NTFPEP नाम जो एक पूरा एशिया भर में होता आसे और होता हमन में हुनमन संग जुड़ लू से लेब जहन कि हम अपन पूछते रहास कि आप विदेश चो ये बात ये बात है कि मैं लगभग 5 हार में गेले से
1: विदेश में
0: तो जान कि फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, मलेशिया में एक बार फिर ये भी और फिर गेले उसने और फिर दूसरा देश मन संग

0: ले पांच बार
1: और
0: एक हार हुसनी होली की होता मलेशिया में पहला बार जब इंडोनेशिया में जहू रहे हो तो होता ले हैरिसन नाम चो वकील मखे कहा कंप्यूटर वगैरह नेट में कहा दुख रही होती तो होता जो ऑर्गेनाइजर के हुन बोलो कि नहीं नाग इलो से इंडिया ले तो हुन से संगामी भेट तो आए उनके पठावा बोलतो कि फिर मैं जाऊ रही होता
1: अच्छा
0: आज हुन बोले होता जो आदिवासी मन जो काजे रक्षा काजे हुन केस लड़ते रहे
1: अच्छा
0: मके सुनू रहे काहे न खून आदमी तो ये आदमी को बोला लो मैं होता हुन काय काय काम करे से आदिवासी मन काजे तो ये सोचुन बात फिर मके बोला तो के फिर मैं गेले और फिर हुन मन संग उठ्या रहे
1: अच्छा
0: जी
1: और नागदादा जसन की तुम्हें बोले ने विदेश ने पांच जगह जन जसन जाओ रहे बोल सर तो जसन की तुम जो कार्य हिसाब ने तुम जो जो काम कर सा सोनी साहब ने कहीं असन फरक कहीं अंतर कहीं तुलनात्मक असन कहीं सोच मन ने विचार ऐसे
0: हाँ अभी का है ये था हम जो आदिवासी विश्व चो कसा होता आदिवासी मन चो यही स्तर है
1: अच्छा।
0: शिक्षा कमी गरीबी और प्राकृतिक वन संसाधन या जहाँ पानी ज्यादा जगह है पानी चो संसाधन ले हुन मन चो जीवना चले
1: चले, से, अच्छा।
0: चले से। अभी जो मलेशिया हम जाऊ रहा हूँ होता चो आदिवासी मन बोले हुन जंगल चो ही में और पानी में ही हुन मन चो जिंदगी चले से
1: अच्छा
0: हाँ तो वही मन पेनान जाति चो आदिवासिया हुन मन आगे हुन कम से कम 10-15 हजार हेक्टेयर चो जंगल में हुन मन रते रहो और हुन मन चो काम आमदनी सिर्फ यही है कि बिहाने जातो शिकार करो नान तो और फिर शाम खातर
1: अच्छा
0: होता और एक ठन सेगा बोलुआत हुन पौधा के उनके छीन रुक चो असन उनके कार्टून भाती उनके हुन चो गुदा के फिर धोन एक करुन भाती फिर जसन के हम थाने पीसा नहन बनाउन भाती उनके खातो रे रहे
1: अच्छा।
0: और 3 महीना ज्यादा नहीं रहते रहो
1: अच्छा।
0: एक जगह में
1: एक जगह हाँ
0: उनके बाद में फिर चेंज कर,
1: चेंज कर
0: जब मैं पहला हार जाऊ रहे हैं तो हुनता 12 परिवार रहो 12 परिवार में डोकरा डोकरी मन के तो घरे रखून देते जवान मन जाओ एक कर में बात तो शिक्षा चो कमी आ से
1: अच्छा
0: आमदनी में खेती बाड़ी में कच्चे ही बोले उतरो ओ ध्यान नहीं है
1: अच्छा
0: हाँ मैं फिलीपींस में बल देख ले और फिर इंडोनेशिया में बल देख ले मलेशिया में बल देख ले कंबोडिया में बोले तो ये था जो चित्र बोले आदिवासी में जंगल वन नहीं तो फिर पानी जहाँ पानी आ से जिन जगह में तो होता ये मंचो यही रहे तो शिक्षा जो बहुत ही है और
1: अच्छा।
0: जहाँ बोले सामूहिक कार्य में हुन मन चो जहाँ हम थाने आसे कहीं बोले काम कर तो हम सामूहिक है ना तो हुन हिसाब है तो हुन मन चो बोले हम चो थाने जहाँ आदिवासी मन उसने बाकी जगह में बोले आसो
1: सामूहिक काम ने
0: सामूहिक काम ही है
1: जुआ हुन बाते
0: निपटान देसो तो हो गाँव तो हो है ना काम कर तो
1: हो
0: आप लोग जीवन चो काम के बोले जो आगे हम चले था बोले चलते रहे देख लिया और बोले कि ये तो जित्रो बोले हम उनमन आदिवासी आऊ सब संसार चो सब उसनी तो ये हम चो मके हुनी लागली कि कमी मके जो लागली कि आदिवासी में विश्व चो हर जगह ये अभी ये भी हो सत पढ़ा लिखा है ना लेकिन सबके सब अब भी बोले गांव चो लोग में आदिवासी में आसे के ठीक है हम चो नागर कुटिया की जंगल आसे
1: जंगल बोले इतले ही सोच हो इसे
0: यही सोच आसे
1: बोले नहीं ये सब शिक्षा चो कारण है बोले उनमें अपने आप आवश्यकता की महसूस नहीं कर
0: नहीं कर जी जी होनी ये में
1: अच्छा तो अर्जुन सिंह नागदादा इतलो अच्छा तो तुम चो जो अनुभव वगैरह के हम गोट बात करू से छी मंत्र ये बोले मैं जानुक चाहे से कि तुम चो जो जीवना न्याय बोलू बे जसन की 72-74 साल हो से तो कहीं असन मंजी ने कहीं तुम के संचीपा कहीं अटकनी कहीं असन कहीं बोले गोट के मैं असन छांडून दे दे नाल घरे बसुन रहे दे असन कहीं मन ने के भी हिली
0: हाँ अभी ये है कि मैं तो साहब जसनी में ये होलो बाद में अपन जो ब्रह्मदेव शर्मा संघ बल काम कर ले भारत जन आंदोलन में और ये था दो ये मावली भाटा जो स्टील प्लांट

0: स्टील प्लांट में ब्रह्मदेव शर्मा और भारत जन आंदोलन जो सदस्य तो उनमें हम जो ये कहना रहे कि तू जितरो बोले आदिवासी मन छो जमीन के धर से या हुनेरी आछो जमीन के धर से तो तू ये मन के ये मन चो ये तो पीढ़ी का जो बोले आज तो साधन देश नौकरी यथा चो लोग तो पढ़ा लिखा नहीं आ है ना
1: हाँ।
0: पढ़ा लिखा नहीं आ तो का नौकरी दे से तू हुनी चपरासी नल तो हुनी कहीं तो देव आसबे एमन चो पढ़ाई व्यवस्था कर और हुन जमीन तू जितरो धर से सूत्री दूसर लगे बोल देश तेब तो जीव दे
1: हाँ।
0: नहीं हाँ हुनी संग संगे तू ये जितरो जमीन जाय से हुन लोग मंचो मन के कम से कम एक पैसा चो हम तू के रुपया नहीं तू तो जितरो बोले आमदनी हो से डाइकेम कंपनी
1: हाँ,
0: रहे हुदल है ना
1: हाँ, हाँ।
0: तू तो जितरो बोले आमदनी हो दे होता तू ये मन के मेंबर बना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ताकि तू चो जितरो बोले आमदनी हो दे सालाना उन प्रोडक्शन चो एक पैसा चो बोले भागीदारी है मन के देश तबे तो ये मन आप लो जीवना जीव दे भाई
1: हाँ।
0: लेकिन हुन नहीं मान लो नहीं मान तो के फिर ये होली और फिर लास्ट में डाइकम चो बंद होली
1: हाँ।
0: तो हम चो उनके मना नहीं रहे साहब तू ही चलाओ लेकिन ये मन चो का जी कहीं बोलती सोच भाई तू रुपया भीतर में एक पैसा दे से हो ने सौ पैसा चो एक रुपया है तू 99 पैसा के खा लेकिन एक पैसा तो ये मन के देश जे चो कारण में तू ये भी ये था
1: फैक्ट्री
0: खोल सी ये एक ठन रहे और फिर बाकी चीज मन में मके ये सब चीज था पढ़ाई समय में जो थोड़े तकलीफ होली और नहीं तो उन समय में अगर आर्थिक सपाई आदिवासी चो यही आर्थिक चो ही हम चो ये है तो यदि सही मार्गदर्शन होती हमन मन के तो हो सके बाकी चीज में बोले हम ही आगे बढ़ो होती
1: अच्छा
0: हाँ, हाँ।
1: तो जैसन की अबे तुम्हें वकालत चो जो काम कर साथ बोलू बे तुम चलो कई कसन गांव बाटले कई प्रकार चो बोले ने केस मन ऐसे होती
0: जी।
1: तो बोले ने ये कसन केस मन ऐसे गांव मन ने आरु काय कारण हो लाय सके दे ये चो समाधान बोले कसन आमी और निख रोक सकुआ असन तो कहीं मन ने ऐसे होते
0: नहीं ऐसे अभी काय हो ऐसे देखा हम जो ये मैं सरकार के बारे में बोले थे कि हम जो न्याय व्यवस्था में हम जो आदिवासी गांव जो आदिवासी जो न्याय व्यवस्था और भारतीय न्याय व्यवस्था में बहुत फर्क है
1: फर्क है साचा
0: आदिवासी ये समझुक नहीं सके से कि इतरो लंबा चौड़ा चले दे कि 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल बोले चले से एक एक पीढ़ी बोले चले से जमीन झगड़ा मन आदिवासी तो इतरो ये नहीं आए कि सोच कहन बोले हूं दखलो से नहीं हूं निश्चिति के आदिवासी गांव चो आदमी जाए से और जब कहा गांव चो मुखिया लगे नहीं तो पंचायत में गेलो में हूं तुरंत जो है निपटारा हो से
1: हाँ।
0: लेकिन ये था पेशी रेंगत रेंगत आदमी जो है हुन डोकरा हो से हुन चो बात मतलब हुन चो बैठा के बोले एक पड़े
1: हाँ।
0: तो ये कारण में मचो ये था नहीं यही है कि मैं सरकार के बोल बोले बाकी जगह बोल बोलने से कि ये था जो आदिवासी का जे हुन कानून और हुन धारा के थोड़े बदलून भाती हुन मंचो जो सामाजिक न्याय व्यवस्था जो बिल्कुल सरल है होता ये था तुम मन मनाना तेबे तो मैंने जो भी कानून तुम मन बनाए सा हुन मन के मैं बोले कि ये क्या आना और ताकि ये था जो लोग के सहूलियत हो और आदिवासी जसनी कोर्ट में ही लो बाद में हम घबराए से
1: अच्छा
0: बिल्डिंग के दखे से मजिस्ट्रेट दखे से वकील मन तो ये उन भांति सीधा कैसे आए क्या है तो हुन आदमी हुन सब चीज ठीक है आज जो परिवेश में आज जो पढ़ा लिखा लेके उतर फर्क नहीं पड़े से लेकिन आज 40-45 साल जो आदमी जब ये था है तो हुन दिन के ये आगे चो और ये बेचो तो फर्क पड़े से तो हुन में थोड़े ये हो से हम जो आदिवासी चो न्याय व्यवस्था आदिवासी चो परंपरा

0: न्यूनभति माने पहचान कर
1: पहचान करा ले। अच्छा
0: तो ये अभी जो ये उपलब्धि
1: आए जी। तो नाग दादा जी सन की ये तो होली बोले हमी सब गोट बात कर लू मंत्र देखा तुम्ही तुमचो जो समाज हलवा समाज संग बोले कहीं ना कहीं ऐसा उत्थान उन्नति कहीं बाट दखात काजे पूरे आशा से कहीं ना कहीं पदाधिकारी बोले आशा ससन लागे से
0: जी जी।
1: तो बोले ने अब तक असन तुमचो समाज ने बोले तुमचो पदाधिकारी बन लो बराले ना तुमचो मार्गदर्शन ने कहीं असन परिवर्तन बोले ने दखा दे सका।
0: हलवा समाज में ज्यादा नकल कर तो
1: नकल गुणा से ना गुणा से
0: मके उसन तो उन सुन लो में एदा तू ये सन गोठे हुआ बोल दे लेकिन ये सही गोट
1: सही गोट
0: मचो ये कहना है कि भाई तुमन मन आप लो पूर्वानी के आप लो जो रूढ़ी प्रथा है ना ये सब के संस्कृति के बचाऊ रखा इसु है दूसर चो नकल करूं जीव लो में ज्यादा दिन तक होता रोग टिकुक नहीं
1: हो
0: उन संग संगे या हमन में जितरो व्यास समाज में पदाधिकारी मन शिक्षा के ज्यादा दे उनसे सा।
1: अच्छा
0: शिक्षा में ताकि जब तक शिक्षा नहीं हो दे आदमी आत्म अवलोकन बल नहीं कर सके और फिर दूसर आदमी काय हुन चो आशय आसे कि हुन काय काज मके ये गोठ मन बोले से तो हुन चो इच्छा काय आए उन चीज के बल जानी नहीं हो।
1: हाँ हाँ।
0: भाई पढ़ा लिखा रहूं तब तो उन चीज में समझो बोले बुद्धि बोले खेडे
1: हाँ हाँ।
0: तो ये सब चीज का जे हमन मंचो शिक्षा में ज्यादा ध्यान
1: आ से। हाँ।
0: और फिर उसन सामान्य तो कृषि चो और ये सब चीज में तो होना लेकिन शिक्षा हो तो जरूरी है। हलवाई समाज नहीं पूरा आदिवासी समाज जो अभी शिक्षा ले पिछड़ा आसोत तो हुन मन के शिक्षा हो तो जरूरी है तब कहीं आदिवासी आगे चलून भाती ये तो समय में दूसर वर्ग जो लोग संगे बराबरी में चल दे अगर हुन मन शिक्षा के भी अगर ध्यान नहीं दे निश्चित रूप है कि ये मन फिर आगे चोसन
1: पाठ कुते जादे
0: अपन के एक बात कि जिंदगी में जीव तो काजे या कोनी चीज के प्राप्त कर तो काजे अगर आदमी पढ़ा लिखा आए तो ये देश में दूसर लोग संगे हुनी बराबर कर तो काच असंभव नु है।
1: हाँ, हाँ,
0: ये थाने यदि आदमी ईमानदारी में अगर कहीं बल काम करे दे ईमानदारी
1: हाँ,
0: है ने चाहे पढ़ाई में हो चाहे कहीं चीज बोले हो ईमानदारी में हो तो उनके फल मिले दे
1: मिरे,
0: मैं गांव चो है कि मैं आदिवासी है कि मैं उसन आए बोल लो हुन बात
1: नहीं हो
0: यदि मेहनत करे तो निश्चित रूप से उनके ऊपर चो मालिक या ऊपर चो लोग मन सब चो आशीर्वाद रहे दे और उनके करे दे जो भी अगर आज चो युवा आसन हुन मन उसनी अगर कर लो में उसनी मेहनत कर लो में निश्चित है कि हम चो बस्तर में हलवा संग संग आदिवासी मन बोले आगे बढ़ दे। एक कोनी ये बात नु है मैं ये चीज के जांच ले से फरक ले से साहब यदि मैं पढ़ा लिखा नहीं हो रहते तो मैं आज का चीज घर कमिया रहते बेटा बेटी बोले उसने होता पढ़ा लिखा होलो कारण में मैं जब बाहर निकल ले और मैं देख ले चार लोग संग मैं देख ले मैं बोल ले कि नहीं ये तो ये बोलते उसने हम चे बराबर जिए सी फर्क इतनी है कि पढ़ा लिखा है मैं पढ़ा लिखा नू तो ये चीज हो तो जरूरी है तो निश्चित रूप से हम जो लेखा लेखी मन ये तो समय में पढ़ा लिखा होलो में ये हम चो बस्तर के और हम चो समाज के आगे बढ़ा दे
1: तो इतलो अच्छा इतलो सुंदर तुम चो गोट के सुनुकलाए मेरे लिए हम चो रेडियो सुन तो भाई बहन मन जरूर सुन ला जाले कहीं ना कहीं असन सीख मिले दे बाट मिले दे मारक मिले दे उन चो जीवना ने कहीं ना कहीं असन अटकनी चिपाई ली जाले घुचा तो काजे गोटो नानी असन बाट मिर ले जाले होने तो आगे बाड़ूक ला सके तो इतलो अच्छा तुम संग गोट बात होली अल खूब खूब जोहार
0: जोहार जोहार
2: कार्यक्रम आजीचु सगा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अर्जुन सिंह नाग से ली गई भेंट वार्ता भेंट करता थे बलबीर सिंह कच्छ।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा

0: सी महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 ले 4 तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आम चो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी। आपन मंचो सवाल, आपन मंचो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हो चुके हैं। लोक गीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में अब लीजिए सुनिए सीएल मारकंडे और साथियों के गाए छत्तीसगढ़ी गीत।
2: चलना चलना संगी मोर।

0: दुनिया लखो जंगूर तोला नहीं पाए ओ मन ला कोन भर माए हाविना
1: दुनिया लखो जंगूर तोला नहीं पाए मन ला कोन भर माए हाविना
0: दुनिया लखो जंगूर तोला नहीं पाए ओ मन ला कोन

0: पहाड़े गा तो ही ना मोरे जंगल झाड़ी मा।
1: लोक गीतों के कार्यक्रम गुर्दू में आप सुन रहे हैं सीएल मार्कंडे और साथियों के गाए छत्तीसगढ़ी पंथ गीत।

0: बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में अभी आप सीएल मार्कंडे और साथियों की आवाजों में छत्तीसगढ़ी गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बदलो बदलो आदत बदलो।
0: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

आज के इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के उस कलाकार को जिनकी अदाकारी ने हमें कभी डराया, कभी हंसाया और कभी भावुक भी किया। एक ऐसा अभिनेता जिसने विलेन बनकर तालियां बटोरी और कॉमेडियन बनकर दर्शकों का दिल जीत लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के दिग्गज चरित्र अभिनेता परेश रावल की।

परेश रावल का जन्म आज ही के दिन यानी 30 मई सन 1950 को मुंबई महाराष्ट्र में एक गुजराती ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मुंबई से उन्होंने कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। परेश रावल बचपन से ही अभिनय की ओर आकर्षित थे। कॉलेज के दिनों में उन्होंने थिएटर करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे मंच की दुनिया में एक अलग पहचान बना ली। थिएटर ने उन्हें संवाद बोलने का अंदाज, चेहरे के भाव और किरदार में उतरने की कला सिखाई। यही कारण है कि बाद में फिल्मों में उनके हर किरदार में एक अलग गहराई दिखाई दी। फिल्मों में प्रवेश करने से पहले उनका संघर्ष आसान नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, जिसके इरादे मजबूत हो, मंजिल खुद रास्ता बना लेती है।

फिल्मों में जाने से पहले परेश रावल ने एक बैंक में कुछ समय तक काम भी किया था। परेश रावल ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1984 में आई फिल्म होली से की। अभिनय की शुरुआत उन्होंने फिल्मों में छोटे छोटे किरदारों से की। उन्हें इन किरदारों से संतुष्टि नहीं मिल रही थी, वे पुनः थिएटर में अपना ध्यान लगा रहे थे। एक दिन की बात है, मुंबई के मशहूर पृथ्वी थिएटर में परेश रावल के किसी नाटक का शो चल रहा था। जाने माने प्रोड्यूसर करीम मुरानी उस शो को देखने आए और शो के बाद उन्होंने परेश रावल से बात की और बाद में वे निर्देशक राहुल रवेल से मिले। और उन दिनों राहुल रवेल फिल्म बना रहे थे अर्जुन, और सन 1985 में फिल्म अर्जुन के लिए राहुल रवेल ने परेश रावल को साइन भी कर लिया। शूटिंग का पहला दिन था, पहले ही टेक में परेश रावल ने जबरदस्त शॉट दिया। तालियों की गूंज ने परेश रावल को थिएटर की दुनिया से फिल्मों की ओर आने को मजबूर कर दिया।

धीरे धीरे परेश रावल की अभिनय क्षमता ने निर्देशकों का ध्यान खींचा। फिल्म नाम, कब्जा, राम लखन, रूप की रानी, चोरों का राजा जैसी फिल्मों में उन्होंने नकारात्मक भूमिकाएं निभाई। उनकी खास बात ये थी कि वे हर विलेन किरदार को अलग अंदाज में देते थे। कहीं चालाकी, कहीं हास्य और कहीं डर, सब कुछ उनके अभिनय में दिखाई देता था। 90 के दशक में वे हिंदी फिल्मों के सबसे व्यस्त कलाकारों में शामिल हो गए। फिल्म हेरा फेरी में बाबूराव गणपतराव आपटे का किरदार आज भी लोगों की जुबान पर है। उनका मोटा चश्मा, टूटी फूटी अंग्रेजी और मासूमियत भरी कॉमेडी, इस रोल ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया। कहा जाता है कि बाबूराव का किरदार पहले इतना बड़ा नहीं लिखा गया था, लेकिन परेश रावल की शानदार टाइमिंग ने उसे अमर बना दिया।

की असली पहचान तब होती है जब वो हर तरह के किरदार निभा सके, और यही कमाल किया परेश रावल ने। जहां एक ओर उन्होंने खतरनाक विलेन का रोल निभाया, वहीं दूसरी ओर कॉमेडी में भी ऐसी छाप छोड़ी कि दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो गए। फिल्म हंगामा में उन्होंने राधेश्याम तिवारी के किरदार को जिस जीवंत अंदाज में निभाया, वो आज भी दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान ले आता है। हर छोटी गलतफहमी को बड़े मजेदार तरीके से पेश करना, घबराहट भरे चेहरे, तेज संवाद और बेहतरीन कॉमिक एक्सप्रेशन, यही तो परेश रावल की खासियत है। उनकी मौजूदगी ने हंगामा को एक फिल्म नहीं बल्कि ऐसी हंसी का पूरा त्योहार बना दिया।

कॉमेडी के बादशाह कहे जाने वाले परेश रावल ने जब सरदार फिल्म में सरदार वल्लभ भाई पटेल का किरदार निभाया तो हर किसी ने उनके अभिनय का एक बिल्कुल अलग रूप देखा। चेहरे पर दृढ़ता, आवाज में आत्मविश्वास और देश को एक सूत्र में पिरोने का जुनून, परेश रावल ने इस महान व्यक्तित्व को पर्दे पर जीवंत कर दिया। ये सिर्फ अभिनय नहीं था बल्कि भारत के इतिहास को सम्मानपूर्वक पर्दे पर उतारने की एक शानदार कोशिश थी। और वहीं फिल्म तमन्ना में परेश रावल ने टिक्कू का बेहद संवेदनशील और मानवीय किरदार निभाया। इस फिल्म में उन्होंने साबित किया कि एक कलाकार केवल हंसाना ही नहीं दिल को छू लेना भी जानता है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो समाज की परवाह किए बिना इंसानियत और ममता का परिचय देता है। इस फिल्म ने यह साबित किया कि परेश रावल हर तरह के किरदार में अपनी गहरी छाप छोड़ने की क्षमता रखते हैं।

श्रोताओं, कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो पर्दे पर थोड़ी देर के लिए आते हैं, लेकिन अपनी अदाकारी से हमेशा के लिए यादों में बस जाते हैं, और परेश रावल उन्हीं कलाकारों में से एक है। फिल्म जुदाई तो आपको याद ही होगी। जी हाँ, फिल्म जुदाई में उनका शानदार अभिनय कहानी में हास्य और जीवंतता का ऐसा रंग भरता है कि दर्शक मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते। उनकी संवाद, अदायगी, चेहरे के भाव और सहज अभिनय ने हर दृश्य को खास बना दिया। यही वजह है कि वर्षों बाद भी जब जुदाई का जिक्र होता है तो परेश रावल का अंदाज लोगों के जहन में ताजा हो जाता है। इसके बाद OMG फिल्म ओ माई गॉड में परेश रावल ने कांजी लालजी मेहता के किरदार से अभिनय की एक नई ऊंचाई को छुआ। OMG सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि समाज को सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी थी, और उसके केंद्र में थे परेश।

परेश रावल ने केवल हिंदी सिनेमा में ही नहीं बल्कि गुजराती, मराठी, तेलुगू और तमिल फिल्मों को मिलाकर करीब 250 फिल्मों में भी अपने अभिनय का शानदार परिचय दिया है। कॉमेडी हो, खलनायकी हो, चरित्र अभिनय हो या गंभीर सामाजिक संदेश देने वाले रोल, परेश रावल ने हर शैली में अपनी अलग पहचान बनाई है। अपने लंबे और शानदार सफर में उन्हें अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मान मिला। उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर अवार्ड सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। वहीं भारत सरकार ने कला जगत में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। परेश रावल ने हर भूमिका में ऐसा जीवन भरा कि दर्शक हंसे भी, भावुक भी हुए और सोचने पर भी मजबूर हुए। उनकी कला, मेहनत और बहुमुखी प्रतिभा आने वाली पीढ़ियों के कलाकारों के लिए हमेशा प्रेरणा बनी रहेगी। आज परेश रावल के जन्मदिन के इस खास अवसर पर हम उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर उन्हें स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु रखे ताकि वे आने वाले समय में भी अपनी शानदार कला से दर्शकों का मनोरंजन करते रहें।

एक ही कलाकार। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित था मशहूर चरित्र अभिनेता परेश रावल पर। ये आकाशवाणी जगदलपुर है। समय दिन के 11:30 हुए हैं। पेश है गैर फिल्मी गीतों गजल का कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं शायर बशीर बद्र के कलाम से। मौसिकार हैं और फनकार हैं जगजीत सिंह।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीतों गजल का कार्यक्रम गुलदस्ता। अब गुलदस्ता की अगली गजल पेश है मोहम्मद वकील की आवाज में। शायर हैं बशीर बद्र, संगीत दिया है जॉली मुखर्जी ने।

गैर फिल्मी गीतों गजल का कार्यक्रम गुलदस्ता अभी पेश किया गया। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11:00

0: 55 मिनट होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में चल रही जनगणना के पहले चरण का आज अंतिम दिन। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का कल राज्यपाल ने किया शुभारंभ और कोंडागांव सहित दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में तेज आंधी और बारिश के कारण जनजीवन हुआ प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में चल रही जनगणना के पहले चरण का आज अंतिम दिन है। 1 मई से शुरू हुई जनगणना के पहले चरण का 92% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। प्रदेश में जनगणना के लिए 48,742 ब्लॉक बनाए गए थे। हर ब्लॉक में औसतन 165 मकान शामिल हैं। इसी आधार पर प्रदेश में 80 लाख से अधिक मकानों का आंकड़ा सामने आया है। इन मकानों का पूरा विवरण पहली बार डिजिटल रूप में सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहा है। आज अंतिम दिन शेष बचे घरों तक पहुंचकर आंकड़े अपडेट किए जाएंगे। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष 1 फरवरी 2027 से शुरू होगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय आम महोत्सव का आज दूसरा दिन है। महोत्सव का उद्घाटन कल राज्यपाल रमन डेका ने किया था। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आम उत्पादन और मैंगो टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने किसानों से पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक तकनीकों को अपनाने और आम के वैल्यू एडिशन पर ध्यान देने का आह्वान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने में आम की खेती महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। महोत्सव में देशभर की 250 से अधिक किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए हैं। ये महोत्सव कल रविवार तक चलेगा। प्रदेश में गर्मी और उमस का सिलसिला जारी है। प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई है। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ में मेघ गर्जन और बदली बारिश की वजह से तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक कमी आई है। कोंडागांव जिले में तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार चिपावंड गांव में 2 दर्जन से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा लखनपुरी में 1, बड़े सिलाटी में 3 और बड़े कनेरा में 1 मकान को नुकसान पहुंचा है। धनपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 1 मवेशी की मौत हो गई। आंधी के कारण कई पेड़ उखड़ गए तथा बिजली के खंभे और तार क्षतिग्रस्त होने से बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। राजस्व विभाग प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन कर रहा है। रायपुर रेल मंडल और स्थानीय प्रशासन ने IRCTC और रेलवे के लोगों का दुरुपयोग कर कम क्षमता वाले चाय के पेपर कप बनाने वाली एक फर्म पर कार्रवाई की है। जांच के दौरान गुढ़ियारी स्थित एक फर्म में रेलवे के लोगों वाले तय क्षमता से कम आकार के चाय के कप बनाए जाते पाए गए। टीम ने मौके से ऐसे कपों से भरे 14 बोरे जब्त किए हैं। रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी ने कहा है कि यात्रियों को तय मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण खाद्य और पेय सामग्री उपलब्ध कराना जरूरी है। किसी भी तरह की अनियमितता, फर्जी ब्रांडिंग या लोगों के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में चल रही जनगणना के पहले चरण का आज अंतिम दिन। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का कल राज्यपाल ने किया शुभारंभ और कोंडागांव सहित दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में तेज आंधी और बारिश के कारण जनजीवन हुआ प्रभावित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ ही में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
0: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल

पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम लोकरस। प्रस्तुति है सुखचंद मंडावी की, संयोजिका है चंद्र ऋषि ठाकुर।

0: पोनिंग लोकरा सुन तो सफाई दादा दीदी मन के जुहार आले सुनू पहले कौन कौन करे से।
1: हेलो पोनिंग लोकरस।
2: हाँ भैया राम राम।
1: राम राम, कौन बोल रही ना?
2: मैं शिलेश कुमार साहू बोला, सुरानी गांव नगरी जिला धमतरीली।
1: हाँ,
2: सब बढ़िया। तो बहुत ज्यादा गर्मी लगा थे, अभी काम बहुत तेज है।
1: आजकल तो गर्मी छिया है ना?
2: हाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। आज के समाचार सुना तो दो चार दिन में अब थोड़ा सा मौसम बदल ही सके कहा तरीके।
1: हाँ दो चार दिन ले तो मौसम बदल तो दका दे से समय।
2: हाँ उसने अभी ले चालू हो गए, थोड़ा बदरहा घाम करा थे, मौसम थोड़ा चेंज हो उम्मीद लगा होकर से थोड़ा राहत मिल ही इसे लगते, लेकिन सब ज्यादा गर्मी से लगा थे।
1: कौन गीत के सुन तो गाजी फोन कर लीजना
2: शत्रुघ्न सिन्हा और संगवारी के छत्तीसगढ़ी गीत सुना दे।
1: शत्रुघ्न सिन्हा छो ने?
2: हाँ
1: ठीक है, तुझे मन कर लो गीत के हम ही सुना।
2: धन्यवाद।
3: मोरी छत

0: हेलो पोनिंग लोकरत
1: लोकरत सर।
0: हाँ कहाँ ले बोलिस ना?
1: हाँ मैं जितेंद्र दास मानिकपुरी बोलत हूँ सर।
0: जितेंद्र दास मानिकपुरी ने?
1: हाँ।
0: कौन तान ले?
1: मैं गणेश धाम परसुली जिला बालोद के हरो सर।
0: कसना से मौसम गर्मी कसना से?
1: हाँ गर्मी तो ताबड़तोड़ गर्मी है सर। नौ तप्पा चला से अभी तो
0: नौ तप्पा तो चले
1: बहुत गर्मी है।
0: धान पान कमा तो काजे कसन खेती बाड़ी के तैयार कर सर?
1: अभी सर गर्मी फसल बोया था सर।
0: हाँ
1: कटाई किया है सर, मिंजाई हो गया है सर, खेती का काम ही कर रहे हैं सर।
0: काय फसल लगाओ रही इस गर्मी फसल ने?
1: धान है, धान था सर।
0: अरे कौन गीत के सुन तो काजे फोन कर लीस तु?
1: गीत सर वो ममता चंद्राकर का सुना देता सर।
0: अरे ठीक है तो तुझे मन कर लो गीत के सुनाओ सामी।

0: पोनिङ लोकराज
1: नमस्कार दादा म चिरमिरी कुरासिया कालजी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ में इंद्रभान सिंह बोल तो ड्यूटी प्रेरणी हूँ दादा और छुट्टी की टाइम हो गई से बस आए का टाइम हो गई से
0: हाँ।
1: तो लोकरस में फोन करे हूँ दादा तो मैं आज पंडवानी गीत ला सुने हूँ तो सुना दिया पंडवानी गीत ला
0: पंडवानी
1: हाँ तीजन भाई की आवाज में बढ़िया सुगर गीत हवे
0: क्या ड्यूटी करूँ
1: मैं एसीसीएल में सर्विस करता हूँ साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड में सर्विस करता हूँ नौकरी करता हूँ हाँ छुट्टी हो गई से दादा तो बस आए के टाइम हो गई से
0: हाँ।
1: अभी बस नहीं पहुँची से तो बोले के लोक रस में फोन कर रहा था तो कर दे रहा था
0: हाँ ठीक है फिर तुम जमान कर लो गीत गा में सुनाओ से
1: तो जोहार राम राम सब
0: हाँ जोहार।

दिन बितावे कहे काका। एक दिन एकादशी दुआस के दिन किचक हाँ रानी सुरेशना के पास भोजन खाए बर पहुंची और लेके थाली जब तैयारी भये सुरेशना और देवी सलेंद्री हाथ में पंखा लेके हिलावा थवे कह।

एकर नाम सलेंद्री है। मोर पास में बेटी के सामान रखे हों, ये तोर भाची है कि चक्कत है। गांव भर के लते बेटी की बे तो सब जन मोर भाची नहीं हुआ है, पर ये मोर राजरानी के लायक है। 12 बजे रात के मोर से घर में भोजन के थाली सजा के आज भेज देबे। सुदेशना घायल हो गए और देवी सलेंद्री ला बोले, देवी सलेंद्री 12 बजे दोपहर के बेर हो गए कहे भाई भोजन के थाली।

कथे दाई और भैया के नियत मोला अच्छा नहीं लगा तब मैं का करूं बेटी, ये थाली ले जल्दी ते पहुंचा के आ जा। हाथ में थाली लिए लोटा में पानी और देवी सलेंद्री आगे आगे चलने लगी।

0: ल मूंद ली देवी सलेन्द्री भोजन लगे के पहली मन में सोचा है भगवान मोर बरते दया करे मुरारी काबर कि अभी अगर आखी मनी दिया गे मैं थाली ल छोड़ दूँ प्राण लेके भाजा भगा जाऊँ ऐसे कहकर सलेन्द्री बड़ा प्रेम के साथ धीरे धीरे भीतर में पहुँची और भोजन के थाली ल रख के और पीछे पैर बिचारी दौड़ के और फिर भगत चलत रहे कि चकहा सोचते सलेन्द्री ला तो बिल्कुल नजीक में देखे हाँ पर मोला जगावत काबर नहीं है जब उघार के देखा है वो देवी सलेन्द्री नहीं अब वो सलेन्द्री है तब तो वो ही कहे बिचारी वो तो प्राण लेके भागत रहे किचक देखते बाप रे बाप तब दौड़े के किचक है।
1: हेलो पोनिंग लोकरस
2: जय जोहार दादा जय जोहार
1: जय जोहार कौन बोल सीसनाथ दादा
2: दादा मैं आप मन के ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति से राधा सिटी मथुरा ले गोट बात होते दादा बताओ आप मन कैसे हवा
1: हमी तो अच्छा तुम से बाटे गरम कसन लागे से
2: हाँ दादा गर्मी के महीना है तो गर्मी लागे ही
1: तो कौन गीत के सुन तो काज फोन कर ली दादा
2: कौन बढ़िया मस्त लोक गीत सुना देवे
1: ठीक है तुम जो मन कर लो गीत के हमें सुनाऊं से
2: हाँ हाँ।

0: हेलो पोनिंग लोकरस।
1: हाँ हेलो पुनीत।
0: हाँ पोनिंग लोकरस कौन बोल सी दादा?
1: हाँ मैं मदनपुर कवर्धाली श्रवण कुमार साहू बोला था दादा। हम आपके जगदलपुर के कार्यक्रम ला सुना था। श्रोता सुमन है, पंत्रासन है, नमस्कार जगदलपुर है और लोक रस है, फोन इन चाहत है, हेलो युवाड़ी है। ये सबो कार्यक्रम ला हमन तो बढ़िया सुनत रही थान गुनत रही थान।
0: तो हम छो तुई नियमित श्रोता हसने हम छो आकाशवाणी जगदलपुर छो प्रोग्राम
1: हाँ
0: मन कसन लागू है। हाँ
1: बढ़िया रखते हैं आपके जगदलपुर के कार्यक्रम। हाँ सब
0: हाँ
1: हल्बी कौड़ी भाषा सीखल मिलते। हाँ
0: हल्बी गोंडी ने जोन समाचार हम छो जगदलपुर आकाशवाणी ले प्रसारण हुआ है गोंडी और हल्बी ने समाचार केवल सुनु हस।
1: हाँ हाँ वो सब ला सुनता था मन बढ़िया लगते।
0: हाँ
1: हाँ हाँ
0: तो गोंडी बत्री ने जो नाम चो समाचार प्रसारण हो से उनचो का जे समझ तो ने तो कहीं परेशानी नहीं हो।
1: नहीं हो अब लगभग छत्तीसगढ़ी टाइप है तो समझ गए धीरे से।
0: तो आज कौन गीत के सुनवास?

0: नहीं सकते फिर अनानी वृत्ति पर चले दे छे कसन
1: आओ
0: क्या है कि पढ़ाई लिखाई कर लीसी ग्रेजुएशन कर लीसी तो फिर चपरासी नौकरी किंडिक अच्छा है काम कौन छोटे बड़े नो है लेकिन तैयारी किंडिक बड़े बीती चो सोच संगावरत रह जानू तो
1: आओ यार,
0: वाले कौन गीत के सुन वास्ते अच्छा
1: एक आध हल्दी भी लगा देना, हल्दी भी थी कोई सा।
0: हलवी बीती
1: आओ
0: हाँ ठीक है तुझे मन कर लो गीत के सुन दे और तुझो तैयारी जोन है अच्छा अच्छा हो और जट के तुझो लक्ष्य पूरा हो ने
1: आओ
0: हाँ ठीक है तो तुझे मन कर लो
1: जोहार
0: गीत के सुनाओ से जुआर।

0: हेलो पोनिंग लोकरस
1: हेलो सर, नमस्कार
0: जुहार। कौन बोल सी दादा?
1: जी। मैं ग्राम लोहेड़ी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव बात कर रहा हूँ सर।
0: तो उत्तर प्रदेश ने कसन मौसम आसे
1: जी सर, इस समय जो हमारा बुंदेलखंड इलाका है, पथरीला इलाका है, जो वीरों की भूमि कहते हैं, महाराजा छत्रसाल आला ऊदल की नगरी है, तो यहाँ तापमान वैसे भी गर्म रहता है। वो अभी 40, 45, 40 टेम्परेचर है डिग्री। आपकी आकाशवाणी जगदलपुर से जुड़े रहते हैं और सभी विविध कार्यक्रम को आनंद और मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर कार्यक्रम आपके यहाँ से सुनने को मिलते हैं। और मैं अपने रेडियो के माध्यम से आकाशवाणी परिवार को और आदरणीय बहन चंद्र सिंह ठाकुर जी को बधाई देना चाहूंगा कि आप लोग इतनी शिद्दत और मेहनत और लगन से कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है और आप लोग बधाई के पात्र।
0: के बोले खूबी खूबी बधाई। हम चो आकाशवाणी परिवार बाटले तो हम चो आकाशवाणी जगदलपुर चो जमाए प्रोग्राम की सुनवास।
1: जी जी जी बिल्कुल। और बड़ा अच्छा लगता है जब छत्तीसगढ़ी अपनी

0: सर की बोली हमें बड़ी प्यारी, एक आपके यहाँ से 1:05 से कार्यक्रम आता है बेड़ा घाड़ा चौकोट कार्यक्रम, वो कहीं ना कहीं हम आप आवाजें और कुछ सीख भी गए हैं आपके यहाँ से खेती बाड़ी से कार्यक्रम आते हैं
1: तो,
0: जी जी जी
1: कौन गीत के
0: तो इसमें कोई भी कलाकार का एक अपने बस्तर जिला का कोई भी एक कलाकार का गीत सुना दीजिए, अच्छा रहेगा।
1: ठीक है, हेल्वी गीत क्या सुनाऊं दे
0: जी जी

0: मॉर्निंग लोकरस।
1: हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग लोकरस।
0: कौन बोल सी दादा?
1: हाँ दादा, मैं हिमेश बार से बोल रहे थे ना।
0: हाँ, कौन ताल लेना?
1: सुकमा जिला कुन्ना लेना।
0: तो काय करू आज ना तु?
1: हाँ मैं तो दादा मिडिल स्कूल ने फ्यून है ना।
0: मिडिल स्कूल ने फ्यून आसने।
1: हाँ
0: फ्यून बोल।

0: लोकगीतों का फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम लोकरस अभी प्रसारण किया गया। प्रस्तुति थी सुखचंद मंडावी की और संयोजिका थी जसचंद्र ऋषि ठाकुर। ये आकाशवाणी जगदलपुर है।
1: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दिन का 1 बजने को है। अब हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
4: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन औलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति

0: राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि उनका स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांग्रीला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड की रक्षा मंत्री डिलेन येसिलगो जेगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने, सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों में निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4,00,000 रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। गुजरात टाइटंस IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गए हैं। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कल अहमदाबाद में फाइनल मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। दोपहर के 1:05 हुए हैं। अब सुनिए कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चुकोट।
4: किसान भाई बहन मन, जसन तुम्हें जानास कि आमी तुमके कई सरकारी योजना मंच जानकारी देते रहो से जे चले तुम्हें सपाए लोग सरकारी योजना मंच लाभ

0: थरुक सकास आज बोले आमी तुमके कोटक सरकारी योजना चो जानकारी देऊ से ए योजना चो नाव राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना है एके इनाम योजना बोले बलुआत केंद्र सरकार लोग मन के सस्ता ने खातो जिनिस मन देतो काजे ए योजना चुमूर कर ली से राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना चुमूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अप्रैल 2016 के करला ये अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग पोर्टल है जेचो भीतरे रलो कृषि उपज विपणन समिति मन और दूसर कृषि मंडी मन के नेटवर्क ले जुड़ून गोटुक बड़े बाजार बनाला से इथा कोनी बड़े किसान व्यापारी देश चो कोनी बड़े कृषि मंडी ले सामान घेनुक और भी कुकलाय सके ए योजना भीतरे राज्य चो कृषि बाजार के कैक बाजार ने बाटुआत और हुंचो उपज मन के आंतो नेतो हिसाब के दखुआत इनाम संगे जुड़तो राज्य चो मंडी मन चो जरूरत के पूरा करतोर और हुंचो हिसाब ले चलातो राय ये योजना भीतरे हरियाणा चो दुई मंडी अम्बाला और शाहबाद के 1 जून 2016 के इनाम संगे जोड़ला से राष्ट्रीय कृषि बाजार मंडी के गोटुक नेटवर्क ने जुड़ून किसान और कृषि व्यापारी मन के आमने सामने करे से ये योजना घिनतो लोग मन के देश चो कई मंडी मन ले जोड़े से दूसर राज्य चो लोग बोले आप लोग राज्य ने रहून दूसर राज्य चो सामान घेनु सकोत राष्ट्रीय कृषि बाजार कसन काम करुआ बोलो ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एचो बारती काजे काम करे से एचो काजे इंटरनेट व्यापार पोर्टल बनली से एचे संगे कृषि उपज मंडी चो कर्मचारी और व्यापारी मन चो ट्रेनिंग काजे पैसा बोले दे से राष्ट्रीय कृषि बाजार चो उद्देश्य बिक्री और कीमत काजे बाजार मंच तैयार करतो रहा राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना भीतरे राज्य भर चो सफाई व्यापारी मन चो गोटुक लाइसेंस हो दे जो राज्य चो सफाई बाजार मन ने मान्य हो दे राष्ट्रीय कृषि बाजार चो का लाभ है के बोले जाना ए योजना भीतरे किसान मन आप लोग लगे चो मंडी ने उपज के बिकुक सकोत राज्य चो व्यापारी मन मंडी ने ई नाम ले देश चो दूसर बाजार तक अमरुक सकोत कोचिया कम हो दे देश भर ने कृषि सामान मन चो कीमत एक समान हो दे राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना काजे काय का जरूरी दस्तावेज लागे से ये योजना चो लाभ धरतो काजे एक कागजात मन होतर जरूरी है जसन आधार कार्ड चो फोटो कापी राशन कार्ड चो फोटो कापी मतदाता पहचान पत्र पासपोर्ट साइज चो फोटो बैंक पासबुक चो फोटो कापी राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना ने ऑनलाइन पंजीकरण करातो काजे ए ऑफिशियल वेबसाइट ई नाम पोर्टल चो लिंक ने क्लिक करतो रहा एथा क्लिक कर लो पाछे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार चो पेज खुलवाए एथा रजिस्ट्रेशन चो विकल्प ने क्लिक करतो रहा पाछे आवेदन फार्म मिलवाए फार्म ने पूछलो सफाई जानकारी के ध्यान ले पड़ून भरतो रहा आवेदन फार्म संगे सफाई कागजात चो फोटो कापी देतो रहा फार्म भरलो पाछे सबमिट बटन ने क्लिक करतो रहा अगर जानकारी काजे ए पता ने पूछ सको पता है लघु कृषक कृषि व्यापार संघ मुख्य कार्यालय NCUI ऑडिटोरियम बिल्डिंग 5 फ्लोर 3 सीरी इंस्टीट्यूशन एरिया अगस्त क्रांति मार्ग हौज खास न्यू दिल्ली 110016 टेलीफोन नंबर आए 1800270002224 फैक्स नंबर आए 9111268623 67 ईमेल आईडी आए नाम @sfac.in ये पता नहीं पूछा पचारा करुकला सको
1: अभी कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चो गोट का पुनः प्रसारण किया गया ये आकाशवाणी जगदलपुर है।
2: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं। दोपहर के 1:10 हुए हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम श्रोता सुमन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह देवगुण और आप

लाल दुपट्टा मलमल का कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने इस फिल्म से सुना। आवाज थी अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे आनंद मिलिंद। इस गीत की चाहत आप सबने की थी। अनूपपुर मध्य प्रदेश से जय मंत्री केवट, अंजलि केवट।

0: रुद्राणी और कृष्णा केवट, पारंड विश्रामपुरी से प्यारीदास मानिकपुरी, शिव कुमार, खिलेश, नमिता और डिम्पी मानिकपुरी, बिरडी के श्रोता हैं राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सव्वासेरे, वरुड़ जामटी के श्रोता हैं मुकेश कासलेकर और विशाखा बोबड़े। आप हैं मामूलवाड़ी नांदुड़ा महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, विजया तायड़े, अमोल और सरिता तायड़े, नांदुड़ा जीगांव के श्रोता हैं वसंतराव भोजने, सुनंदा भोजने, राजू भोजने, सोनू भोजने और निवृत्ति आड़ोकार, ग्राम बेलरगांव से हवा से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन, भटिंडा रोड डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, पटेल नगर मलोट पंजाब से हैं डॉक्टर रमेश कुमार झाजोरिया, गीता रानी झाजोरिया, गगनदीप झाजोरिया और बेबी आरजू झाजोरिया। आप हैं फरसगांव से फागेश्वर मंडावी और हेमराज भारद्वाज। इस गीत की फरमाइश महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से आई राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धनजे की। खुर्दी रोड मानपुर के श्रोता विजय, रानी, महिमा और नीतू वैद्य। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी। भटेना से बालकरण, अंजलि वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा। चटोदा सारागांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। जूनापानी सनावत से कालू सिंह वडोले, साहिल, हरिओम, विशाल और सुमन वडोले। आप हैं केशकाल से सुनील यादव, शिव कुमार, बीबी तनिष्का और नौबत यादव। इस गीत की फरमाइश खुपटी महाराष्ट्र से बंडू लोहार पोपलघट, माया, शिवांश, चंद्रकला पोपलघट और देवीदास पोपलघट की आई। श्रीरामपुर भोकर से हरिभाव बिड़वे और श्रावण और अनीता बिड़वे ने भी इस गीत को सुनना चाहा। नागपुर महाराष्ट्र की ये श्रोता हैं कमल साहनी, पिंकी साहनी, डॉक्टर अफजल मलिक, आमोल मानकर। रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी साहनी, सुनीता साहनी और संदीप मक्कड़। छत्तीसगढ़ हसदा नंबर दो से कमलेश साहू, जितेंद्र और पायल साहू। आप हैं देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश, कमलेश और मुरली छत्री। ये श्रोता हैं पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, अरमानाज अंसारी और सोनम। सारिमपुर बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और मोहम्मद समी अंसारी। इंदिरा विहार दिल्ली से डब्लू अंसारी और बेबी अंसारी। और ये हैं डुमराव से ही लाल बाबू दीवान और दिव्या। कंडला बंदर कच्छ से जगदीश जोहरी, पूजा जोहरी और चेनिश। गांधीग्राम से प्रवीण सोनी। आप हैं बंगला मटिया बालो से शिवकुमार अंगारे, अंजनी त्र्यंबिका, लीना अंशुमला, अशुतोष अंगारे। भर्री टोला डोंडी बालोद से हैं नमित कुमार गौतम, पीहू, नीतू, प्रियंका और मुरली गौतम। भाटावाड़ा छत्तीसगढ़ से राम कुमार राउत, अमेरिका गणेश, कार्तिक और युवराज। भाटापारा बलोदा बाजार से हैं विष्णु साहू, पूरब वीरा, योगेश्वरी कुंकुम और हर्ष साहू। और झेरिया भाटापारा से हैं मोतीलाल झेरिया, कल्पना, बिट्टू कुमार, चिंटू और योग झेरिया। गौरी नगर इंदौर से हैं आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। मेचका नगरी से हैं भूपेंद्र नाग, पूर्णिमा, निखिल और तरुणदीप नाग। और बलोतरा राजस्थान के श्रोता इस गीत को सुनना चाहते थे कृष्ण कुमार डाबी, भूपत कुमार, राधा देवी, विक्रम, अर्चना और साक्षी डाबी ने। और इसी गीत की फरमाइश संगीता रोड इंदौर से आई लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया की।
1: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
0: श्रोता सुमन कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश करने वाले श्रोताओं के नाम डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, राधिका, तुषार तामुरिया, डॉली मास्टर अलकबीर, बेबी पूजा तामुरिया और प्रभा देवी तामुरिया। किकिर मेटा बेलहारी पाटन से संतोष शर्मा, रुकमणि शर्मा। गुरामी डूंडी लोहारा बालोद के श्रोता पीयूष जोहत्री बाई नेताम।

जुनवानी दुर्ग से सुरित रमेश साहू और ग्राम बन बघेरा के श्रोता हैं योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश और कुमारी अंजलि सारवा। समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, श्रीमती अंकुर राघव गुप्ता। पिपरिया के श्रोता हैं कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा और रिमझिम गुप्ता। मछली गोदाम केदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका पूजा सिंह, लीलू रितु सिंह और ऋषभ सिंह। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही और मेहरा जहां आप सभी हैं लक्सर हरिद्वार से। श्रवण सिंह गिन्नारे, जगदीश सिंह गिन्नारे, रेखा विनीता, शेर सिंह गिन्नारे और संतोष सिंह कुशवाहा आप सभी मयूरी परिसर भोपाल से हैं। विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पंवार, दीक्षा और कुश मुड़त उज्जैन के आप श्रोता हैं। बस्तर से हैं नरसिंह थापा, हरी शंकर सलाम, बाल सिंह, ललित यादव, डोमन लाल कोठारी, श्रीनिवास, उदयनाग, मोतीराम मोरिया, बुधेश्वर रावटे, सुरेश नागवंशी, नीलकंठ सिन्हा और रामश्री माली। आप हैं भटिंडा से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बीबी काव्य और भाई सुच्चा पाठक। आप हैं शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदारानी और हीना कौसर। शीतला नगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर। चारमीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानमल, अनिता मोटवानी, राजेश, मुकेश मोटवानी। गांधीबाग नागपुर से अशोक कुमार सावलानी। झूलेलाल चौक तिलदा के श्रोता हैं हरीश, कमल, सेतपाल, भूमिका और सुशीला दादी। बिमित्रा से सुरेश और पूर्णिमा सारथी। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। हथखेरा भड़ाबारे से पंचू यादव, दादू यादव। बावली से कमलेश, हारेन्द्र साहू और सुशील बेलसपुरिया। ये श्रोता है पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल प्रिंस, यशस्वी और वीरेंद्र साहू। दतरेंगी से मनोज कुमार साहू, सूरज कुमार साहू, सागर कुमार साहू। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। आप हैं जलालाबाद पंजाब से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, नीमित गगनेजा, विशाल प्रिया और दिशानी। धरसीमा से छेंदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना रुना यादव और अनुराधा के साथ अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनमिका, बलदाऊ, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू, सीएल यादव। ये श्रोता हमारे जमशेदपुर से हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया। गांव फ्रांसी से राजकुमार डुड्डी, सरजीत सिंह डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी। हांसी शहर से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू और डब्बू। आप सबकी फरमाइश पर पेश है आशा भोसले और डैनी की आवाजों में फिल्म काला सोना का ये गाना। बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं और तर्ज बनाई है आर डी बर्मन ने।

टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा, मन की लोरमी से नारायण खांडे, रजनी तुषार और समीर खांडे, चांदनी चौक गंडी पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू और रविंद्र सेन, ऊपरकोट मोहल्ला चौखनटी बुलंदशहर से हैं आप मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान और अरजान के साथ अबान अब्बासी, ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से हैं सत्येंद्र कुमार चंसुलिया, आदर्श सार्थक और आलौकिक चंसुलिया, रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी, अंश लक्ष्मी और ऋषभ लक्ष्मी, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी, ईशिका और तेजल यादव, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशुदासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजित कुमार आयुष और नंदिनी जंघेल, कुंडलवाड़ी नांदेड़ से गंगाधर सावनकर, विजया लक्ष्मी, राजेश, राकेश और रक्षित सावनकर, आप हैं चुड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक और अल्ताफ, जालना महाराष्ट्र से विजय पाटिल, पद्माबाई, ज्ञानेश्वर और तेजस्विनी, डोंगरगांव से हैं राष्ट्रपाल गजबी है, राधिका गजबी है, बेबी अनिश कौर तन्मय गजबी है, रानीगांव नगरी से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा, शुभम से जलिंद्राणी और रोहन भरोसाहू, ग्राम नागरकोहरा जिला राजनांदगांव से छग्गर राम साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू, बाग बहारा भदरसी से हैं पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल और खुशबू सेन, गुमला झारखंड से एसएम जावेद और शाह गुप्ता अंजुम, यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़से और विनोद खड़से, देवलाल कर्ष, कामिनी कर्ष और यशकर्ष आप सभी कोरबा बिलाईगढ़ से हैं, रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश कुमार वर्मा, करुणा देवी वर्मा, प्रियंका, गौरव बंछोड़ और भागवत वर्मा, आप हैं शिवाजी नगर वडाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर सौ इंद्राभाई खोबरखेड़े और सुनैना खोबरखेड़े, अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय

अलेसागर मध्य प्रदेश से हैं चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक और तन्वी गौहर धाम मोहल्ला मध्य प्रदेश से हैं, कौशल किशोर, संगीता हर्षित और वैभव मट्टू, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से हैं कुमारी देविका चौधरी, गणेश दादा, कार्तिक भाव मराठा, परी संजना मराठा, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी और ललिता नारायण खर्ची, मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू, पटियाला से हैं मुकेश भत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश भत्ता, उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर, राही सरिता गवहाणकर, सिद्धांत प्रिंस, एकांश गवहाणकर और प्रणीता गवहाणकर, शैलेश वैशाली, श्वेता, सुमित और कुमारी ध्वनि गवहाणकर बहादुर नागपुर से हैं। रायगढ़ के श्रोता हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, उत्कर्ष चौहान, आप हैं ग्राम लोहेड़ी महोबा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल, अरविंद, रिया, राघवेंद्र, दिव्यांशी, रागिनी और रोनिका यादव। इसी गीत को सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने भी सुनना चाहा है चंडीगढ़ से। अजीबस शुक्रिया, यह है फिल्म का नाम, आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार हैं फारूक कैसर और मौसीकार हैं रोशन।

श्रोता सुमन कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश आई है ग्राम बुजगहन छत्तीसगढ़ से। राम दुलारी प्रजापति, राम शरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति की। कृष्णानगर टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर से नाना डोंगर दीवे, रमाताई डोंगर दीवे, सीमाताई डोंगर दीवे, रीमाताई, दीक्षाताई और राहुल डोंगर दीवे। आप हैं राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक, आर्यन वर्मा। यहीं से हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी।

0: स्वर्णकार, रितेश कृष्णा, पीहू स्वर्णकार और उनके साथ ही बीड शहर की महाराष्ट्र से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, संदीप प्रदीप पगारिया, केशव पटेल और रामनिवास अग्रवाल। बुलंदशहर से हैं पंकज सिंह, चंचल रशिका आकृति और वंशराज सिंह। भंवरपुर बसना छत्तीसगढ़ से राधेश्याम देवांगन और चंपा देवांगन। आप हैं ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू पूजा, रोशनी अजय और वामिका गंगराड़े। मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकीब और मोहम्मद हसनैन पवार खंडवा के श्रोता हैं। अशोक कुमार वाधे, वंदना उपेंद्र झंवर, तनुश्री आरुही और कान्हा वाधे आप सभी खंडवा से हैं। आप हैं ग्राम छिदही पुजारीपारा कुंडागांव से सेतुराम चक्रधारी, मंगतीन आशीष और अस्तिका चक्रधारी। खपरीकला से संतोष कुमार सोनी, सुनीता खिलेश, नेहल पीहू, छोटी दानिश, दीक्षा संजय और पूजा रामा पूर्वी। सनावाद मध्य प्रदेश से हैं दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार और सुनीता मालाकार। भंडार सीवनी से कोंडागांव से हैं सुभाष चक्रधारी, श्रीमती कविता चक्रधारी, मुस्कान और अनुष्का चक्रधारी। भिलाई नगर से हैं अशोक श्याम कुमार, दीपक, श्रीमती प्रमिला और ज्योति श्याम कुमार। और आप हैं नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले और आरती जोंदले। कल्लानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा और नितिन के साथ मयंक शर्मा। कंवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य आदिति शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। बिलासपुर से हैं छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रामायण श्रीवास, रज्जन साहू और हेमंत नामदेव। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर, फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन। ग्राम सोंगा मगरलोड, जिला धमतरी से आप हैं। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा। आप हैं शहडोल मध्य प्रदेश से हैं सोनू खान, मोनू खान और गोलू खान। हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा, अलका मिट्टा, सुचल मिट्टा और गिफ्टी मिट्टा। भाटापारा से दान सिंह रावत, पद्मिनी रावत, शुभम और सौरभ रावत। आप हैं भाई भरत लाल सिन्हा, लव कुमार, लक्की सिन्हा और मनोहर और उनके साथी बेमित्रा से। आप सबके अनुरोध पर हमने लिया है फिल्म बहारों के सपने फिल्म का गीत, आवाज है हेमंत नाडे और लता मंगेशकर की। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की और संगीतकार आर टी बर्मन।
1: चुन दी संभाल गोरी

हटोत बाजार लोहात से लाहौत से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल और राजकुमारी पटेल। बिलाईगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन। आप हैं बीरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह, शुभम प्रकाश, शुभम विश्वकर्मा और अरुण विश्वकर्मा। छत्रपति संभाजीनगर से हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। प्रकाश तिरसुनिया, विकास तिरसुनिया, नैतिक मुकुल, दिव्यांश, धैर्य और आराध्य, आप सभी उत्तर बस्तर कांकेर भानुप्रतापपुर के श्रोता हैं। ग्राम मामड़पाल दरभा से गणपत बघेल, मनीष बघेल, अनंत बघेल। आप हैं कोमल सेन, तोषण कुमार सेन, विनायक सेन, रीना पिंकी सेन, डबरापारा सोंगा मगर लोट से। इसी गीत की फरमाइश आई है हमारे पास वासुदेव वोदवड़े, माधुरी वोदवड़े, आकाश कुमार वोदवड़े और अनिता गाठोड़े, रमेश गाठोड़े और लोकेश कुमार गाठोड़े की। आप सभी बुल्ढाना महाराष्ट्र के श्रोता हैं। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा बचेली से बलराम सेन, इंदु सेन, ऋतिका सेन, पुष्पराज, पोषण, पंचू और भुवनेश्वर सेन। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशा राठौर। शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे, हनुमान सारिका, सुरेखा, कुमारी आरवी, तन्वी और उनके साथ ही आप सभी हिंगोली महाराष्ट्र के श्रोता हैं। पुणे से पंकज वाडोदे, आर्या, प्रियंका, बीटी वाडोदे और चंद्रप्रभा वाडोदे। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल और नानक चंद मल्होत्रा। सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से हैं प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सदानंद बोरगांवकर और सुभाष बोरगांवकर। श्रद्धानंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित के साथ बीना आर्य, आप सभी बक्सर के श्रोता हैं। गांव परसाटोला, जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी खुमेंद्र और तुषारणी मसिया। यहीं से हैं रिजवान खान, आयशा सबिया और अनस के साथ रेहान। सुभाष वार्ड भाटापारा से श्रीमती अमृता यादव, श्रीमती पार्वती यादव, श्रीमती ईश्वरी यादव, श्रीमती लक्ष्मी यादव और कुमारी प्रेरणा के साथ डिम्पी यादव। जिला रायसेन खापरखेड़ा से तुलसी राम साहू, मुकेश कुमार साहू, हेमंत कुमार साहू, आरती और ममता गोमती साहू, मोतीलाल यादव, बचकामल, डॉक्टर बसंत भिगू, विनय ठाकुर, आप सभी भाटापारा से। सोनाडी से सुब्रत चौधरी, बेबी अनिशा, रायपुर से नीलू मेहक, डॉक्टर वंदना और बिट्टू कुमार। आप हैं

यूपी से कुमुदनी शर्मा, ओंकार शर्मा, यशोराम मालती, लोकेश साहू, भीषण दास मानिकपुरी, सुभाष और छापा शर्मा गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से हैं, बमलेश पवार, डैनी पवार और मास्टर मनीष, और आप हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी ठाकुर, सुरेश ठाकुर, सुजला और ज्योति छात्रांश ठाकुर। आप सबने सुनना चाहा है अलका याग्निक और साथियों को। गीत आनंद बख्शी का, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है कुदरत का कानून।

इसी गीत की फरमाइश आई है भाटापारा दत्तरिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा की। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप और अनिल शर्मा। कालका से शुभ चंद्र बजाज, विट्टा बजाज और साहिल की।

रुआ बांधा बाजार भिलाई से सुशील जैन, कल्पना जैन, सैया जैन, सौरभ, शौर्य और शुभम जैन, धनोरा जगदलपुर बस्तर से वी पूनम नायडू, साजन के, मास्टर रिशु, मास्टर शिवांशु और अभिषेक नायडू, अगनपुर धर्मपुरा से डी वनिता नायडू, कृष्णा राव, ईश्वर राव, सोम शेखर नायडू के साथ अक्षय और प्रांचल नायडू। आप हैं पलसीकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश सहजवानी, हनी, अमिता, जिम्पी, दियाना और उनके साथी, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री, चितलवाड़ी अकोला से अमोल इंगले, अर्चना, सर्वेश अधीरा और उनके साथी, नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं नरेंद्र सुधार, मनोज सुधार, हिमांशु सुधार, पवन सुधार, शंकर बिहारी, शिव कुमार, सोनू मिस्त्री और महेंद्र सुधार। आप लोरमी चचेड़ी से हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा मरावी, पुष्पराज और ऋषभ मरावी। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मिक्का, बलदेव, बलविंदर विरक, चेतक विरक और मिक्का विरक। भाटावाड़ा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, धनेश तिवारी और सावन नायक, कुमारी अंकिता जोशी और बेबी वेदही जोशी भी इनके साथ हैं। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हैं श्रीमती राधा नामदेव, कामठी नागपुर से हैं अमृता शर्मा, आशीष कुमार, कैलाश प्रसाद और श्रीमती किरण शर्मा। ये श्रोता हैं रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना और खुशी गोस्वामी, नेहरूवाड़ भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत साहू, राघवेंद्र और तेजल साहू, मोहनपारा अकरतला से अभिनव साहू, अभिषेक और उमा देवी साहू, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निमी शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। गीदम रोड जगदलपुर के श्रोता हैं टी राजू राव, टी सुनील राव, शिवानी राव, कृष्णा तुलसी राव, भाग्य लक्ष्मी, ईशा पद्मा राव, मनीषा, जया, नानू, राधिका, आनंद राव, कीर्ति राव और सतीश रोहिणी राव। आप हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और प्रांचल राय, शेरपुर कला गाजीपुर के ही श्रोता हैं अवधेश, श्रीमती प्रीति और नवनीत राय, रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव सिमघा के आप श्रोता हैं। गांव नथाना पंजाब से हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता, हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर भाई और प्रभुलाल बागरी ये श्रोता हैं रटलाई जिला झालावाड़ा राजस्थान से। मेघापारा लोरमी से हैं कृष्ण कुमार साहू, धनंजय सत्यम, कुमारी गायत्री और मनोज कुमार साहू, अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर और मोहम्मद उमर डावर खंडवा से आपने पत्र भेजा। परम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर, वरिंदर, सिमरन, कुलदीप, एकम, दमन और अभिजोत आप सभी भटिंडा पंजाब के श्रोता हैं। श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य और वैशाली बाठे धाड़ी नादुरा महाराष्ट्र से हैं, धुर्राबांधा भाटावारा से हैं प्रमोद साहू, देव कुमार, नेत्राम और भूपेन्द्र साहू। आप हैं शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंचुलता, आदित्य कुमार और कृष्ण श्रीवास्तव। साथ में हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लपी श्रीवास्तव। वरुण जरू कला से महेंद्र सरकटे, विजय सरकटे और मिलिंद सरकटे, नवीन सिंह, ज्योति, श्वेता, स्वाति, सुशांत चुलबुल रानी और संतोष सिंह मधुबनी बिहार से हैं। हाँ मैंने भी प्यार किया है, इस फिल्म का गाना आप सभी सुनना चाहते हैं। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं नदीम शबन, आवाज उदित नारायण और अलका याग्निक की है।

आज के श्रोता सुमन कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा है कि आपकी फरमाइशों से सजी ये संगीत यात्रा आपको पसंद आई होगी। अब दीजिए मुझे यानी मनिंदर सिंह देवगुण को इजाजत। फिर मुलाकात होगी नए गीतों, नई फरमाइशों और नई खुशियों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए अपना प्रिय रेडियो स्टेशन आकाशवाणी जगदलपुर। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। हैव ए नाइस डे।

0: श्रोता सुमन, अभी आप फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये प्रोग्राम सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब दोपहर समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Indian Army prepared for Operation Sindhu 2.0 if the situation warrants, says Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi. Myanmar President U Min Aung Hlaing begins his 5-day India visit with prayers at Mahabodhi Temple in Bodh Gaya, Bihar. Karnataka Congress Legislature Party to meet in Bangalore this afternoon to elect its new leader. At least 7 people killed in separate incidents of thunderstorms, rain and lightning across Bihar. US Defense Secretary Pete Hegseth says Washington is prepared to resume military action against Iran if efforts to reach a deal fail.

0: ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री दिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमा के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
3: म्यांमा के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गयाजी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक

0: देंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
1: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि उसके साझेदार टीसीएस की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की शुरुआत देरी से हुई। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार

0: उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक कोई स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4,00,000 रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
1: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ यह सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिन कर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिनाउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 2:30 हुए हैं, 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कला और कलाकार।
3: दात्र, दात्र, दात्र, दात्र, दात्र, दात्र, दात्र, दात्र, दात्र, दात्र,

0: बार तो दादा दीदी मन आमी देखू से आगे कितलो बरन बरन चो कला मन रली आरु आगे चो लोग मन कला जितलो सीखू रला दूसर लोग घर चो लोग हो नाल कहाँ पारा चो लोग हो नाल गांव चो लोग नाल कुनी असने दोस्त यार हो असन मन के सिखाते बर होत और उन मन के बस सांगते बर होत कि मैं कला के जाने और तुम बस सिखाई दे बोलन बाती मन तर आमी ये भी देखूँ से कितलो कई ठान कला मन लुप्त तो होते जाए से माने हाशते बल जाए से कसन बल्लो ने हुन सिखलो कला मन के पूरे कई लोग मन जसन की दूसर के नहीं सिखातो ना ले बाट नहीं दखातो और असन मन हिसाब मन हो से बोले जसन की कला और संस्कृति आमचू गोटोक अलग गोटोक चीना पहचान है आमचू एक आमचे आम के बचातु काजे आम के अच्छा एक संगातु काजे आमचू कला और संस्कृति चो चीना काजे आम जसन के हम देखू से देश विदेश ने बोले गोटोक अलग गोटोक ना वहां से गोटोक पहचान बोल ली से कसन बोलोन गोटोक अलग गोटोक बाटा गोटोक चीना है बोला आरो आम चो ये तो पीढ़ी मन के बोले सीखा तो रहा है कि जसन की कला जो गुण काया ये मन कसन कसन सीख तो भी दिया आगे जो कला मन कसन रली एक लुप्त नहीं करूँ और जितलो हुक लाए सके एक आमे पूरे आनू जसन की आमे देखू से आगे ले जसन की आगे लोग मन कई ठान कला मन जितलो कला मन तो सीखते रहोत और ये भी देखू से कई ठान कला मन खड़ी लुप्त बल होते है ऐसे और जसन की हम देखू से जसन की आम जो स्थानीय कलाकार भाई बहन मनास होत और ये मन चो जसन की बना लो सामान मन ये मन चो कई ठाने मन बरन बरन चो हिसाब मन सामान मन बनाए सोत ये मन चो सामान पत्र के आम के घेनुन भाती ये मन खंडिक उत्साह बल खंडिक हौसला बल मन पढ़ा तो रहा है ये मन खंडिक तारीफ बल कर तो रहा है जसन ये सफाई कर लो उनका गोटोक आत्मविश्वास बल बढ़े से गोटोक हरिक बल लागे से और बना तो का गोटोक मन बल लागे से ओ नुआ नुआ सामान मन बनाए से जसन की मांग बल आसम सामान के ये मन का गोटोक हरिक बल लागे से तो हुनी का जसन की आम जितलो हुक लाए सके स्थान आम जसन लोकल आम जो भाई बहन मन कई ठान सामान मन मन बनाए सोत जसन की गांव गांव बोले कई कलाकार भाई मन बल रहे सोत ये मन का खिंडिक पूरे बाट नहीं रखा लो काजे ये मन खिंडिक मार्गदर्शन नहीं दिलो काजे ये मन का खिंडिक पाठकूती घुस सोत तो असन मन के काय जसन की आमे पूरे बाट दखन भाती यमन के सांगुन भाती पूछा पचारा कर भाती यमन के बाट दखल काय यमन आगे पूरे बल बढ़ दे जसन की हम देखू से जसन की ठान ठान के जो कला उत्सव प्रदर्शनी बोले जसन की ठान ठान के जसन बला स्तर नालचिला स्तर ने होली काय हुए से जसन की गांव गांव ले कई ठान लेखा ले की जसन की सियान सजन मन आप लोग बना लो समान के आनंद भाती था प्रदर्शनी हिसाब ने बिकुक लाई बोल सकोत और असन का असन था ने होलन का जुआन लेखा ले की मन जसन की और बल लोग मन था जुड़ते जासोत और अपने जसन की सिकुन भाती आगे मन बढ़ते बल जासोत तो जितलो होक लाए सके आम चो जितलो कला मना से आम चो था चो हुन सपाए के आम के अच्छा संगा तो राय और पूरे यमन के आन तो राय तो अले तो रेली गोट और आम चो मोटे ने और बल नगद जहाला मना से अले जहाला मन के अमरा
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कॉन्क्रीट चॉइस।
6: जीएसटी चो दर के कम करलो ने सोझे मनुख जीव चो इलाज खंडिक सस्ता नहीं होली से बल्कि जनावर मन चो इलाज बोले सस्ता हो तो भरसा आसे। जीएसटी ले वेटनरी सर्जिकल चो सामान सस्ता होली से नुआ कीमत ले सामान बनातो लोग और घेनतो लोग दोनों के लाभ मिरे दे। ये नुआ जीएसटी दर 22 सितंबर 2025 ले लागू हो दे।
0: हाँ दादा दीदी मन,

सुनलु नगद नगद गोट के। तो आज जो आम कलाकार कलाकार पैना यमनाथ भानुमती नरसिम्हन। भानुमती नरसिम्हन चो जन्म 11 जनवरी 1958 ने पापनासन दक्षिण भारत ने गोटोक ठान ने हौरली। यमन चो पढ़ी लिखी संस्कृत साहित्य ने एम ए करू रला यमन। और पीला बेराची यमन संगीत नृत्य आरु चित्रकला ने खूब मन रली। जसन की गोटोक मन मन रहे से कि काय ने मचो रुचि रहे थे उन्हीं सामने मंचो काय रुचि जसन संगीत होली नृत्य होली और चित्रकला ने मंचो पीला बेरले खूब रुचि रहे। और उन्हीं संगे पारंपरिक हस्तकला आरु बुनकर मन के आगे पूरे आंदो काजे खूब प्रयास कर ला यमन। जसन की हाथ हाथ हाथ ले बन लुबी थी यमन चो ना ले बुनकर मन के यमन का एक जसन की शुरुआत ले मन खूब प्रयास करला कि यमन पूरे होत और यमन आगे बढ़ोत बोलन भाती। आरु गरीब आरु ग्रामीण क्षेत्र चो लेखा लेखी मन का जे गिफ्ट ए इस्माइल केयर ऑफ चिल्ड्रन बोलन भाती गोटोक योजना गोटोक निकराला यमन। यमन हुनी बेरला निकराला और यमन के हुनी समय ने मूरबल हो रहे यमन चो योजना चो। यमन चो नाव भानुमती नरसिम्हन रहे मानतर सपाय लोग यमन के भानुदीत नाव ले मन के जानते रहत यमन के पहचानते रहला। यमन यमन गुरुदेव श्री श्री रविशंकर चो बहिन रहो तेमन। और आर्ट ऑफ लिविंग ने बायले लेकी मन के महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार काजे बायले मन के पूरे अंतो काजे आत्मनिर्भर बनातो काजे यमन खूबी कोशिश करला खूबी प्रयास करला। यमन जो मूर गोटो हिसाब रहे कि बायले लेकी मन जसन की यमन काहे निकलो नुआत का बलते यमन के कहीं बल गोटो काम बूतान यमन गोटो पूरे आन होते यमन। और यमन आप लो यमन आप लो भाई श्री श्री रविशंकर जो जीवन ने गोटोक शिखर के पठार बोलन भाती गोटोक है गोटोक पुस्तक बल लिखो रला यमन। उन पुस्तक भीतरे हम पूरा जीवन गाथा पूरा मंचो गोटोक कहानी रहे। और यमन का है जसन की ग्रामीण क्षेत्र ने जसन की महिला बाइले लेकी मन का जे पीला मन का जे यमन खूब अथक प्रयास करला कि यमन गाँव गाँव ले गोटोक पूरे ओन भाती यमन आगे बढ़ोत बोलन भाती यमन खूब प्रयास करला। तो ये तो ली गोट और आम चो मोड़न अतः आज गोटोक गीत आले बेरा नी करूं ए गीत के सुनू अले गीत कुरिया भाई बहन मन पाछा मी चितावां।

हाँ दादा दिदी मन काय सुंदर गीत के सुनते रहलू गीत कुरिया बहन रहला दया और हंजो संगवारी मन तो मोटरान तो और बल गीत मन आस्ता तो और मैं बलते ने बेरा नहीं करूँ गोटो गीत के और सुनू गीत कुरिया भाई बहन पाचम फिर चिताऊँ।

कला और कलाकार। अभी आप हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 3 बजे हैं। अब हमारी ये सभा संपन्न होती है। एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। शाम 5 बजे हम सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

मीडियम व्यू 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमें मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा की शुरुआत करने से पहले आइए हम आपको आज के शेष और कल के कार्यक्रमों से अवगत करा दें। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रम। आज रात 9:30 पर साहित्य भारती कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। युवाणी का प्रसारण समय शाम 5:10 होगा। लोकगीतों के कार्यक्रम में मेघनाथ पटनायक और साथियों का गाया हल्बी गीत आप सुनेंगे 6:35 पर। बस्तर के स्वर सुनेगा 7:00। 7:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम फोन इन किसानवाणी का प्रसारण किया जाएगा। जोनी उजर में रात्रि 8:00 सुखमती और साथियों का गाया भत्री गीत सुनिएगा। पिलामन कजगोट में 8:30 पर प्रस्तुति होगी संतोष कुमार बघेल की। 9:15 पर आमचोरान आमचो जीवना में सुनिए संतुराम मौर्य से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता होंगी बलबीर सिंह कच्छ। और रात्रि 10:00 पाड़ में सुनिए मावली माता पाड़ और फिरंता देवी पाड़। वादक कलाकार होंगी मंगलू और साथी। ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। अब सुनिए कल की सभाओं के कार्यक्रम। कल सुबह 10:55 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनता से संवाद पर आधारित कार्यक्रम मन की बात आप सुनेंगे। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। इसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद सुनिएगा दिन में 11:30 पर। इसे हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। रात्रि 8:00 हल्बी में आप सुनेंगे मन की बात हमारे केंद्र से। और 9 बजे इसका गोंडी अनुवाद हम आपको सुनवाएंगे। नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे 9:30 पर। जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से शाम 6:05 पर रिले करेंगे। हल्बी समाचार बुलेटिन आप सुनेंगे सुबह 6:30 पर और गोंडी समाचार बुलेटिन शाम 6:30 पर। कल सुबह 7:10 पर विशेष कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। कल प्रातःकालीन सभा में 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुनिएगा। प्रकाश किरण होगा 6:20 पर।

श्री रामचरित मानस का गायन सुनिए 6:25 पर। स्वर अनूप जलोटा का होगा, संगीत निदेशक होंगे सतीश भाटिया। कृषि सामिकी बेड़ा खड़ा चौगोर सुनिए 6:35 और दिन में 1:05 पर। हुलहुली में 6:40 पर आप सुनेंगे बोरैया माता पाड़। वादा कलाकार होंगे भागीरथी और साथी। 7:45 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। विभिन्न बोलियों में लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे लोक मंजरी कार्यक्रम में 8:30 पर। 9:00 बच्चों का कार्यक्रम बालबाड़ी सुनिएगा। एक ही फिल्म से की प्रस्तुति होगी 9:30 पर। 10:00 सुनिए कार्यक्रम फोन इन चाहत, इसमें कल प्रस्तुति होगी तृप्ति परेडा की, संयोजक होंगी चंद्र ऋषि ठाकुर। दिन में 12:00 रुसोसा में सुनिए चंद्रकांत राजा का भाग 4। घर आंगन शहरी महिलाओं का ये कार्यक्रम होगा 12:30 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन हम लेकर आएंगे दिन में 1:10 पर। कला और कलाकार कार्यक्रम होगा दोपहर 2:30 पर। देशभक्ति गीत आप सुनेंगे सांध्यकालीन सभा में 5:05 पर। युवाणी हमारा ये दैनिक कार्यक्रम होगा 5:10 पर। बस्तर के स्वर सुनिए 7:00। 7:21 पर ग्रामीणों का कार्यक्रम आमचो गांव होगा। रात्रि 8:30 पर पिलामन काजेगोट में कल प्रस्तुति होगी अनीता निर्मल की। और रात्रि 10:00 दौना में हल्बी जगार गीत सुनिएगा सुकालू राम पांडे और साथियों के स्वर में। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युवाणी।

0: गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, जिसमें आज आप सभी के साथ हूँ मैं एश्ना नाग
1: और मैं स्नेह श्रीवास्तव। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा अभिवादन।
0: नमस्कार स्नेह।
1: हाँ,
0: आज के समय में हम में से कई लोगों को तनाव की समस्या है ना?
1: हाँ,
0: चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक।
1: हाँ, सही कहा तुमने एश्ना, और इसी तनाव के कारण हमें कई गंभीर समस्याएं भी हो सकती है, और इन्हीं में से एक है छुपा हुआ बर्नआउट।
0: लगातार तनाव के कारण जब आप भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह थक जाते हैं, तब बर्नआउट की स्थिति उत्पन्न होती है।
1: जी हाँ दोस्तों, बर्नआउट भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक थकावट की स्थिति है, जो लंबे समय तक तनाव के कारण होती है। ये सिर्फ एक लंबे दिन के बाद थकावट महसूस करने से कहीं ज्यादा है, और अगर इसका समाधान नहीं किया गया तो ये बर्नआउट गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है।
0: आज की तेज रफ्तार दुनिया में बर्नआउट एक प्रचलित समस्या बन गई है। पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों क्षेत्रों में बढ़ती मांगों के साथ कई व्यक्तियों को संतुलन और सेहत बनाए रखने के लिए मदद की जरूरत महसूस होती है।
1: दोस्तों, बर्नआउट के लक्षणों को पहचानना इससे निपटने का पहला कदम है। आम लक्षणों में शामिल है क्रोनिक थकान और अनिद्रा,
0: चिड़चिड़ापन और घबराहट,
1: प्रदर्शन और उत्पादकता में कमी,
0: असहायता और निराशा की भावनाएं,
1: सिरदर्द और पेट संबंधी समस्याओं जैसे शारीरिक लक्षण।
0: इससे बचने के उपाय भी हैं, जैसे कि अपनी सीमाएं तय करें, हर काम के लिए हाँ ना करें और अपनी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी लें,
1: काम के बीच में छोटे छोटे विश्राम यानी ब्रेक लें और डिजिटल स्क्रीन से दूर रहें,
0: अपने करीबी दोस्तों, परिवार या किसी काउंसलर से अपने मन की बात कहें,
1: अच्छी नींद, पौष्टिक आहार और अपने पसंद के शौक के लिए समय निकालें।
0: दोस्तों, छुपा हुआ बर्नआउट एक धीमे जहर की तरह है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। सफलता की दौड़ में मानसिक स्वास्थ्य को दांव पर लगाना समझदारी नहीं है। हमें ये समझना होगा कि रुकना, आराम करना और मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित करने का एक जरूरी कदम है।
1: चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले कार्यक्रम हेलो युवाणी की ओर, और जानते हैं हमें पहला कॉल किसने और कहां से किया है। नमस्कार, हेलो युवाणी।
2: हेलो युवाणी
1: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
2: हाँ, मैं मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू बोल रहा हूँ।
1: कैसे जी? श्रवण जी, आप
2: ठीक है? सर, आप लोग कैसे हैं?
1: जी, हम भी
2: काफी। गर्मी का मौसम है और गर्मी का अब आनंद ले रहे हैं।
1: जी जी, नौतपा चल रहा है जैसे कि आप जानते हैं।
2: जी जी, नौतपा में 9 दिन का गर्मी रहता है।
1: जी जी,
2: और कहीं भी जाना है तो सुबह या शाम के समय जाना चाहिए, और ज्यादा आवश्यकता है तो दोपहर में निकल रहे हैं तो बॉटल में पानी रखना चाहिए और गमछा सूती कपड़ा का प्रयोग करना चाहिए।
1: जी,
2: ये थोड़ा से एहतियाती बरतना चाहिए। नौतपा में पेयजल मतलब पेय पदार्थ का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए।
1: हाँ, समय समय पर पानी पीते रहें और जैसे फल खा सकते हैं, सलाद खाना चाहिए
2: जी,
1: जिसमें ज्यादा पानी हो
2: जी, जैसे नारियल पानी है।
1: जी जी
2: जी, इस तरह से सेवन करने से थोड़ा से राहत मिलेगा।
1: जी, बात तो आपने सही कही है, हमारे श्रोता भी बात अपनाए तो काफी अच्छी बात है
2: जी।
1: और श्रवण कुमार, आपने हेलो युवाणी कार्यक्रम में कॉल किया है, तो आप कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
2: राम तेरी गंगा मैली का सुना दीजिए, हुस्न पहाड़ों का।
1: जी जी, अच्छे गीत सुने आप। ठीक है श्रवण कुमार जी, हमें कॉल करने के लिए, अपना समय देने के लिए
2: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का एक गीत।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: नमस्कार, हेलो युवाणी।
2: परम माननीय महोदय, स्टार सुप्रीम, प्यार से नमस्कार।
1: नमस्कार जी, अपना शुभ नाम बताइए।
2: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ।
1: जी जी, शारदा प्रसाद जी कैसे हैं?
2: मैं तो बहुत अच्छा हूँ सर, गर्मी का आनंद ले रहा हूँ। जबरदस्त गर्मी होती है, चिलचिलाती हुई धूप रहती है और प्रचंड गर्मी का वातावरण बना हुआ है। लू की चपेट में है इस वक्त मथुरा वृंदावन।
1: जी जी, बारिश भी आने वाली है, समझिए नौतपा के बाद में।
2: ये जो बारिश आने वाली है सर, ये 15-20 जून तक पहुंचेगी हमारे ख्याल से मानसून हमारे मथुरा वृंदावन में।
1: जी जी,
2: लेकिन छत्तीसगढ़ में थोड़ा जल्दी आ जाता है, क्योंकि उधर महाराष्ट्र बॉर्डर है, उधर आंध्र का बॉर्डर है, उड़ीसा का बॉर्डर है, जिससे कि चारों तरफ से समुद्री हवाएं जब आती हैं तो कहीं न कहीं बारिश अवश्य हो जाती है।
1: क्या बात है शरद प्रसाद जी, आप सारी चीज का नॉलेज रखते हैं।
2: मानवर बताना चाहता हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ में 15 साल बिता के आया हूँ, वहाँ पे रहा हूँ 15 साल।
1: अरे वाह
2: जी, आपका महासमुद्र क्षेत्र हो गया और सरगुजा क्षेत्र है, इधर नांदगांव, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ में पूरी जगह मैं घूम के रहा हूँ और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज भी मुझे थोड़ी थोड़ी आती भी है, समझ जाता हूँ।
1: तो आज शारदा प्रसाद जी, आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
2: मानवर, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है ओम शांति ओम और गीत के बोल हैं, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। बहुत ही सुंदर प्यारा गीत आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, युवाणी जगदलपुर में।
1: जी जी, हम आपकी पसंद जरूर सुनेंगे।
2: जी, हृदय धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। सादर नमस्कार।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: नमस्कार, हेलो युवाणी।
3: हेलो
2: जी, नमस्ते।
3: नमस्कार आपको, प्रणाम
2: जी। नमस्ते नमस्ते, किन से बात हो रही है हमारी, अपना नाम बताएं।
3: बोल रहे हैं नकटी से, आरपी रानी।
2: जी जी, आरपी रानी जी, बताइए कैसे हैं, क्या हाल है
3: आपको। सारे प्रणाम
2: जी, आपको भी नमस्कार।
3: आज एक गीत सुनना था मेरे को।
2: जी जी आरपी रानी जी,
3: फिल्म है 3420।
2: इस फिल्म कौन सा गीत,
3: मुकेश है लता मंगेशकर गीत के बोले हैं, रमैया वर्षा भैया मैंने दिल तुझको दिया, ये गीत है।
2: जी जी, काफी अच्छा गीत है,
3: पुराना गीत है, क्योंकि मेरे पुराने गीत जाने पसंद आते हैं ना।
2: जी जी,
3: काफी सामान देख लिया, फिर भी शौक जो है ना, चीज का शौक होता है ना, वो खत्म नहीं होता जल्दी।
2: हाँ ये तो है, शौक रहने चाहिए आरपी रानी जी।
3: तो जो गीत बोला आप सुनाने की कृपा करेंगे?
2: जी हम आपको जरूर सुनाएंगे, आपकी पसंद करेगी।
3: और सर बहुत नमस्कार
2: जी। नमस्कार, कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो युवानी
1: जी। हेलो युवानी
0: जी, नमस्कार
1: जी। नमस्कार
0: जी, अपना शुभ नाम बताइए।
1: अशोक कुमार साहू बोल रहा हूँ, कर्मा चौक लोहारी डीहा, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ से।
0: जी अशोक जी, कैसे हैं आप?
1: जी अच्छे हैं मैम।
0: अच्छा, क्या करते हैं अशोक जी आप?
1: नियमित तो खेती किसानी का काम करता हूँ और राजमिस्त्री का भी काम करता हूँ, लेकिन खेती किसानी में तो अभी कुछ नहीं है, इसलिए राजमिस्त्री का काम करते हैं।
0: जी, तो अभी आपकी किसानी के लिए चालू होने वाला है बारिश का
1: जी
0: मौसम।
1: जी बिल्कुल, हम इंतजार में हैं कि बारिश कब आए और उसके आधार पे हम किसानी का हम अपना कार्य संभाल सके, इस इंतजार में हम लगे हुए हैं। जैसे ही मानसून आता है तो हम अपना किसानी का काम चालू करेंगे।
0: जी जी, तो क्या क्या लगाते हैं आप अशोक जी?
1: इस मौसम में हम धान का फसल ही कर पाते हैं, अपने क्षेत्र में ना धान का फसल ज्यादा होता है
0: जी।
1: पर्याप्त मात्रा में है ना, और नाला लगा हुआ है तो उसके माध्यम से सिंचाई हो जाता है।
0: जी जी, तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे अशोक जी?
1: फिल्म रफू चक्कर का उसमें गीत है, तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़ी ना, जिसे अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से, ये वाला गीत सुनना था।
0: ठीक है, कॉल करने के लिए धन्यवाद अशोक जी। सुनवाते हैं आपको आपके पसंद का ये गीत।
1: जी धन्यवाद।

0: हेलो युवानी
1: जी, नमस्कार
0: जी। नमस्कार मैम
1: जी, अपना शुभ नाम बताइए।
0: जी मैम, मैं हिमेश बार से बोल रहा हूँ, खुन्ना से, जिला सुकमा।
1: क्या करते हैं हिमेश जी आप?
0: जी मैम, मैं मिडिल स्कूल में प्यून हूँ मैम।
1: अच्छा, और बाकी कैसे हैं आप?
0: बाकी सब बढ़िया मैम, बस वो गर्मी पड़ रही है मैम, तगड़ा गर्मी। गर्मी
1: हाँ, गर्मी तो बहुत है अभी
0: जी जी
1: भी, लेकिन बारिश का मौसम भी आने ही वाला है ना?
0: जी जी अब तो कुछ ही दिन में मतलब और बारिश भी आने वाला है मैम। जी
1: अभी तो स्कूल लेकिन चालू नहीं हुए होंगे।
0: जी मैम, मतलब अभी 15 तारीख से शुरू हो जाएगा मैम स्कूल। स्कूल अभी तो मतलब छुट्टियां मतलब चल रही हैं अभी।
1: अच्छा, तो गर्मी छुट्टी में आप मतलब जाते हैं काम वहाँ कुछ करते हैं, या आपका भी छुट्टी रहता है?
0: कभी कभी जाते हैं मैम, मतलब जैसे मतलब कुछ काम रहने से स्कूल का।
1: तो कहाँ, आपका सुकमा में ही आप जाते हैं कि कहीं और आपकी पोस्टिंग
0: जी
1: लग
0: मैम,
1: रही है?
0: घर से मतलब 4 किलोमीटर है मैम।
1: अच्छा, मतलब पास में ही है।
0: जी जी
1: हाँ, हमारा कार्यक्रम आप सुनते हैं?
0: जी सुनता हूँ मैम,
1: कैसा लगता है आपको हमारा कार्यक्रम?
0: बहुत अच्छा लगता है मैम। श्रद्धा सुमन, पत्रांगन, कोनी चाहत, हेलो यूनानी, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं मैम।
1: जी, को ये जान के खुशी हुई कि आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं।
0: जी
1: तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: मुझे जीत फिर मसला जी मैम, जीत तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी वाला।
1: ठीक है, कॉल करने के लिए धन्यवाद हिमेश जी, सुनवाने
0: मैम आप
1: के
0: कौन बोल रहे
1: लिए।
0: हैं मैम?
1: जी, मेरा नाम ऐशना नाग है। ठीक है,
0: ठीक है
1: चलिए।
0: धन्यवाद।
1: जी, कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो युवानी।
1: हेलो,
0: हेलो
1: नमस्ते मैडम।
0: जी, नमस्कार। अपना नाम बताइए।
1: अमरजीत बात कर रहा हूँ मैं, रामपुर खंडिया गेट कॉलोनी से।
0: कैसे हैं अमरजीत आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैडम, आप बताइए, आप लोग कैसे हैं? आकाशवाणी परिवार में कैसे?
0: जी, हम सब भी सब अच्छे हैं। क्या करते हैं आप?
1: मेरा हैंडवर्क का काम है, जरी का काम, सूटों पे हैंडवर्क होता है, जो कढ़ाई होती है ना, मोती
0: जी
1: सितारे जो लगाते हैं, वो काम करता हूँ जी। मैडम, जैसे कि हम ये काम करते हैं, कारखानों में होता है, तो ये दिल्ली लेके जाते हैं माल बेचने के लिए, अहमदाबाद जाता है, गुजरात जाता है, सूरत जाता है मैम
0: मतलब अच्छा खासा बिजनेस है आपका, है ना?
1: जी।
0: तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे अमरजीत जी?
1: मैं आज गीत सुनना चाहूंगा, फिल्म का नाम है कल की आवाज, और इसमें एक गीत है जो मैंने चुना इस प्रोग्राम में, तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है।
0: ठीक है, कॉल करने के लिए धन्यवाद अमरजीत।
1: मैडम, ये प्रोग्राम आएगा किस दिन?
0: ये आएगा शनिवार को, शनिवार को
1: शनिवार
0: पांच
1: को
0: बजकर दस मिनट से।
1: शाम के 5:10 से शनिवार को।
0: जी, आपका ये पहला कॉल है क्या?
1: हाँ मैडम, पहला कॉल है क्योंकि मैं काफी दिनों से आकाशवाणियों को सभी को सुनता हूँ, मगर आकाशवाणी जगदलपुर पे ये पहले ही कॉल लगाया मैंने, और काफी दिनों के बाद लगा भी है आज इस प्रोग्राम में कॉल। आपका
0: अच्छा, धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: शुभ नाम? ठीक
0: जी, मेरा नाम एशना नागे।
1: है, बाकी आवाज आपकी काफी खूबसूरत है, साथ ही साथ आपके द्वारा जितने भी प्रोग्राम लिए होते हैं, तो आप काफी अच्छा प्रोग्राम को करती हैं मैडम। तारीफ करने के लिए कोई लफ्ज नहीं है जो आपको बता सकता हूँ।
0: अरे धन्यवाद अमरजीत जी।
1: थैंक यू मैम, आगे भी आपका इंतजार करेंगे इसी प्रोग्राम में, हो
0: जी
1: सकता
0: जी
1: है तो बात जरूर होगी आपसे।
0: जी जी जी धन्यवाद कॉल करने के लिए, धन्यवाद। सुनवाते हैं आपको आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो युवाणी
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। अपना शुभ नाम बताइए।
1: जी, मैं गीदम रोज जगदलपुर से टी सुनील राव बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, कैसे हैं सुनील जी आप?
1: जी ठीक हूँ मैडम जी। आप सुनाइए मैडम जी, आपका शुभ नाम बताइए।
0: जी मेरा नाम एशना नाग है।
1: अच्छा,
0: क्या करते हैं
1: तो
0: सुनील जी आप?
1: जी मेरा मोबाइल दुकान है मैडम जी।
0: जी जी
1: मैं यही बोल रहा था मैडम जी, आज मौसम बहुत अच्छा हो गया है मैडम जी, बरसात हो रही है जगदलपुर में।
0: वही ना, इतने दिनों बाद बरसात तभी हो रही है, गर्मी बहुत हो गई थी, है ना?
1: जी मैडम जी, दिन भर बहुत गर्मी था मैडम जी, और दो चार दिन से तो गर्मी बहुत था।
0: नौटप्पा चालू हो गया है तो उस वजह से गर्मी और लग रही है ना?
1: जी, तो कम से कम थोड़ा सा सुकून मिला मैडम जी, पानी गिर रहा है तो।
0: तो सुनील जी, आपका ये पहला कॉल है या आप इससे पहले भी कॉल कर चुके हैं?
1: जी मेरे बड़ा भाई करते रहते हैं, जो गीदम रोड जगदलपुर से ही, उनका नाम है टी राजू राव, वो मेरे बड़े भाई है।
0: अच्छा, तो आपका ये पहला कॉल है
1: जी। मैं कभी कभी बहुत सालों के बाद मैं आपको फोन लगाया हूँ मैडम जी।
0: अच्छा, तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैडम जी मुझे अब तुम्हारे हवाले वतन साथी फिल्म का एक गीत सुना दीजिए मैडम जी, हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें।
0: अच्छा, और कुछ आप अपने बारे में बताना चाहेंगे?
1: जी मैं यही बताना चाहता हूँ मैडम जी कि अभी जो पानी गिर रहा है, ये पानी थोड़ा सुकून तो देगा मैडम जी, लेकिन क्या है कि पानी में भीगना भी ठीक नहीं है मैडम जी, और गर्मी का जो अभी नौतपा जो चल रहा है उसमें यही चाहूंगा कि थोड़ा सा संभल के रहे तो अपने लिए भी ठीक है, और मतलब परिवार वालों के लिए भी ठीक रहेगा मैडम जी।
0: जी ठीक है, कॉल करने के लिए धन्यवाद सुनील जी।
1: धन्यवाद मैडम।
0: सुनवाते हैं आपको आपके पसंद का ये गीत।

0: क्या करें।
1: स्नेह,
2: हाँ,
1: आज तो अपने दोस्तों से बातें करके उनके पसंदीदा गीत सुनवाकर हमें तो आनंद ही आ गया।
2: हाँ ऐशना, सही कहा तुमने, और उम्मीद है हमारे दोस्तों को भी हमारा अच्छा कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।
1: दोस्तों, अगर आप भी हमसे यूं ही बात करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 222-666 या 222-160। इस नंबर से पहले STD कोड लगाना ना भूले, जो है 07782।
2: ध्यान रखे दोस्तों, हमारी रिकॉर्डिंग प्रत्येक गुरुवार को 3:30 से 4 बजे के बीच होती है, जिसका प्रसारण शनिवार को किया जाता है, तो हमें कॉल करना ना भूलें।
1: इसी के साथ वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। कल शाम इसी समय फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। मैं ऐशना नाग
2: और मैं स्नेह श्रीवास्तव,
1: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवाओं का कार्यक्रम युवाणी, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को हैं। अब समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: विशाल शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ नाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए, जहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने केरलम में मादक पदार्थों के खिलाफ समन्वित अभियान के अंतर्गत 24 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। चक्रव्यूह अभियान के अंतर्गत कोच्चि, मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम में मेथक्वालोन, मेथमफेटामाइन और हशीश का तेल सहित कई मादक पदार्थ जब्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल पर किया जाएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ से उंग जाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम व्यू पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को हैं। अब छत्तीसगढ़ी समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग वसुधा सेन के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव पर आज रतिहा थम जही प्रचार। परम दिन 1 जून के हो ही मतदान। छत्तीसगढ़ में चलत जनगणना के पहलिया चरण के आज आखिरी दिन हरय। और हिंदी पत्रकारिता के 200 बच्चर पूरा होए के उपलक्ष्य में रायपुर प्रेस क्लब डहर ले आज राजधानी रायपुर में पत्रकारिता गौरव मारतंड उत्सव के आयोजन करेगी। अब समाचार विस्तार ले। प्रदेश में नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के आम और उपचुनाव के तहत 1 जून के मतदान होही। ये चुनाव मनबर प्रचार के आज आखिरी दिन हरय। आज रतिहा 12 बजे ले प्रचार थम जही। एकर बाद प्रत्याशी मन घर घर जाके संपर्क करही। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग डहार ले देगे जानकारी के अनुसार नगरी निकाय मन में कुल 240 और त्रिस्तरीय पंचायत मन में कुल 392 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत नाम वापसी के प्रक्रिया पूरा होए के बाद पंच के 640 पद पर निर्विरोध निर्वाचन हो गये रहिस। उन्हें सरपंच के 15 पद पर निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुए है। शेष 34 मतदान होही। नगरी निकाय चुनाव के तहत पार्षद के कुल 71 और अध्यक्ष पद के 5 स्थान पर मतदान होही। नगरी निकाय चुनाव पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के माध्यम ले और पंचायत चुनाव पर मतपेटी के माध्यम ले मत डाले जाही। राज्य निर्वाचन आयोग हा मतदान पर सबो तैयारी पूरा कर ले है। छत्तीसगढ़ में चलत जनगणना के पहलिया चरण के आज आखिरी दिन हरय। 1 मई ले शुरू होए जनगणना के पहलिया चरण में 92% ले ज्यादा काम पूरा हो गये है। प्रदेश में जनगणना पर 48,782 ब्लॉक बनाए गये रहिस। हर ब्लॉक में औसतन 165 मकान शामिल है। इसी आधार में प्रदेश में 80 लाख ले ज्यादा मकान बन के आंकड़ा आगू आये है। ये मकान बन के पूरा विवरण पहली बार डिजिटल रूप में सरकारी रिकॉर्ड के हिस्सा बनत है। आज आखिरी दिन शेष बाचे घर मन में जाके प्रगणक मन हा आंकड़ा अपडेट करीन। जनगणना के दूसरिया चरण अवैया बच्छर 1 फरवरी ले शुरू होही। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। बच्छर 1826 में आज के दिन हिंदी भाषा के पहलिया समाचार पत्र उदंत मारतंड प्रकाशित हो रही। हिंदी पत्रकारिता के 200 बच्छर पूरा होए के उपलक्ष्य में रायपुर प्रेस क्लब डहर ले आज राजधानी रायपुर में पत्रकारिता गौरव मारतंड उत्सव के आयोजन करेगी। ये कार्यक्रम के शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय करीन। समारोह ला संबोधित करत हुए मुख्यमंत्री हकीन की मीडिया के सकारात्मक आलोचना केवल व्यक्ति ला ही नहीं बल्कि प्रशासन और सरकार लघलो आत्ममंथन और बेहतर कार्य के दिशा प्रदान करते। उमन कहीन की पत्रकारिता है राष्ट्र निर्माण और सामाजिक परिवर्तन में ऐतिहासिक भूमिका निभाए है। कार्यक्रम ला वित्त मंत्री ओपी चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार के जी सुरेश घलो संबोधित करीन। अतिथि मन के स्वागत रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी है करीन। ये मौका में मुख्यमंत्री है पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देवैया वरिष्ठ पत्रकार मल्ला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ले सम्मानित करीन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई है कहिन है कि उनखर पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून ले सक्रिय हो जही। आवेदन करे के इच्छुक विद्यार्थी मन के उत्तर पुस्तिका मन के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करे बर ए पोर्टल शुरू करे जात है। एखर ले मूल्यांकन के सर्वोच्च मानदंड स्थापित होही। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विद्यार्थी उत्कृष्ट योजना के तहत चालू शैक्षणिक सत्र में कक्षा 6वीं में प्रवेश पर 26 जुलाई के आयोजित होवैया लिखित परीक्षा ला स्थगित कर दी गई है। सिख धर्म के 5वां गुरु श्री अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के मौका में गुरुद्वारा मां शबद कीर्तन के आयोजन करे जाते। एकरे संग राहगीर मल्ला भीषण गर्मी में शरबत पिला के गुरु के बलिदान के स्मरण करे जाते। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय गुरु श्री अर्जुन देव जी के शहादत दिवस में उनला भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करें। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
2: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमर समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमर फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमर यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगु बाढ़ बाती समाचार कोती। राज्य सरकार हा चालू वित्तीय बच्छर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश के सब्बो जिला मल्ला 2,670 करोड़ रूपया ले ज्यादा के केंद्रीय और राज्यांश राशि जारी करे है। ये राशि SNA स्पर्श मॉड्यूल के माध्यम ले जिला मल्ला आवंटित करे गये है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हकीन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य में हर दिन 1,600 ले ज्यादा पक्का आवास के निर्माण करे जाते। उमन बतैन की पाछू ढाई बच्छर में 1,60,000 ले ज्यादा आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं। राज्यपाल रमन डेका हा आज लोकभवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिया गरियाबंद जिला के अधिकारी मन के बैठका लीन। बैठका में उमन स्वास्थ्य शिक्षा स्वच्छता जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन समेत अलग अलग विषय मन ऊपर चर्चा करत हुए अधिकारी मल्ला जन प्रतिनिधि मन के सहयोग ले विकास कार्य मल्ला प्रभावी ढंग ले संपादित करे ऊपर जोर दीन। राज्यपाल हा रेत के अवैध खनन ऊपर रोक लगाए और वैज्ञानिक और व्यवस्थित खनन व्यवस्था सुनिश्चित करे बर घलो किहीन। उमन किहीन की किसान मल्ला प्राकृतिक खेती और हाइड्रोपोनिक्स खेती अपनाए बर प्रोत्साहित करे जाए। प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण ले सम्मानित तिजन बाई के तबियत बिगड़े के बाद उल्ला हाल ही में एम्स रायपुर में भर्ती कराए गए है। चिकित्सक मन बतैन की उखर स्वास्थ्य में सुधार हुआ थे। डॉक्टर मन के टीम लगातार उखर स्थिति ऊपर नजर रखे हुए है। तिजन बाई के अस्वस्थ हुए के सूचना मिले के ऊपर संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल हा दूरभाष में तिजन बाई के परिजन मल्ले बातचीत कर उखर हाल चल जानी। ये दौरान उमन भरोसा दिलाईन कि राज्य शासन तिजन बाई के चिकित्सा और जरूरी सहायता पर पूरा संवेदनशीलता के संग खड़े हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और NHM के अधिकारी और कर्मचारी मल्ला 6,00,000 रूपया के निःशुल्क लाइफ टाइम इंश्योरेंस कवर मिली। स्वास्थ्य विभाग एक बारे में बैंक ऑफ इंडिया के संग MOU करे के अनुमति दे है। ये सुविधा उन NHM अधिकारी मल्ला मिली जिखर वेतन खाता बैंक ऑफ इंडिया में संचालित है। सामान्य मृत्यु के स्थिति में ये बीमा कवर प्रदान करे जाहे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हकीन है कि ये पहल ले NHM के हजारों कर्मचारी मल्ला सामाजिक सुरक्षा के अतिरिक्त लाभ मिली और उखर परिवार मल्ला आर्थिक संबल घलो मिली। रायपुर के इंदिरा

0: राजधानी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय आम महोत्सव के आज दूसरिया दिन हरय। महोत्सव के उद्घाटन काली राज्यपाल रमेन डेका करीन। ये मौका में उमन कहीन कि छत्तीसगढ़ में आम उत्पादन और मैंगो टूरिज्म के अपार संभावना है। उमन किसान मल्ले पारंपरिक खेती के संगे संग आधुनिक तकनीक मल्ला अपनाए और आम के वैल्यू एडिशन ऊपर ध्यान दे के आह्वान करीन। ये मौका में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई है कहीन कि किसान मन के आय ला बढ़ाए में आम के खेती है महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकत है। महोत्सव में देश भर के 250 ले ज्यादा किस्म के आम प्रदर्शित करेंगे है। ये महोत्सव काली इतवार तक चलही। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर डहा ले प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी के प्रसारण काली संझा 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। ये कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के आकाशवाणी के सबो केंद्र एक संग्रह रिले करही। ये बखत के अंक मा सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के संबंध में जानकारी दे जाही। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घों फेर। नगरी निकाय और पंचायत चुनाव पर आज रथिया थम जही प्रचार। परंदीन 1 जून के हो ही मतदान। छत्तीसगढ़ में चलत जनगणना के पहलिया चरण के आज आखिरी दिन हरय। और हिंदी पत्रकारिता के 200 बच्छर पूरा होय के उपलक्ष्य में रायपुर प्रेस क्लब डहरले आज राजधानी रायपुर में पत्रकारिता गौरव मारतंड उत्सव के आयोजन करेगी। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं।
2: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। कर्णाटके कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे विधायक दलस्य नेतुः चयनाय उपवेशनं प्रवर्तते। म्यांमारस्य राष्ट्रपतिः मिन आंग ह्लाइंग इत्यसौ अद्य 5 दिवसीय भारत यात्रायै बिहारस्य गयां सम्प्राप्तः। तेन महाबोधि मन्दिरस्य दर्शनं कृतम्। ऋतु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् वायुमण्डलीय परिस्थितिभिः अनुमीयते यत् दक्षिण पश्चिम प्राविट आगामिषु 4-5 दिनेषु केरलस्य तमिलनाडोः च कतिपय भागेषु आगमिष्यति। अमेरिकायाः रक्षामन्त्री पीट हेक्सेथ इत्यसौ अवोचत् यत् यदि संधेः प्रयासाः विफलाः भविष्यन्ति चेत् अमेरिकायाः सेना ईरानं विरुध्य सैन्य कार्याचरणं विधातुं पूर्णरूपेण सन्नद्धा वर्तते। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलं निर्णायकचक्रे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। कर्णाटके कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे विधायक दलस्य नेतुः चयनाय उपवेशनं प्रवर्तते। निवर्तमान मुख्यमन्त्रिणः सिद्धारमैया वर्यस्य त्यागपत्रं राज्यपालेन थावरचन्द गहलोतेन पूर्वमेव स्वीकृतम्। उपवेशनस्य अनन्तरं अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी इत्यस्य सचिवः रणदीप सिंह सुरजेवाला वार्ताहरान् सम्बोधयिष्यति। अस्माकं वार्ताहरेण सूचितं यत् अस्मिन् उपवेशने डीके शिवकुमारः औपचारिकरूपेण विधायकदलस्य नेता चयनितो भविष्यति। इतः पूर्वम् अपि डीके शिवकुमारः राज्यपालम् अमिलत्। उपवेशनस्य अनन्तरं प्रशासनस्य रचनायै अपि सः राज्यपालाय प्रतिवेदनं दास्यति। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णवः अद्य नोएडायाः सूरजपुरस्थितस्य लोहुम इति समवायस्य भ्रमणम् अकरोत्। अयम् समवायः महत्वपूर्ण खनिनाम् उन्नत सामग्रीणां च उत्पादनं विदधाति। अत्रावसरे श्री वैष्णवः अवोचत् यत् लिथियम बैटरी स्थायी चुंबक इत्येतौ आधुनिक प्रौद्योगिक्यां महत्वपूर्णां भूमिकां निभालयतः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः परिकल्पना वर्तते यत् एतेषां निर्माणं भारते स्यात्। एतेषां प्रौद्योगिक्याः विकासः स्वदेशस्तरे भवेत्। श्रीवैष्णवेन उक्तं यत् अस्याः परिकल्पनायाः अनुरूपं लौहुम नामकेन समवायेन सफलतापूर्वकं जटिल प्रौद्योगिकी विकसिता।
3: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें हैं जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें हैं जो कि बहुत ही एक अच्छे बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
2: म्यांमारस्य राष्ट्रपतिः मिन आंग लाइंग इत्यसौ अद्य पञ्चदिवसीय भारत यात्रायै बिहारस्य गयां सम्प्राप्तः। तेन बोधगया स्थितस्य विश्व प्रसिद्धस्य महाबोधि मन्दिरस्य दर्शनं विहितम्। राष्ट्रपतिना तत्र बोधि वृक्षस्य अधः प्रार्थना अपि कृता। अत्रावसरे म्यांमारस्य राष्ट्रपतिना बकराऊर स्थिते ऐतिहासिके सुजाता मन्दिरे शिरं नत्वा बोधगया स्थितस्य बर्मी मठस्य यात्रा कृता। राष्ट्रपतिना सह वरिष्ठाधिकारिणः बौद्ध प्रतिनिधयः उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलम् अपि अवर्तत। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। ऋतुविज्ञान विभागेन उक्तं यत् वायुमण्डलीय परिस्थितिभिः अनुमीयते यत् दक्षिण पश्चिम प्राविट आगामिषु चतुष्पञ्च दिनेषु केरलस्य तमिलनाडोः च कतिपय भागेषु आगमिष्यति। अरबसागरे बंगालखात्यां लक्षद्वीपे कन्याकुमार्यां च प्राविट अग्रे समेधते। ऋतुविज्ञान विभागेन केरलस्य अष्टजनपदेषु अद्य प्रचण्ड वृष्टेः पूर्वानुमानं विधाय पीतवर्ण सञ्चेतना प्रसारिता। ऋतोः प्रतिकूलता कारणेन जून मासस्य तृतीय दिनं यावत् मत्स्यजीविनः केरल लक्षद्वीप तटयोः समुद्रे उद्यमं न कुर्वन्तु इति परामर्शः अपि प्रदत्तः। सेनाप्रमुखः जनरल उपेन्द्र द्विवेदी अवोचत् यत् भारतीय सशस्त्र बलानि उच्चस्तरीय सतर्कतायां विद्यन्ते। आवश्यकता विद्यते सति ऑपरेशन सिन्दूर 2.0 इति सिन्दूराभियानस्य द्वितीय चरणाय सन्नद्धानि सैन्यबलानि वर्तन्ते। पुणे नगरस्य खडकवासला स्थितायां राष्ट्रिय रक्षाकादम्यां स्नातकान् सार्धैकशततमस्य दलस्य पासिंग आउट परेड इति प्रयाणं सम्बोधयता जनरल द्विवेदिना उक्तं यत् सिन्दूराभियाने दृढसंकल्पेन प्रत्युत्तरप्रदानस्य क्षमता प्रदर्शिता। तेनोक्तं यत् एतत् अभियानम् इदानीम् अपि सन्ततं प्रवर्तते। जनरल उपेदी अवोचत् यत् सिन्दूराभियाने भारतीय सैन्यबलानां मध्ये तारतम्यम् अवलोकितम्। सममेव वयं भविष्यकालाय आत्मानं सन्नद्धं कुर्महे। सेनाप्रमुखेण स्नातकाः व्यावसायिकनेतृत्वस्य राष्ट्रसेवायाः च सर्वोच्चमानकान् यथावत् प्रवर्तितुम् आकारिताः।
4: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः प्रातः 11:00 आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे जनैः साकं स्वविचारान् प्रकटयिष्यति। कार्यक्रमोऽयं मासिक रेडियो कार्यक्रमस्य 34th प्रभागः वर्तते। अयं कार्यक्रमः आकाशवाणी दूरदर्शनयोः अन्तर्जालीय पटले प्रसारयिष्यते। एतदतिरिच्य कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालीय वेबफलकं समेत्य न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप इति तन्त्रांशे अपि उपलब्धः भविष्यति। प्रमुखः रक्षाध्यक्षः जनरल अनिल चौहानः अद्य नवदिल्लीस्थे राष्ट्रिय समर स्मारके सैन्यत्रयेण प्रदत्तेन गार्ड ऑफ ऑनर इति सम्मानेन सह सैन्य सेवाभ्यः निवृत्तिं स्व्यकरोत्। अयं समारोहः देशस्य सर्वोच्च सैन्याधिकारी रूपेण तदीय विशिष्ट कार्यकालस्य समापनस्य प्रतीकः अवर्तत। समर स्मारके पुष्पाञ्जलिं समर्प्य जनरल चौहानेन उक्तं यत् सैन्यत्रयस्य गार्ड ऑफ ऑनर इति सम्मानेन सह सेवानिवृत्तिः तस्मै अत्यन्तं सम्मानप्रदं वर्तते। जनरल अनिल चौहानः गतशताब्दस्य 81वें वर्षे भारतीय सेनायां सेवाम् अवाप्य 40 वर्षेषु देशसेवायां महत्वपूर्ण पदेषु कार्यम् अकरोत्। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम् जनरल अनिल चौहानस्य स्थानं स्वीकरिष्यति। अमेरिकायाः रक्षामंत्री पीट हेगसेथ इत्यसौ

मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:35 होने को हैं। लोकगीतों के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मेघनाथ पटनायक और साथियों का गाया हल्बी गीत।

लोकगीतों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मेघनाथ पटनायक और साथियों का गाया हल्बी लोकगीत। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तू अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
11: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
9: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
11: आकाशवाणी से।
7: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
12: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए आज रात थम जाएगा प्रचार, परसों 1 जून को होगा मतदान। छत्तीसगढ़ में चल रही जनगणना के पहले चरण का आज अंतिम दिन है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आज राजधानी में पत्रकारिता गौरव मारतंड उत्सव का आयोजन किया गया और प्रदेश में कोरबा, अंबिकापुर, गौरेला, पेंड्रा सहित अनेक स्थानों में मौसम में आया बदलाव, तेज हवा के साथ हुई बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत 1 जून को मतदान होगा। इन चुनावों के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज रात 12 बजे से प्रचार थम जाएगा, इसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर संपर्क करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नगरीय निकायों में कुल 240 और त्रिस्तरीय पंचायतों में कुल 392 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंच के 640 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया था। इस तरह से 1 जून को 107 पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। वहीं सरपंच के 15 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन सम्पन्न हुआ है, शेष 34 पदों पर मतदान होगा। इसी तरह जनपद सदस्य के 10 पदों के लिए 1 जून को मतदान होगा। नगरीय निकाय चुनाव के तहत पार्षद के कुल 71 और अध्यक्ष पद के 5 स्थानों के लिए मतदान होगा। नगरीय निकाय चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के माध्यम से और पंचायत चुनाव के लिए मतपेटी के माध्यम से मत डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। छत्तीसगढ़ में चल रही जनगणना के पहले चरण का आज अंतिम दिन है। 1 मई से शुरू हुई जनगणना के पहले चरण का 92% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। प्रदेश में जनगणना के लिए 48,742 ब्लॉक बनाए गए थे। हर ब्लॉक में औसतन 165 मकान शामिल हैं। इसी आधार पर प्रदेश में 80 लाख से अधिक मकानों का आंकड़ा सामने आया है। इन मकानों का पूरा विवरण पहली बार डिजिटल रूप में सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहा है। आज अंतिम दिन शेष बचे घरों तक जाकर प्रगण को ने आंकड़े अपडेट किए। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष 1 फरवरी से शुरू होगा। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आज राजधानी रायपुर में पत्रकारिता गौरव मार्तंड उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया की सकारात्मक आलोचना केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि प्रशासन और सरकार को भी आत्ममंथन तथा बेहतर कार्य की दिशा प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता ने राष्ट्र निर्माण और सामाजिक परिवर्तन में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है।
13: वैसे तो रायपुर प्रेस क्लब का एक बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है और पूरे छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता जगत में एक नया आयाम स्थापित करेगा ये उत्सव, और हमारे पत्रकारों के और अनुभव बढ़ेंगे। और पत्रकारों को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिनका हम लोगों को मार्गदर्शन मिलते रहता है।
12: कार्यक्रम को वित्त मंत्री ओपी चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर केजी सुरेश ने भी संबोधित किया। अतिथियों का स्वागत रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले वरिष्ठ पत्रकारों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश के सभी जिलों को 2,677 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय और राज्यांश राशि जारी की है। ये राशि एसएनए स्पर्श मॉड्यूल के माध्यम से जिलों को आवंटित की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य में हर दिन 1600 से अधिक पक्के आवासों का निर्माण किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि यदि किसानों को खाद की कमी है और इस संबंध में शिकायत मिलती है तो केंद्र सरकार इस कमी को दूर करने का हर संभव प्रयास करेगी। आज भिलाई प्रवास के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि टिकाऊ कृषि के लिए प्राकृतिक खेती एक बेहतर विकल्प है। केंद्र सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। श्री ठाकुर ने कहा कि जिन राज्यों ने अभी तक कृषि रोडमैप तैयार नहीं किया है वहां इसे प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाना चाहिए। इससे कृषि क्षेत्र के कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने की दिशा में प्रभावी कार्य किया जा सकेगा।
14: हमारा तो प्रयास रहेगा कि यहाँ कृषि रोड मैप बने और यहाँ जो किसानों को असुविधा अगर है तो वो शिकायत करे, माने हम लोगों को खबर कर, और हम लोग प्रयास करेंगे किसानों को खाद की कमी न हो। हाँ, उसकी समस्याओं को दूर भगाने का भारत सरकार भरपूर प्रयास करेगी।
12: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। सिख धर्म के 5वें श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के अवसर पर गुरुद्वारों में शबद कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही राहगीरों को भीषण गर्मी में शरबत पिलाकर गुरु के बलिदान का स्मरण किया जाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहादत दिवस पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है।
15: आज उनके शहादत दिवस के अवसर पर सत नमन करते हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और सिख समाज बहुत प्रारंभ से ही, जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान है, बड़े वीर होते हैं, साहसी होते हैं, अनेकों उदाहरण हैं।
12: प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजनबाई की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें हाल ही में एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों ने बताया कि इनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए है। तीजनबाई के अस्वस्थ होने की सूचना मिलने पर संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने दूरभाष पर तीजनबाई के परिजनों से बातचीत कर उनका हाल चाल जाना। इस दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य शासन तीजनबाई की चिकित्सा और आवश्यक सहायता के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ा है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अंबिकापुर, कोरबा, गौरेला, पेंड्रा मरवाही और कोंडागांव सहित कुछ जिलों में आज तेज हवा और अंधड़ के साथ बारिश होने के समाचार मिले हैं। कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड में ओलावृष्टि भी हुई है। वहीं कई स्थानों पर पेड़ और खंभे भी गिर गए हैं, जिसके कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। वहीं कोंडागांव जिले में भी तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। चिपावंड गांव में 2 दर्जन से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा लखनपुरी, बड़े सिलाटी और बड़े कनेरा में भी कुछ मकानों को नुकसान पहुंचने की खबर है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लगातार आ रही नमी के कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव हो रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल रमन डेका ने आज लोकभवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरियाबंद जिले के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के सहयोग से विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से संपादित करने पर जोर दिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अधिकारियों और कर्मचारियों को 6 लाख रूपये का निःशुल्क लाइफ टर्म इंश्योरेंस कवर मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में बैंक ऑफ इंडिया के साथ MOU करने की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विद्यार्थी उत्कृष्ट योजना के तहत चालू शैक्षणिक सत्र में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए 26 जुलाई को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। जशपुर के खारीबहार गांव में कृषि विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई कर अवैध उर्वरक भंडारण का खुलासा किया है। जांच के दौरान एक मकान से 342 बोरी ऑर्गेनिक उर्वरक बरामद किया गया है। जांजगीर चांपा जिले के चांपा और पिसौद में कृषि विभाग ने खाद दुकानों से 2600 बोरी से अधिक खाद जब्त कर इन दुकानों को सील कर दिया है। और रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में इन दिनों राष्ट्रीय आम महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए आज रात थम जाएगा प्रचार, परसों 1 जून को होगा मतदान। छत्तीसगढ़ में चल रही जनगणना के पहले चरण का आज अंतिम दिन है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आज राजधानी में पत्रकारिता गौरव मार्तंड उत्सव का आयोजन किया गया। और प्रदेश में कोरबा, अंबिकापुर, गौरेला, पेंड्रा सहित अनेक स्थानों में मौसम में आया बदलाव, तेज हवा के साथ हुई बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

तो बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुन तो सब पाए गांव कारी सियान सजन दादा दीदी और संग जोरिया भाई बहन मन के मैं दसमु करे से राम राम और हुनी संगे रेडियो कटा कटा बस लो नन नानी पिला मन बोले मचो बाटले खूबे खूबे मया। तो दादा दीदी मन आमे तो जानू से आम जो बस्तर बोलो ने सुंदर सुंदर संगे संगे काये सुंदर पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान काज बोले प्रसिद्ध आसे जसन की कोटक नाव कोटक गुण आसे बोला कहाँ है जैसे बस्तर बोलो तो था जंगल ज्यादा आसे बोला आम यहाँ देखूँ से जैसे पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान काज बोले प्रसिद्ध आसे आमी देखूँ से आगे ले यथा वैद गुनिया मन पीढ़ी दर पीढ़ी जड़ी बूटी दवाई औकत मन ने देश होत आरो कई एक ठान बीमारी मन के लाफी बल गुचास होते मन आमी देखूँ से सुनू से आम चो बस्तर बोलोन तो जंगल आसे आरु जंगल भितरे कई एक ठान दवाई औकत बना तोर जिनिस मन बोले जड़ी बूटी हो ना ले कहीं पाना हो डारा हो असन कई एक ठान आसे जड़ी बूटी मन जान लो लोग का जे जो खूब बीमारी मन के गुचा तोर काम है से ये भी बोले गांव गांव ने नानी सुनी बीमारी मन देखू से देसी दवाई औकत हिसाब ने ये मन लगन भाती ये मन लापी गुचा है सोत आमे देखू से बे जसन की कहीं बोले जूड़ हो खोखली हो जर हो पेट दुखा हो ना ले घाव बल हो रो असन मन के काय सुंदर मन कई एक ठान असन बीमारी मन के ये जड़ी बूटी देवन भाती गांव गांव हिसाब ने कई एक ठान असनी देखूँ से ये मन लापी गुचाए सोत हुनी हिसाब ने जसन की हम देखूँ से जंगल मन ने बल्ले जसन की लीम हो नाले तुलसी हो आंवरा हो नाले महुआ हो आरु बल्ले कई एक ठान असने बूटा मना से जो दवाई दारू बना तो वकत ने काम मने से और कई एक ठान हम देखूँ से जसन की कहाँ दें पहाँ चो कहाँ जसन की हाड़ा हाड़ी बल टूटू रलो ने उनको जोड़ तो हिसाब ने बोले देसी दवाई के लगाए सोत हम ये तो देखते हैं उनसे आगे ले जसन की ये बल जसन की आगे लोग मन जानते रहो तो उन पीढ़ी दर पीढ़ी चलते है ऐसे और हुन मन बल आप लोग सिखाए सोच घर परिवार जान काकी जान लो लोग मन के जाके मन आसे सीख तोर असन मन के सिखाउन भाती ये मन खूब ये मन काम बोले है सोत नानी सुनी बीमारी मन तो असने गाँव गाँव गाँव हिसाब ने ठीक हो ऐसे बोला उनके हमें देखूँ से जैसन कि आगे हिसाब ने चाहे आगे जैसन कि हम तो सुविधा नहीं रहे अस्पताल अस्पताल जाते तो हुनी हिसाब ने आगे बेद राजमन रहो गांव गांव ने जैसन कि गुनिया मन रहो असने कई एक ठान असने बीमारी सीमारी मन के मन लाभी गुचाओ दवाइयों को देवन भाती तो ये पहले हुन परंपरा ये पहले चले से और आगे ले तो ये देखूँ से कई एक ठान बड़े बड़े बीमारी मन जैसन कि पीलिया वाले हो असने दवाई देसी दवाई हिसाब ने झटके छाड़े से बोले तो वाले तो रही दादा दिन मन गोट आराम जो मोड़ा ने और बोले नगद जहाला मना से अल ए जहाला मन के सुनवा।

0: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
1: GST काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तगा टैक्स तुन और वेंट सरल बना कि तोड़ बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडो लेकिन 18% टैक्स की सितोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता HS कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वलेवा गाड़ी ना सामान तपोरो इंजे ओंडोई 18% टैक्स की सितोड़ इत बुताते यू सामान पाड़नोर और सामान तच इयनोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयन बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे इलेक्ट्रिक गाड़ी न पोर्रो मुन्नीटा लेकिन 1% टैक्स मंता नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मूंड चक्का ना गाड़ी 1% GST मौला तेने दोर किता अदेन के और सोबेर कम टैक्स ता गाड़ी बने मास मंता।
2: GST परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस ऊपरे एवर एक समान 18% कर लागे दे आगे ये 28% रहे। HS कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा करलो बिना ऑटो पार्ट्स ऊपरे एवर एक समान 18% कर होली से ये काम ले कल पुर्जा बनातो कंपनी अरु घेंतो लोग अरु सप्लायर्स चो चीपा गुचे दे एचई संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम भले सरल हो दे। बिजली ले चलतो बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर लागे दे ए मन्ने काही बदलाव नहीं होली से बिजली ले चलतो सपाय गाड़ी दुई चक्का बीती गाड़ी अरु तीन चक्का बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे। असन ले ये मन सपाय कम GST दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनू रह दे।
3: हाँ तो दादा दीदी मन ये तुरली नगद नगद गोट के सुन लो ये भी तो अदा अमे अम्बरलु गोटोक भेट वार्ता भीतरे और यथा घोटू लोअर हुल की परंपरा एमाना श्री सुखा सिंह और एमन संग भेट करता सीआर कश्यप तो अलबेरा नहीं करूँ सुनू एमन चो गोट के
4: जुहार। तो दादा दीदी मन ऐसा ना है कि आम्ही तो गाँव पारा ने रत लोग गाँव पारा हिसाब ने आमचो समाज हो ना हाले आमचो गाँव पारा चो लोग हो सब लोग सब चो लगे आपलो आपलो समाज लगे कई कसन नीति रीति रुसू मन बला से तो असनीची आमचो बस्तर ने बले कई लोग आसू कई समाज चो लोग आसू तो सपाय लोग चो आपलो आपलो परंपरा रीति नीति चलते ऐसे उसनीची गोटोक जाना चीना सपाय लोग तो जान सो गोटोक घोटुल घोटुल काय बीतिया घोटुल ने काय काय होय से सब गोड बात के आजी सरसराले जनुकलाए होय दे तो आम संगे आजी आम चो स्टूडियो ने अमरला सत तो दादा तो के सब लागे जुहार ना
5: जुहार दादा
4: जुहार। तो चो नाव और गांव चो नाव के सांगों देस्ता
5: मचो सुखा सिंह सोरी लिखे से सिरसी कला रहा है।
4: हाँ हाँ अच्छा सिरसी कला बोले कोंडा गाँव पड़े
5: कोंडा गाँव जिला पड़े दादा।
4: हाँ हाँ तो दादा ये सांगना जसन घोटुल जसन आम चो बस्तर ने लोग जान सो घोटुल काय बीती हो इसकी सांगुन देस।
5: हाँ ये में हम जो परंपरा घोटुल पहले ले एते इली से और होता ले हम जो लेखा लेखी जुहुआत मंदिरी नाचा नाचुआत बिहाव दंदबल होता ले खरुआत खरते नेवात नचावते बजावते नेवात और दुल्हा बनाए से तिकी दुल्ही हो दुल्हा हो लेखा हो लेखी हो भी होते ले नचावते नेवात लेखा मन मंदिरी बजे हुआत।
4: अच्छा
5: हाँ और लेखी मन गीत गावते चिटकोली बलसत चिटकोली बलसत उन हिसाब से बजावते जाऊआ।
4: अच्छा तो दादा ये ताने बोले कई कसन रुसुम मन होए से होती जैसन घोटुल संग विवाह जोन बोली विवाह करते होती तो ये ताने बोले असन रुसुम ने बोल कई गीत गोविंद मन बोल होए से ना।
5: हाँ गोविंद गीत बल गावते नहीं हुआ।
4: हाँ हाँ
5: उनमें उन लेखी मन गाऊआत लेखा मन मंदिर बजावते जाऊआ।
4: अच्छा
5: उन घरे नेते ताई घोटुल ले नहीं हुआ घरे हुदा
4: घोटुल बोल ले असन घर ले खिन बाहर हो तो सपाय लोग झूमे सो
5: मंडली समान
4: मंडली होय
5: हो तो मंडली
4: उतान ले जुन दुला दुली के उठान ले बिया करन बाती घर ने सो
5: ने उताले मतलब मतलब अन संगति लगले छंडा उन असन घरे ने सुन बियाव कर
4: सो। अच्छा अच्छा
5: तो ने तो नाई
4: ने तो दाज पर काई गीता से
5: हो गाऊ
4: गाऊ दे खिन तो के सुरता जा सुनाऊ दे।
5: हो रे रे लो यो रे रे ला रे रे लो रे ला रे रे लो यो रे लो रे रे रे ला सा रे ला रे ला रे ला।

0: ఇంకో పరమమారి గోటుల రోయ్ గోటుల రోయ్ బాబు పరమమారి గోటుల రోయ్ గోటుల రోయ్ బాబు సారే లారే లారే రే లాయ్ ఈ సన్ బజావతే నాచతే లేకా కే నివాత హౌ గరి నివాత ఔర్ నేవన్ గావచో సవాసియాన్ సజన వన్ జుహున్ హర్ది పిటాన్ కుట్టు బలాత్ बिहाव करुक चालू कर
1: अच्छा तो उनसे बाद में जब मांडो बोल हो ऐसे हल्दी चेगा तो बीती बोल हो ऐसे तो असन समय ने बोल का यहाँ से गीत
0: बोल हाँ हल्दी खुटून पर तेल बल छेगा हुआ
1: हाँ हाँ
0: जब उन पहला तेल बल सो बल उनसे सफाए नया
1: हाँ हाँ
0: हाँ तेल तो हल्दी तेल तो छेगे से शरीर लेकर लेके छेगा उनसे वो दल दाए चे बोल गाऊ बात
1: अच्छा
0: हाँ गीत गाऊ बात
1: हाँ हाँ तो उसन बेराज बोल का यहाँ से गीत खिनिक सुना हूँ
0: हाँ गाऊ बात
1: हाँ जब खिनिक
0: तेल चेगाव तो शुरू तेल चेगाव तो दाए के
1: हाँ
0: एक
1: हाँ
0: गीत
1: हाँ
0: गोंडी में गाए से और हम जो घोटुल चो बारे में सब आए उसने रे रे लो यो रे लो रे ला रे लो यो रे

ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಅಲುವಿನ ಆಲೆ ಕಿರ

ஆமி சிங்கப்பூரி சிஜு நீலு சே நாயக்கூரி.

Nani,

గుండాలురి నీకుని చూసే నడ వేళ ఎక్కడ నీ గుండాలురి నాలెకీరా.

दीदीमान काय सुंदर गीत के सुनतेरलु गुत गीत कुरिया बहन रला दयो अरुण मंचो संगवारी मन हाले घड़ी बार दखले जातो समयाबल होय से फिर समयाल जाऊरल फिर समयान फिर एउंदे जातो पूरे बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुनतो सब पाए गांव कारी सियान सजन दादा दीदी और संग जोरिया भाई बहन मन के मैं दस मुकरण से राम राम।

0: बस्तर के स्वर। अभी आप हमारा ये दैनिक कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7:30 हुए हैं।
1: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: जीएसटी काउंसिल बुधवार नेट इन घोषणा की तकी सरकार सीमेंट तपोर्रो जीएसटी मोला 28% तुन कम कीस इंजे 18% की सिक्ता टैक्स तगा कमी कित्ता आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम आयना उम्मीद मिंदे ई लेकिन संगमरमर इंदनद और ट्रेवकिन ट्रेवटीन ब्लॉक इतके ओंडलेकटा बंडकल तगवेन टैक्स दर 12% से गटे मास 5% की सित्तोड़ ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% जीएसटी लगे माता इदेन संगेन उसका चुन्नामता ईटा और बंडकल तीन जोड़ाई की अनबूता तेवेन मोला 12% से कम मास 5% की सित्तोड़।
4: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 cc तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
0: प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम फोन इन किसानवाणी।

0: हाँ तो आज सुनू पहले फोन कौन करे से।
1: हेलो फोन इन किसान वाणी।
2: हेलो
1: हाँ जुआर ना।
2: जुआर ना
1: कौन बलशीस ना।
2: बलिराम बोले ना।
1: बलिराम बलशीस
2: ओ
1: कहाँ लेना।
2: ए लोंडी गुड़ा गड़े आला।
1: लोंडी गुड़ा गड़ी आले
2: ओ।
1: अच्छा तो वाले बलिराम भाई तक तू तो फोन कर लीस कहीं बल तुझ सवाल आस्ते जाक फोन कर लीस ने।
2: ओ ना
1: तो तक आज जो हम चो आकाशवाणी ने ए हम जो आज जो विशेषज्ञ वैज्ञानिक आद बोलू भी ने तो ये आत एम चो नाव है मैं तुझ संगे की परिचय कराऊ दे। तो ये आत डॉक्टर राहुल साहू ये याद कृषि विज्ञान केंद्र कृषि प्रसंस्करण वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र उमरावन जगदलपुर वैज्ञानिक आत ने। तक बोली राम भाई तो वाले तुझे क्या सवाल है ना आजी जो
2: मिलेट बीती ना कसम बीती है।
1: और मिलेट जो तू क्या जानू आशीष
2: उन चो खेती।
1: अच्छा तो ये मिलेट फसल जो काय काय बोलुआ था और कसन कमन धमन करता है सब आई गोट तू जानू आशीष ने।

0: बिल्कुल जानवा बलिराम भाई तक हम से संग हम साहब जो वैज्ञानिक बसला से एमन जो ले इस तो जो सवाल छ जवाब के ये जानवा तो तक साहब हम से जन बलिराम भाई सवाल के तो सुन ला सती तो एमन जानुक चाहत कि मिलेट फसल काय के बुलवात अरे चो कमानी धमानी करते चो खेली गोट के सागा बोलते एमन चो सवाल है।
1: नमस्कार बलिराम जी, जैसा
2: कि नमस्कार सर,
1: नमस्कार नमस्कार, जैसा कि आपको मेरा परिचय दिया है कि मैं कृषि विज्ञान केंद्र कुमरावन फांड में विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि प्रसंस्करण एवं खाद्य अभियांत्रिकी के पद पर कार्यरत हूँ, है ना। तो जैसा कि आप कहते हैं कि भाई हमारा जो केंद्र है, इकाई है, यहाँ पे हम विभिन्न फसलों की उन्नत तकनीक की जानकारी देते हैं किसानों को। आप कभी पधारे होंगे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में, है ना, तो ये जानते भी होंगे। तो जैसा कि आज का जो विषय है कि हमको लघु धान्य मोटे फसल के बारे में जानकारी रहे, ठीक है। तो आप तो भाई किसान भाई है तो, है ना, अच्छे से जानते भी होंगे कि भाई लघु धान्य फसलों में क्या क्या चीजें आती हैं। तो पहला तो हो जाता हमारा कोदो, कुटकी और रागी, है नी। तीन फसलें हमारी प्रमुखता है जो हमारे बस्तर जिले में उपजाई जाती है, ठीक है, जो हमारे मोटे फसल में है, ठीक। अगर हम इसके एरिया और रकबा की बात करें तो हमारे बस्तर संभाग में, है ना, लगभग लगभग 17,631 हेक्टेयर में इसका उत्पादन किया जाता है। हमारी ये प्रमुख फसलों में से एक है, जो पहली फसल तो हमारी धान की होती है, फिर मक्का की होती है, और तीसरी हम फसल जो प्रमुखता है कह सकते हैं कि भाई ये हमारी हमारी मोटे अनाज की है, लघु धान्य फसलों की है। और हमारा बस्तर इमली के बाद लोग कोदो कुटकी रागी में भी प्रख्याति प्राप्त है, है ना, जैसे कि आप जान रहे होंगे। और हमारे छत्तीसगढ़ शासन में पहला हमारा छत्तीसगढ़ राज्य हमारा ऐसा राज्य पहला हुआ जिन्होंने सन 2023 में इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित किया था, आपको पता होगा। तो ये कोदो और कुटकी रागी तो हमारे किसान भाई उपजाते ही हैं। इसकी प्रमुख विशेषता तो आप जानते हैं कि ये कम पानी की आवश्यकता इसको उपजाने में होती है, है कि नहीं, जैसा कि आप जान रहे होंगे। पहला फायदा
2: अभी जो रेट का सुना है,
1: रेट अभी इसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो हमारे सरकार ने जो घोषित किया है ना, रागी का है 4,290 रुपए क्विंटल, है ना, ठीक। कोदो का है 3,200 रुपए क्विंटल, समझ रहे हैं, और कुटकी का हमारा 3,350 रुपए प्रति क्विंटल का ये हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य शासन द्वारा घोषित है, ठीक। तो इसमें अगर कोई किसान भाई इसको उपजाता है, भी वर्तमान में जैसा कि मैं बस्तर की जो समस्याएं हैं उसको मैं आपके सामने जैसे हम बात करेंगे, तो किसान भाइयों को इसका कीमत नहीं मिल पाता है कि नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ, है नहीं। लोग तो इसको मतलब औने पौने दाम में बेच दे रहे हैं, कोई 30 रुपए में बेच रहा है, कोई 35 रुपए में बेच रहा है कि नहीं। तो इसको क्या मिल, हमको क्या लागत हमारी ज्यादा है, मतलब हमको हमारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। तो प्रयास अभी हम ये करेंगे, जैसे कि आपने सवाल किया कि भाई हम इसको किस तरह से कमा सकते हैं या फिर इसका क्या फायदा हमको है, है ना। तो इसका भाई हम सलाह तो यही देंगे कि भाई अगर कोई किसान भाई किसी भी अनाज को उपजाता के खाने के लिए, है कि नहीं, तो जब तक हम उसको फसल को काटने के बाद उसको खाने लायक रूप परिवर्तित नहीं करेंगे तो वो हमारे फसल किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो सलाह तो यही दूंगा कि भाई जैसे कि हमारा एक उदाहरण देता हूँ, अगर हम धान बेचने जाएं तो धान का कीमत कम रहेगा और चावल का कीमत अधिक रहेगा जब हम उसको कूट के ले जाएंगे, बात की नहीं है। तो उसी प्रकार हम कोदो, कुटकी और रागी को भी अगर प्रसंस्कृत करके खाने लायक उत्पाद में परिवर्तित करके अगर आसपास में बेचे या शहरों में बेचे, है ना, तो हमको ज्यादा से ज्यादा अधिक लाभ मिलेगा, है ना। तो इसके लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में प्रसंस्करण इकाई की स्थापना भी की गई है, जहाँ पे हम विभिन्न प्रकार के मूल्य संवर्धित उत्पाद हम बनाते हैं, है ना। तो एक फायदा हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से ये मिल सकता है, जिस तरह से गांव में धलर मिल की स्थापना की जाती है कोई उद्यमी, और आसपास के किसान भाई उसको जाकर के अपना धान कुटा करके ले आते हैं एक निश्चित राशि करके, तो हमारे जिले में इस प्रकार की सुविधा हम किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र में, जिसमें कि हम उनसे केवल वो अपना उत्पाद लाएं कोदो कुटकी रागी को और वो उसको प्रसंस्कृत करके खाने लायक फॉर्म में बढ़िया अच्छे से पैकेजिंग करके वो उसको ले जाए, जिसके बदले में हम उनसे कुछ जो निर्धारित राशि है जो शासकीय दर पे, जैसे बिजली का बिल वगैरह और कुछ श्रम लागत में जो मजदूरों की लगती है बस वही हम राशि लेते हैं। तो इस प्रकार से हम कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को, आप जैसे किसानों को, मेहनती किसानों को हम लोग ये सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। साथ ही साथ अभी बाजार में जैसे आप लोग उत्पाद को जैसे बेचना चाहेंगे तो भाई होता क्या है कि जब तक उत्पाद की पैकेजिंग क्वालिटी मतलब उसका जो बाहरी है ना अच्छे से नहीं हो, उसमें प्रोडक्ट क्या हम उसमें बेच रहे हैं उसके गुणधर्म के बारे में जानकारी नहीं होगी तो ये बिकता नहीं है बाजार में, है कि नहीं। देखेंगे बाजार में जो गांव में अभी महिला लोग जो बेचते हैं टोकरी वगैरह में खुले में बेचते हैं, है ना, लेकिन शहर के आदमी नहीं जाएंगे वहां पे, है कि नहीं। लेकिन हमको शहर में बेचना है तो हमको उसको ब्रांडिंग, पैकेजिंग, आजकल एक FSSAI का लोगो मार्क भी होने लगा है ना, तो हम उसमें किसानों को मदद करके हम वो लाइसेंस दिलाने में भी सहायता प्राप्त करके उनको उत्पाद को हम पैकेजिंग में कन्वर्ट करा के अच्छे दर पे उच्च दर पे उसको हम प्रसंस्कृत करके बेचने के लिए अनुशंसित करते हैं और जिसकी सुविधा हम यहाँ पे देते भी हैं।
2: बीज भी कृषि ऑफिसर?
1: हाँ, बीज भी उपलब्ध है। अभी कोदो कुटकी और रागी के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा विकसित उन्नत किस्मों भी हैं, जिसमें हम छत्तीसगढ़ कोदो 2 और छत्तीसगढ़ कोदो 3, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ कोदो 2 कुटकी 2 और छत्तीसगढ़ कुटकी 3 और रागी की बात करें तो CG रागी 2 और सोन कुटकी जैसे हमारे पास जो लघु धान्य फसलों के अनाजों के किस्मों के बीज उपलब्ध है हमारे पास। ये कुमरावन परिसर में आपको कृषि विज्ञान केंद्र की सहायता से या फिर कृषि में महाविद्यालय में संपर्क करके, या तो फिर अगर वहाँ भी अगर आप लोग संपर्क नहीं कर पाते हैं तो आप लोग बस्तर कोकामुंडा में छत्तीसगढ़ राज्य बीज निगम का तो जान ही रहे हैं ना, जिससे आप लोग बीज लेकर के आते हैं धान का मक्का का, है ना, वहाँ भी आप लोग संपर्क करके उन्नत किस्मों के अच्छी प्रजाति के बीज आप लोग खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को बीज उपलब्ध हो जाएंगे जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अधिक जानकारी जैसे आप लोगों को कुछ तकनीकी जानकारी जैसे फसल प्रसंस्करण से संबंधित मैंने जानकारी दी है ना, तो ये चाहे तो आप लोग हमारे कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में आकर के ना, जो शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है ये सुविधा है ना कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, तो इस चीजों का भी आप लाभ ले सकते हैं। जैसा कि मैं अभी बता रहा था पैकेजिंग की बात, तो किसान भाई जागरूक नहीं होते कि भाई हमको किस प्रकार की पैकेजिंग मटेरियल लेना है ना, कैसे उसको बाजार में शहरों में बेचने के लायक अच्छा अट्रैक्टिव लुक दे करके उसको डिजाइन करके जो आजकल कंप्यूटर के माध्यम से होता है वो पैकेजिंग डिजाइन करके हम उसको बेचने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं और साथ में साथ तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। तो आप आमंत्रित है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में, आइएगा जरूर।
2: ठीक है साहब, हम ये देते
0: हैं बलिराम भाई, तुमके तुमचे सवाल जवाब मिली होती ने अले जुआर थे ना
2: जुआर ना जुआर।
3: सुना सुना सुना किसान भाई बहन मन सुना सुतुरच गोड,
4: फसल बीमा करतो काजे हमेशा सुरता रखा गोड,
3: अकाल पूर लेरा धुका जसन अड़नाप चिपा आरु कीड़ा थापा रोग राई ले फसल बर्बाद होन गेले, बीमा तुमचो संग दे दे,
4: फसल बर्बाद हो नहाले कम हो उपजन, मेरे दे बीमा ले तुमके धन,
3: सरकार तुम चुका जे कर ली से कैक फसल बीमा योजना आन ली से,
4: भारत सरकार चो फसल बीमा योजना हिसाब ने अधिसूचित खातो फसल जसन धान गहूं तिल आरु बरकार बीती पाक फर फसल आरु बेपार बीती फसल जसन डांडा नडेर मंचो बीमा होय से बीमा किस्ती पटा तो काजे सरकार बाटले पैसा कौड़ी चो सहायता मिरे से।
3: किसान भाई बहन मन फसल बीमा योजना चो लाभ धरा, आप लो ये तो समय ने हो तो नुकसान चो पूर्ति करा,
4: फसल बीमा योजना काजे भेटघाट करा आप लो जिला चो कृषि अधिकारी कृषि सहकारी समिति नाहले लगे चो बैंक शाखा ले,
3: अगर जानकारी काज फोन करा किसान कॉल सेंटर के राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर आए 1800-1800-1551 नाहले लागान करा www.farmer.gov.in।
4: फसल बीमा योजना चो संग जीवना न्याय दे हरीक उदीम चो रंग।

0: हॅलो
1: हॅलो
0: हॅलो फोन इन किसानवाणी
1: आकाशवाणी जगदलपूर.
0: हा दादा, आकाशवाणी जगदलपूर मी लगलीस जुहार.
1: राम राम. राम राम.
0: राम राम दादा. तो तुम कहाल बलसा दादा, काय नाव तुमचं?
1: मोचं नाव योगेश ठाकूर आहे.
0: कहाल दादा?
1: गोकापाल.
0: अच्छा.
1: जानकारी धरतो रे.
0: हा तो योगेश दादा, अल देखा तो आज हम आकाशवाणी ने हम जो आजी जो विशेषज्ञ वैज्ञानिक भाई यार याद डॉक्टर राहुल साहू और जन विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि प्रसंस्करण वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र उमरावन जगदलपुर ले. तो आज जो मिलेट फसल चो जानकारी देऊ का जे बन आज इलास होत. तो आज काय सवाल आहे दादा?
1: सवाल आमचे यही रहे की मिलेट फसल हम एक दो यार खूबे एडवर्टाइजिंग वगैरह ये आरियो मन ले सुनते रहूं. हां, तो ये मिलेट फसल धर लो में आम के धान मक्का के छानून भाती मिलेट फसल में अगर हम खेती किसानी करूं तो हमके खाय फायदा हुन फसल और ये फसल में हमके काय फायदा मिले थे ये थोड़ी जानकारी हम करतो रहे.
0: अच्छा अच्छा, बिल्कुल जवाब धरवा. तुम जो सवाल जो मतलब ये आए बोलू की जैसे धान पान कमा उसने
1: धान पगाओ हाँ
0: तो मिलेट फसल कमा ले और ये काय हमके लाभ मिले थे पलते
1: लाभ मिले थे. हाँ, अरे की कहा ने उन बिकुआ का रागी तो हम मंडिया कमाऊ पर एक ही मार्केट में घरे खातो मार मार्केट में कोनी डगरालो में देतो भी थी. लेकिन एक आम के बड़ा मंडी नहीं आई की कहा न्यून बिकुआ एक फसल में कसन कर लो में ज्यादा उत्पादन कर सकुआ ये जानकारी थोड़ा से
0: गोट के जान तो रहे ने
1: जान तो रहे. हाँ,
0: जो प्रश्न है सवाल है बोलो मैंने.
1: हाँ
0: तो बिल्कुल तुम जो सवाल जो जवाब के धरवा आले डॉक्टर साहब जो योगेश भाई जो सवाल के सुन लास होती तो ये जो आले सवाल के जवाब के दू.
2: नमस्कार योगेश जी.
1: नमस्कार. नमस्कार सर.
2: मैं कृषि विज्ञान केंद्र जगदलपुर कुमरावन फार्म से डॉक्टर राहुल साहू बोल रहा हूँ. है ना?
1: हम जी जी.
2: पाल बोल रहा मतलब करंजी के आसपास के एरिया से ही है ना?
1: मैं इधर आसना क्षेत्र में रह.
2: आसना तेरे. अच्छा चलो कोई बात नहीं. है ना, तो जैसा कि आपको मालूम है कि मैं कृषि विज्ञान केंद्र से हूँ और ये कृषि विज्ञान केंद्र संस्था एक ऐसी संस्था है जो किसानों के लिए तत्पर रहती है और किसानों के लिए कृषि तकनीक की जानकारी देती है ना.
1: हाँ, हाँ, हाँ.
2: ये आपका सवाल था कि भाई कोदो कुटकी या रागी फसल हम जैसे लगाएंगे तो उससे हमको क्या फायदा होगा.
1: हाँ.
2: तो आपको तो पता है कि भाई
1: फायदा तो और फसल उत्पादन कम होता है हम लोग को.
2: हाँ.
1: और मार्केट हमको मिलता नहीं है तो अपन उसको खेती करें अच्छे से तो ज्यादा उत्पादन हो और हमको उसके मार्केट कहाँ अपन तो करे तो हमारा.
2: हाँ.
1: व्यवसाय हमारा बढ़े.
2: चलो ठीक है ना. तो सबसे पहले तो भाई आप जो बोल रहे हैं कि भाई कोदो कुटकी का उत्पादन कम होता है ना
1: जी.
2: मैं इसको थोड़ा सा मतलब कोदो कुटकी हम जो उगा रहे हैं क्यों उगा रहे हैं ना
1: जी.
2: क्या पोषक विशेषताएं इसके बारे में छोटा सा प्रकाश डालूंगा. ठीक है.
1: हाँ.
2: आपको तो विदित होगा कि वर्ष 2023 में
1: जी
2: छत्तीसगढ़ शासन इवन भारत सरकार द्वारा
1: हाँ
2: अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया गया था. कारण
1: जी
2: पता है आप?
1: जी. नहीं नहीं पता था.
2: उस
1: वैसे बस सुनना ही आते रहता है मिलेट में ये फायदा है मिलेट की खेती में ऐसा करते हैं मिलेट के उत्पादन बहुत होता है.
2: एक्चुअली क्या है जब 2023 में जब अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया गया भारत शासन द्वारा तो उसके पीछे का कारण ये था कि भाई आजकल लोगों में या बच्चों में बोलना चाहिए कुपोषण की कमी कुपोषण को मिल रहा है. ठीक. उच्च गुणवत्ता युक्त पोषकीय आहार शहरों तक उपलब्ध खा रहे हैं. चावल खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं तो उनको विभिन्न प्रकार के रोग अंदर ही अंदर घेरते जा रहे हैं. जैसे शुगर बीमारी बोलते हैं ना.
1: हम्म.
2: तो कमजोरी तो बस्तर संभाग में भाई छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग को भाई ऐसा हमारा धन धान्य से भरपूर्ण क्षेत्र है और हमारी बस्तर की पावन धारा को नमन है मानता दंतेश्वरी की कि भाई बस्तर ही ऐसा राज्य है जहाँ मतलब क्षेत्र है जहाँ पे लघु धान्य फसलों का उत्पादन किया जाता है. खास बात क्या है पता है? सबसे पहला तो भाई रागी फसल में कोदो की फसल में ये जो है ना शुगर जो पेशेंट होते हैं ना जो शहरों में आजकल बहुत पाए जा रहे हैं ना शुगर
1: दे, दे.
2: उनको तो उनको चावल वगैरह खाने की सलाह नहीं दी जाती है. ठीक. तो इसका जो हमारा जो दूसरा रूप है हमारा है ना जो दूसरा जो किसान उनको जो किसान भाई बोलता हूँ मैं हमारे जो शहर में जो डॉक्टर जो सलाह देते हैं कि वो लघु धान्य फसलों को खाने की सलाह देते हैं. कारण क्या है भाई? देखो आप तो बता रहे थे कि इसको उपजाने से ज्यादा फायदा नहीं है लेकिन इसके भाई मेडिसिनल उपयोग ज्यादा काफी है ना. पहले मैंने बताया कि भाई ये मधुमेह के रोगियों के लिए काफी वरदान की तरह साबित है. लोग आप अगर इसको उत्पाद को अगर आप अच्छी क्वालिटी में उपजा करके बना करके पैकेजिंग ब्रांडिंग करके बेचेंगे तो शहर से लोग दौड़ते हुए आपसे आएंगे और एक बार आपसे अगर संपर्क स्थापित हो गया तो आपको फोन पर ही ऑर्डर देने लगेंगे।
1: जी जी
2: पहला कारण मैंने
1: वही हम लोग मार्केट नहीं मिलता। मैं पिछले सीजन में भी आरियो मैडम मेरे को दी थी 2 पैकेट रागी, तो मैं मक्का के किनारे किनारे पूरे खेत में लगाया था 4 एकड़ में, फसल हुआ भी बस जो भी रहा घर में अपने चित परिचित तो के साथ।
2: मार्केट नहीं मिलता बोलने से एक उदाहरण देता हूँ भाई, धान खरीदने कोई नहीं जाएगा है ना,
1: हाँ,
2: लेकिन चावल खरीदने हर कोई जाएगा।
1: हाँ जी जी
2: है ना, तो पहला पॉइंट क्या मैं जो बोलना चाह रहा हूँ समझ रहे हैं यहाँ पे बात, तो उसको प्रसंस्कृत करके खाने लायक उत्पाद में परिवर्तित करने की।
1: हाँ
2: इसकी गुणवत्ता तो मैंने बता दी, शुगर पेशेंट के लिए लाभदायक।
1: जी जी नहीं
2: रागी में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में अभी तक जो अध्ययन हुआ है उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है ना, अनाज है ना, तो 344 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, मतलब ये सोच लो दूध में भी इतना नहीं पाया जाता है कैल्शियम जितना कि हम रागी फसल में ले रहे हैं। तो ये रागी का काम फसल कैल्शियम का काम क्या है पता है, कैल्शियम हमारे दांतों का निर्माण करता है, हड्डियों के लिए सहायक होता है, मतलब जो आजकल जो कमजोरी जो या फिर तो में जो झुक के हड्डी बेंड होने की जो समस्या है वो इसी की कमी के कारण होती है। दूसरा फायदा ये हो गया हमारा कि भाई हमको कैल्शियम अधिक मात्रा में मिल रहा है ना, प्राकृतिक कैल्शियम, ऐसा नहीं कि भाई हम टैबलेट खरीदा दिए जैसे गर्भवती को कैल्शियम और विटामिन डी का टैबलेट खिलाते, ये प्राकृतिक नेचुरल है जो हमारा शरीर अधिक से अधिक अवशोषित होता है। अब जैसा कि मैं बता रहा था कि भाई हमको पात की कीमत नहीं मिलती या डिमांड नहीं है, तो मैंने कहा कि भाई धान लोग नहीं खरीदने के लिए पूछेंगे जब चावल खरीदेंगे, तो मेरी सलाह ये है ना कि भाई रागी या कोदो कुटकी जैसे उपजा रहे हैं तो उसको प्रसंस्कृत करके खाने लायक दूसरे उत्पाद में उसको परिवर्तित करके आप बेचे, ठीक है। अगर इसकी अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे पास आपके जिला में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापना की गई है, यहाँ पे हम यही काम करते हैं कि भाई कोदो और कुटकी के प्रसंस्कृत उत्पाद बना करके हम उसको अट्रैक्टिव, मतलब किस तरह से उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स और पैकेजिंग में अट्रैक्टिव करके हम उसको मार्केट में बेच रहे हैं। नहीं मानोगे कि हमारे बस्तर में डिमांड हमारे कोदो कुटकी रागी के लिए प्रसंस्कृत उत्पाद चावल है, मल्टीग्रेन और रागी माल्ट, इसका उत्पाद की डिमांड आ रही है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि भाई आप रागी को परिवर्तित करेंगे अनाज आटा में, है ना। शहरों में क्या हो रहा है कि भाई लोग केवल गेहूं आटा का ही रोटी खा रहा है कि नहीं, उनको अब हमने क्या किया यहाँ पे जब रिसर्च शोध हुआ तो हमने गेहूं आटे के साथ घी का भी आटा मिक्स कर दिया।
3: हाँ, मार्केट में वही ओपन लगाते हैं एकड़ दो एकड़ में, उसके बाद उसके उत्पादन कम रहता है, उसको अपन फिर मिल पतल बना के लिए बेचते हैं, ऐसे ही मार्केट में दे देते हैं, उससे क्या थोड़ा सा हम लोग को प्रॉफिट कम मिलता है।
2: यस यस, तो वही है, उत्पाद को अगर प्रसंस्कृत करके आप बेचेंगे तो आपको कीमत ज्यादा मिलेगा ना। अभी तो सरकार ने भी इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ किया है।
3: हाँ, समर्थन है।
2: इसमें रागी
3: मार्केट समर्थन
2: 4,090 रुपए
3: समर्थन मूल्य तो घोषित है इसे पर, लेकिन मार्केट में इसके लिए बिक्री का कोई ऐसा कोई वो नहीं है, तो मैं कोचिया लोगों को देते हैं बाजार हाट करने वाले को,
2: कोचिया लोग को आप लोग डायरेक्टली दे रहे हैं।
1: जी जी,
2: आप लोग सीधा राम कच्चा माल दे रहे हैं ना,
3: कच्चा माल।
2: आप इसको अगर थोड़ा सा मेहनत और करें, घर में आप ऐसा सेटअप बनाए, उद्यमी बने, एंटरप्रेन्योर बने,
1: जी जी जी,
2: ताकि इस प्रकार के उत्पाद को परिवर्तित करके जब तक उसको नहीं,
1: इस टाइप का काम करने के लिए कोई अनुदान वगैरह का योजना है क्या?
2: अनुदान अभी मिलेट से संबंधित तो नहीं है, लेकिन हमारे कृषि ज्ञान केंद्र में इसके उत्पादन से संबंधित मतलब प्रोत्साहन के रूप में हम लोगों को निःशुल्क फसल प्रदर्शन प्रदान करते हैं।
1: जी जी,
2: उन्नत किस्म के चयनित करके किसानों को खेती की उन्नत तकनीक जानकारी देते हुए उनको उत्पादन का तो सलाह।
3: हम तो 12 महीना खेती करते हैं सर।
2: बहुत अच्छी बात है,
3: एक फसल खत्म हुआ तो दूसरा में तैयारी होता है, तो अपन उसी को डायरेक्ट मक्का छोड़ेंगे, तो अभी मक्का ऐसे बेच देंगे।
2: प्रयास करेंगे और मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि कृषि विज्ञान केंद्र में, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र मुरौन परिसर में आपका, अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की और संबंधित समस्याएं होंगी बिलेट से संबंधित, तो वो आप हमारे कार्यालय में आकर के संपर्क कर सकते हैं, जिसमें तकनीकी सहायता जरूर प्रदान करेंगे।
0: हाँ, तो तुमके तुमसे सवाल जवाब मिरली होती ने?
3: हाँ सर, जवाब मिरली।
0: तो आले देखा तुम फोन कर लास, तुम संग गोड बात होली, अच्छा लाग। आले खूबे खूबे जुआर देव दादा।
1: जुआर जुआर खूबे खूबे खूबे खूबे धन्यवाद जुआर।
0: जुआर
4: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोजे शनिवार के सांझ बेरा 7:30 ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782222666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
0: हेलो, फोन इन किसानवाणी।
5: हेलो किसानवाणी।
0: हाँ जोहार दादा।
5: हाँ जोहार।
0: हाँ कौन बल सा दादा?
5: हाँ मैं बल सेना ये कोंडा गाँव से।
0: कोंडा गाँव कौन बल से दादा?
5: जित्रू राम।
0: जित्रू राम। जित्रू दादा देख तुम फोन कर लहास ने तुम जो कहीं बल सवाल आसे भी।
5: हाँ।
0: तो देखा दादा आज तो ना हम जो आकाशवाणी स्टूडियो ने।
5: हाँ।
0: ये कृषि विज्ञान केंद्र कुमरावण ले जो वैज्ञानिक ये विशेषज्ञ भाई याद ये याद देखा डॉक्टर राहुल साहू और ये जो विषय जो मन जानकार आते याद विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि संस्करण वैज्ञानिक तो देखा आज तुम जो क्या सवाल है ना दादा?
5: हाँ मुझे सवाल है ये फसल ने काय खोदो को की मरियार यही है क्या?
0: अच्छा ये पेट फसल
5: तो खेती ये जो खेती की काय जे कसन के भूमि लागे दे। और ये फसल जो बाजार में मार्केट कसन आते और इन्हें इसमें काय बल भी थी ताकत मिले।
0: अच्छा ये 3 टन सवाल है तुम जो बोलोगे ने कसन भूमि ने कमाले नगद फसल हो दे एक बीघाजी कहाँ हुए थे और एक खाद ले पियोले हमके काय हमके देहन जो लाभ मिले से जानू चाह सा। हाँ बिल्कुल है जो तुमके सवाल से जवाब के धर्मा हम जो साहब ले तो वाले डॉक्टर साहब हम जो जोन कोंडा गांव जोन किसान भाई याद करला से मिलेट फसल के कमाले काय हमके देह काय फायदा मिले से एक बिकले कहाँ नगद जो लाभ मिले थे और तीसर रहे कि एक कमात का कसन माटी कसन भूई ने कमा लीजिए वह उत्पादन नगद फायदे बोलते हैं मंचो सवाल है।
2: जी नमस्कार जित्रू राम जी है ना?
5: हाँ नमस्कार जी,
2: मैं कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर राहुल साहू ना।
5: अच्छा जी,
2: आप कृषक भाई है जब जुड़े हुए हैं पहले जब हमारा कोंडा गांव जिला अलग नहीं था बस्तर में ही था तब कृषि विज्ञान केंद्र जरूर अवश्य पधारे होंगे ना।
5: अच्छा जी,
2: तो जैसा कि आज लघु धान्य फसल मोटे फसल की बात हो रही है ना, छोटे मोटे फसल की कोदो कुटकी और रागी है ना, तो पहला तो मैं आपको इसका फायदा ये बताना चाहूंगा कि भाई जो आपको जानकारी भी होगा कि ये जो फसल है ये मधुमेह रोगियों के लिए ज्यादा प्रिफर किया जाता है कि नहीं?
5: अच्छा।
2: दूसरा इसमें पोषक तत्व की मात्रा प्राकृतिक रूप से अधिक होती है ना, जैसे कि कैल्शियम में कैल्शियम की मात्रा रागी में सबसे अधिक होती है। ठीक है, आप कि पोषक तत्व जैसे प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट है ना खनिज लवण ये सब अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के विकास के लिए लाभदायक है। ठीक है, इसी कड़ी में रागी में जो कैल्शियम होता है वो हमारे शरीर में दांतों और हड्डियों के निर्माण में काम आता है। ठीक, तो ये दो विशेषताओं के कारण ये इसका मार्केट में डिमांड अधिक है, लेकिन बस जब आप इसको उत्पाद को प्रसंस्कृत करके खाने लायक फॉर्म में अच्छे पैकेजिंग करके बाजार में उपलब्ध कराएंगे।
5: इसके लिए जमीन कैसे चाहिए? कैसे
2: जमीन खेती के लिए कर रहे हैं? तो अभी क्या है हमारे जमीन की खेती के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके लिए हमको आपको ऐसा जगह नहीं लेना गभार जहाँ पानी ठहरता है ना। आपको पता है रागी कोदो कुटकी की फसल है जो ये कम पानी में भी जी सकते मतलब उपज जाते हैं टिकरा में। तो इस प्रकार के भूमि का चयन करना है हमको है ना, ताकि पानी वहाँ पे ज्यादा ठहराव ना हो। लेकिन ये चूंकि हमको इस फसल को उपजाने में काफी मतलब अन्य फसलों की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है तो ये आसानी से उपज जाता है। ठीक है, अब फसल तैयारी की बात कर रहे थे तो जैसा कि मैं बताऊंगा कि भाई खेत की तैयारी भी अब जब भी करेंगे है ना तो खेत को अच्छी तरह से जुताई कर देंगे है ना। जुताई करने के बाद रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरा बना ले है ना। भुरभुरा बना के बनाने के बाद जब हमारा खरीफ मचाई कर देंगे जब हमारा बरसात में मचाई करने के बाद आप उसमें रोपाई कर लें। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही हम सलाह देंगे कि भाई आप छिड़का ना करें जब फसल उपजाने के लिए आप जो लगाएंगे ना तो छिड़का ना करें। आप कतार से कतार अगर फसल का उत्पादन करते हैं तो आपको मिलेगी। और साथ ही साथ उसमें जो फसल प्रबंधन है ना, जैसे कुछ कीड़ा बीमारी आ गया, खाद डालना, तो उसके लिए आपको शस्य क्रिया करने में भी सहायता मिलती है।
5: रोपाई करके करना?
2: हाँ, रोपाई करके करेगा, है ना। रोपाई की सलाह हम इसीलिए देते हैं कि भाई आपको शस्य क्रियाओं में भी सहायता मिलेगी, है ना। और साथ ही साथ अगर हम रोपाई करेंगे तो जिस तरह से हमको क्या है, हमको क्या है, जैसे पोषक तत्व की आवश्यकता होती है ना, जैसे खाने के माध्यम से जैसे हमको मिलता है, उसी प्रकार से मिट्टी से पौधों को मिलता है, है ना। अगर फसल पास पास होंगे, पौधे पास पास होंगे, तो उनका ग्रोथ बढ़वार अच्छा नहीं हो पाएगा। इससे क्या होगा, भविष्य में फसल कमजोर हो सकते हैं और या फिर उसमें कीड़ा बीमारी की आशंका आ सकती है ना। तो इसके लिए हम सलाह देंगे कि कतार से कतार के बीच उसको आप लोग उपजाए, ठीक है। तो ये सलाह कि उसमें आप लोग जो भी विभिन्न प्रकार की शस्य क्रियाएं हैं, है ना, कीट प्रबंधन, खाद प्रबंधन, ये आप आसानी से कर सके, ठीक है। और अगली सलाह ये देना चाहूंगा कि जब भी आप फसल का बुआई करेंगे तो बीज को उपचार जरूर करेंगे,
5: है ना। कैसे उपचार करेंगे?
2: हाँ, बीज उपचार करेंगे। कार्बन डाइजिम करके एक दवाई आती है जो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम फसल के हिसाब, मतलब बीज के हिसाब से हम उसको, उसका उपचार करके ही हम इसको खेत में, मतलब बुआई के लिए हम उसको उपयोग करेंगे। तो ये अनुशंसित है। इससे क्या होता है, जैसे फफूंद, अभी जो कार्बन डाइजिम ने आपको नाम बताया वो फफूंद नाशी है। होता क्या है, मिट्टी में भी अलग अलग प्रकार के जीवाणु विषाणु होते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, बीज में भी अगर हम बीज को उपचारित नहीं करेंगे तो वो उसमें बीज को खराब कर सकते हैं। क्या कहना, मतलब छोटे बच्चों को हम टीका लगाते हैं ना, ताकि वो अच्छे से वो हष्ट पुष्ट रहे, उसकी बढ़त अच्छी हो सके। तो उसी प्रकार से भी हमको फसल के बीजों को बीज उपचार करना जरूरी हो जाता है।
5: धान फसल और लघु धान्य फसल में क्या अंतर है रेट का, मार्केट रेट?
2: मार्केट में नहीं, देखो धान फसल और लघु धान्य फसल में अंतर तो यही है कि भाई ये लघु धान्य मोटे फसल है जो पहले आदिवासी फसल के नाम से जाने जाता था, है ना। हमारे खान पान में चावल ही सबसे अधिक प्रचलित है, ठीक है, पहला तो हो गया। उसके बाद हमारे बस्तर के फसलों में देखा जाए तो दूसरा मक्का लेते हैं, फिर तीसरा हमारा लघु धान्य फसल में। फसल अंतर ये देखा जाए कि भाई कि लोग चावल का डिमांड अधिक है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा शहरों में लोग उसी को कंज्यूम करते हैं, है ना। अभी सन 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया गया। कारण क्यों था इसको घोषित करने का, क्योंकि लोग जागरूक नहीं है कि लघु धान्य फसलों से क्या फायदे हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि लघु धान्य फसलों से क्या फायदे हैं, इसमें पोषक
5: बीमारी वगैरह के बारे में
2: प्रचुर मात्रा है, है ना, और ये हमारे मेडिसिनल इसका बेनिफिट है। तो ये अभी लोग जागरूक हो रहे हैं, है ना, लघु धान्य फसलों के रूप में अवेयर हो रहे हैं। यहाँ शहरों में मिलेट कैफे करके आउटलेट भी बनाया जा रहे हैं ताकि वहाँ पे लोगों को पौष्टिक भोजन मिल सके। तो इसकी डिमांड है ना, तो ये फसल का। और अगर हम फायदे की बात करें तो भाई हमको 50,000 से 75,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का फायदा इस पे लघु धान्य फसलों के उत्पादन से है।
5: अरे वाह, तो बहुत अच्छा फसल है। तो राहुल सर जी, जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी जी जी,
5: अच्छा जी।
0: हाँ, तुम फोन कर लास, तुम जो सवाल से जवाब मिल ली। अले
5: मिली मिल,
0: जोहार दादा।
5: हाँ जोहार।
6: हाँ तो दादा दीदी मन, तुम बोले आप लोग खेती कमाली जो कहीं बोले उवाट के जानतो काजे, आप लोग सवाल जो जवाब के जानतो काजे, तुम बोले फोन करू सकास। रोजे मंगलवार दिन 3:30 बजे ले धरून भाती 4 बजे तक फोन करतो काजे, नंबर है 2222 और 666। फोन कर तो पहल जगदलपुर चो STD कोड 0778 लगाओ नहीं भूल का। अले दाए मके दिया विदा, जुहार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम फोन इन किसानवाणी। प्रस्तुति थी रुद्र प्रताप सिंह की और लुभान पानीग्रही की। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
1: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: जोनी उजर में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुकमती और साथियों का गाया भद्री लोकगीत।

0: मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: पिलामन का जगोट, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। आज की प्रस्तुति है संतोष कुमार बघेल की।

पीला मन का जी गोट ये कार्यक्रम सुन तो सब पर पीला मन के मोचो बाटली खूबे खूबे मया और लाड। तो पीला मन हम जो ये कार्यक्रम ने महान पुरुष लेखक महापुरुष मंचो कहनी के धरुन हमी एवरों से असनी आजीबले हमी गोस्वामी तुलसीदास जो जीवन कहन के तुम चो का जी अनलो से। तो पीला मन गोस्वामी तुलसीदास जो जन्म श्रावण मास ने शुक्ल पक्ष ने 1511 उत्तर प्रदेश जो सोरन गांव ने होली। तुलसीदास जो माता जो नाव हुलसी और पिता आत्माराम दुबे रो ये भारद्वाज गोत्र वंश के सानड्य ब्राह्मण जाति ने जन्म धरला। तुलसीदास जो जन्म 12 माह गर्भ ने टलो पाचे जन्म होला। जन्म होलो बेरा हुनमन जो टोंडले टोंड ने पूरा 32 दांत रली और जन्म ते खन हुनचो टोंड ले राम शब्द निकरली। सपाय पिलामन जन्म होलो पाचे गगुआत और कोनी कोनी उगाय बल रुवात। मांतर की ये तुलसीदास जो टोंड ले जन्म ते खन राम शब्द निकरली यही काजे तुलसीदास के राम बोला भले बलते रहो। जन्म लो बेरा हुनचो शरीर और रूप 5 साल चो पीला असन रो। ये मन चो जन्म अभूतकाल नक्षत्र ने होली। हिंदू ज्योतिष चो हिसाब ने बाप चो जीवन का जी खतरा संकट रली। हुनी का जी 4 रात पाचे माँ बाप मन तुलसी दास चो आपलो ले हमेशा का जी त्याग कर ला। चुनिया नाव चो आपलो संगे हरिपुर आनली और 5.5 साल तक हुनचो देखभाल कर ली। पाचे चुनिया मरुन गेली हुनचो पाचे तुलसीदास खुबे डुक डंड पावला। भीख मंगुन मंगुन आपलो जीवना के अपन चलाते रहो। हुनचो पाचे पीला मन 7.5 साल चो तुलसीदास चो उम्र होली। महीना जनवरी फरवरी चो शुक्ल पक्ष चो 5वां दिने अयोध्या ने गुरु नरिहरिदास चो पवित्र धागा समारोह चलते रहे जो कि भगवान श्री राम चो तीर्थ स्थल रली। तुलसीदास ने अयोध्या ने आपलो शिक्षा दीक्षा शुरू कर ला। खिनिक समय पाचे नरहरिदास तुलसीदास के विशेष वरहा क्षेत्र सोरो मंदिर पवित्र स्थान नीला और पहली बार रामायण के सुनाला। सांग तो हिसाब ने गुरु ने तुलसीदास के खुबे हार रामायण के सांगला। तेवे तुलसीदास के समझ एते गेली कि रामायण काया है और एता तुलसीदास पाचे पवित्र शहर वाराणसी इला और गुरु सनातन ले 15-16 साल जो समय ने संस्कृत व्याकरण 4 वेद 6 वेदांग ज्योतिषी और हिंदू दर्शन के 6 विद्यालय जो अध्ययन करला। तुलसीदास जो विवाह 1561 ने कार्तिक मास शुक्ल पक्ष जो 11 तारीख के गोंडा जिला जो नारायणपुर गांव जो उनकी परासर गोत्र चो ब्राह्मण दीन बंधु चो पुत्री रत्नावली ले होली। एक हार तुलसीदास हनुमान मंदिर जाओ रोत और रत्नावली आपलो भाई संगे आपलो बाप चो घरे इली। जब तुलसीदास ये जानला तो हुन रोक नहीं सकला और आपलो रत्नावली चो घरे जातो काजे विचार करला। मानतर हुन दिन इतलो लहरा धुका बरसा बीज खसरते रहे असन समय आने बले मांतर पीछे नहीं हटला और राती बेरा जी जंगल नदी के पार करून सरजू नदी के पोरून पार करला और अपनी आपलो पत्नी रत्नावली जो घरे अमरला। मांतर रत्नावली तुलसीदास के खुबे खींचली कि असन समय ने तुम्हें इलास मोचो घरे इतलो लहरा धुका जंगल जानवर के तुम्हें

निडरून भाती नदी पारून पार करून इलास एगोट के सुनून खूब खिजली। एगोट के सुनून तुलसीदास बले मन के खूबे सोचला, मने मन खूब सोचला कि आपलो जीव के संकट ने डालून असन बेरा मैं एता काय काजे इले बलते। और हुनी दिन ले आपलो पत्नी चो त्याग करला और प्रयागराज चो बाट के धरला। आपलो गृहस्थ जीवना के त्याग करून साधु चो भेस धरला। कुछ समय पाचे राजापुर रौन भाती फिर ले काशी चो बाट धरला। लोग मन के राम कथा सुनाते सुनाते कथा सांगुन सांगुन एक दिना मनुक रूप ने प्रेत के भेटला और उन प्रेत तुलसीदास के हनुमान जी चो पता के सांगलो। हनुमान संगे भेट होन तुलसीदास श्री राम जो दर्शन करा तो काजी प्रार्थना करला। हनुमान सांगला कि तुम के श्री राम जो दर्शन होए दे चित्रकूट ने। ये सुनून भाती तुलसीदास चित्रकूट जो बाट के धरुन रेंगला। चित्रकूट अमरुन राम घाट ने आपलो आसन जमाला। एक दिन तुलसीदास प्रदक्षिणा काजे निकुर रो की बाटे उदुपनाय श्री राम चो दर्शन होली। मांतर की दुई नानी नानी राजकुमार गोड़ा ने बसुन धनु कांड के धरुन जाय सोत। तुलसीदास हुनमन चो उपरे मोहला। मांतर की पहचानुक नि सकला इतलो रूप इतलो हुनके दकुन भाती। हुनमन चो बुद्धि काम नि करली और हुनमन चो पूरे ले दुई नानी नानी राजकुमार मन घोड़ा ने बसुन गेला। हुनचो पाट पाट हनुमान अमर लो और सांगलो सपाय गोट के। तुलसीदास खुबे पछताला कि मैं श्री राम के चितव नि सकले। तेबे फिर हनुमान सांगला काली के बड़े बियान तुमके फिर श्री राम चो दर्शन होए दे। बड़े बियाने भगवान श्री राम फिर ले इला। पीला बालक खून तुलसीदास के बल्ला बाबा हमके चंदन हो तो राय तुम्ही हमके चंदन देव लाए सकासे बलते बल्ला श्री राम। हुन समय तुलसीदास भाम चपालो महासन होली। श्री राम जो सूरत मुरुत शरीर के दकुन ज्ञान गेलो असन होला। तुलसीदास जो माँ और श्री राम आपलो हाथे चंदन के अंडकी ने लगाऊन तुलसीदास जो माथा ने टीकला और ताले अंतर ध्यान होला। हुनी समय हनुमान चो आज्ञा धरुन हनुमान चो बाटे धरुन गेला गेला। हुन दिन मन मांग मंडी होते रहे हुनी का जे खिनिक दिन ठेबला। मंडी चो छह दिन पाचे बड़ रूप खाले भारत द्वाज और याज्ञ क्लव्य मुनि चो दर्शन होली। हुता कथा होते रहे जोन कथा के सुकुर क्षेत्र ने आप लोग गुरु ले सुनूरला। मांग मंडी सरते चेकी प्रयाग ले काशी का निकरला और हुता प्रहाद घाट ने कोटुक ब्राह्मण चो घरे ठेबला। हुता रो रो तुलसीदास के मने मने कवित्व शक्ति चो बाटे मन लागली और हुन कविता मन लिखुक मुरियाला। मांतर हुन कविता के हुन मन दिन ने लिखते रोत तो राती हुन नींद का देते रहे। आठवां दिने तुलसीदास के सपना ने भगवान शंकर आदेश दिलो कि तुम्ही आपलो भाषा ने रचना के लिखा। तुलसीदास सपना दुखुन उठुन बसला। हुनी समय भगवान शंकर और पार्वती पूरे इला। तुलसीदास ने हुनमन चो हाथ पाए जोड़ून पाए पढ़ला। भगवान शंकर सांगला कि तू अयोध्या ने जाऊन रा और हिंदी ने रचना लिखा। मैं तुके आशीर्वाद दे से कि तू सफल हो से बलून होताले जाते गेला। देवे तुलसीदास हुन आज्ञा के मानून उपड़े धापड़े निकरला अयोध्या चो भाट ने। रामचरित मानस 1631 में देव युग हुन वर्ष रामनवमी इली। त्रेता युग ने राम जन्म चो दिन इली। हुनी दिने तुलसीदास श्री रामचरित मानस चो रचना के शुरू करला। ये रचना 2 बरख 7 माह और 26 दिन जो समय ने पूरा होली। हुन चो पाचे भगवान चो आज्ञा ले तुलसीदास काशी इला और भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा के श्री रामचरित मानस के सुनाला और राती के पुस्तक के विश्वनाथ मंदिर ने संगान दिला। बड़े बिहाने मंदिर चो दरवाजा खोलला और दखला की पुस्तक चोपरे सत्यम शिवम सुंदरम लिखुरे। शंकर भगवान चो चीना बले मिरली। हुनी संगे समय सपाय लोग मन चो काने सत्यम शिवम सुंदरम चो आवाज के लिए। ये गोट के सुनून काशी चो पंडित मन।
तुलसीदास के ईर्खा होला। हुन मन तुलसीदास जो बकना चकना करुक मुरियाला बदनाम कर तो खूब कोशिश करला और हुनिया समय पुस्तक के चोर तो काजे उपाय बनाला। दुई चोर के तुलिस तुलसीदास जो कुटिया ने पटाला मांतर चोर मन धकला की बाहरी दुई सुंदर युवक धनुकांड के धरुन पहरा देश होत। हुन मन के दर्दकतों के हुन मन चो बुद्धि भ्रष्ट होली और सदबुद्धि इली और हुनी दिन ले हुन चोर काम के छणुन दिला। तुलसीदास सोचला कि भगवान के कष्ट होली और यही सोचुन आप लो पूरा सामान चमक के देन दिला और पुस्तक के आप लो जोड़ी डोंडरमल अकबर चो नवरत्न ने एकलो चो थाने संगान दिला। उन चो पाचे आप लो स्मरण शक्ति ले दूसरा रचना करला। ये पुस्तक के लोग मन ने मांग बाढ़ते गेली ईर्खा पंडित मन के बल निपुरली मने मने और बल ईर्खा होते गेला। तुलसी दास के तो आखरी ने विश्वनाथ मंदिर ने रलो सबले उपरे रामचरित मानस चो पुस्तक के सबले खाले संगाउन उनचो उपरे कुछ शास्त्र मन के संगाउन दिला। बड़े बिहाने मंदिर खोला दखला की श्री रामचरित मानस चो पुस्तक आपले आप सबले ऊपर रे तेबे ईर्खा पंडित मन लाज पड़ुन तुलसी दास के माफी मांगला। असन तो खुबे रचना आसे तुलसीदास जो मांतर की मुख्य रचना मनाए रामचरित मानस कवितावली संकट मोचन राम लला नछु वैराग्य संदीपनी गीतावली करखा रामायण बरबे रामायण श्री कृष्ण गीतावली रीता रामायण पार्वती मंगल विनय पत्रिका झुलना जानकी मंगल सत्सई छंदावली रामायण रामाज्ञाप्रस कुंडलिया रामायण काली धर्माधर्म निरूपण दोहावली राम सलाका हनुमान चालीसा और बहुत सी रचना तुलसीदास ने करला। आप लो समय ने गोस्वामी तुलसीदास के भारतीय और पश्चिमी विद्वान मन कर लो रचना काजे कविता लिख तो काजे हिंदू समाज लेवल प्रभाव डाल तो काजे खूब सम्मानित करला। गोस्वामी तुलसीदास बलुआत ये संसार में कई प्रकार चो लोग आसोत रतो ढंग लगाए रब चो रहन सहन आए भिने भिने आत हम के सपाए लोग के गोठिया तो राय मिलुन मिसुन रतो राय जसन नाव नदी ले दोस्ती करुन आप लो बाट बनावाए और पार करवाए असनी हामी बले नंगत कोट बात ले आप लो व्यवहार चलन के नंगत चलाऊं ये संसार जो भंवर सागर के पार करवा। तुलसीदास असनी रचना करते करते 30 अगस्त 1623 ने वाराणसी ने आप लो दे के छाणुन गेला। तो पिला मन ए रहे गोस्वामी तुलसीदास जो जीवन जो कहनी। तो ये कार्यक्रम सुन तो सब पै पीला मन के मैं जातो पूरे मुझो बाटले खुबे खुबे मया और लाड़।

पिलामन का जिगोट। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रस्तुति थी संतोष कुमार बघेल की। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरोगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिव कुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिव कुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना DMK से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि AI और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
4: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: As far as Operation Sindoor is concerned,
3: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 105

0: 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम वॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स्ड डबल्स सेमीफाइनल में हार गईं। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहु मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: वन संसाधन जो ना अधिकार है हमें धरून दे। तब उन मन बोलुआ, तब हम उन मन के फिर और प्रक्रिया कि एक जन करते रहे ये सांगते जाऊँ हम।
1: अच्छा हाँ हाँ तो संतु जसन की तो 22/2018 ले एक काम के मूर कर लास, तो अब तक बल्ले ने कितलो असन पंचायत ने एक काम
0: ये तक आमन मंच कर लो भी थी दादा कि 2018 ये तक 60 गांव करीबन आमी सामुदायिक अधिकार दिलालू
1: अच्छा
0: और 100 गांव तक अमरलू से
1: हाँ हाँ
0: कि ये चो जागरूकता करतोर। तो उन 60 गांव ने पत्रक अधिकार दिलालू उन लोग एबे तक 15 गांव तक लोग एबे प्रबंध प्रक्रिया नागे बढ़ला से
1: अच्छा
0: उनचो प्रबंधन कर सो जहाँ जोन गांव 60 गांव के अलावा 15 गांव ने जोन अधिकार मिलली सुन गांव लोग अब जल जंगल जमीन और गांव चो रीति रीति व्यवस्था के बचा तो काजे एक गांव ने ग्राम सभा बसुन उन मन प्रबंधन चो नियम और उन गांव ने खाता खोल तो ग्राम सभा नाव ने खाता खोल तो प्रक्रिया तक अमरला।
1: अच्छा हाँ हाँ तो जसन बल्ली से 60 ठान मतलब पंचायत ने होली से सामुदायिक वन धन जो कर्तव्य काजे ये चुका जे बल्ले ने काय प्रक्रिया हो से काय करुक लाय पड़े से।
0: सबले पहले दादा ये चुका जे जसन एमन के काय शुरू ले जब हमी दावा प्रक्रिया करतो का जे सहयोग कर लू कि सबले पहले ग्राम सभा बस्तर उन मन के सीखा लू कि ग्राम सभा बस्तर सबले आगे तो हम चो बस्तर संभाग ने तो ग्राम सभा के पंचायत ले जोड़न दी बात। लेकिन पंचायत एक राज्य सरकार या सरकार चो एक एजेंसी है,
1: हाँ
0: ग्राम सभा जो ना है कि गांव चो खुद चो एक अपने आपने खुद शासन सौ शासन उन करते हुए
1: अच्छा
0: ग्राम सभा। तो हुन चीज के हमें सबले पहले हम मन के गांव लोग के समझाते गेलू कि नहीं ये तुम चो गांव चो तुम ये अधिकार है तुम ही खुद ले एक शासन सौ शासन करू सका नियम बना सका। तब उन मन के लागली हाँ बोलून ग्राम सभा ने बोसुन उन मन सबसे पहले प्रस्ताव पास करवात की ग्राम सभा ने कि नहीं हाँ हम चो गांव ने जब सामुदायिक अधिकार आम के मिरली तो अब आम उन मन चौथा ने नियम बना का जे हम ग्राम सभा बोसुस सबले पहले
1: अच्छा
0: सबले पहले नियम बना तो तैयारी करवात कि गांव ने हमी सबले पहले लकड़ी का कसन काटुक नहीं देवा उनचो पायल उनचो काजे आई गामी कसन धरुक नहीं देवा उनचो काजे नियम उनके रोकथाम कसन करवा उनचो काजे नियम उनसे पहले फिर शिकार बल हुआ है उनचो काज बल नियम बनवात कि आमी ए शिकार नहीं हो वन्य जीव बाचोत उनचो काज बल गांव ले स्तर ने नियम बनवात और उनचो बाद ने फिर पानी ने बोले काई चीज चो नुकसान नहीं हो
1: अच्छा
0: चाहे कई लोग मछली मार तो काज बोले दवाई बल डालुआ
1: हाँ
0: बाहरी लोग नहीं हो तो उनचो काज बल नियम बनवा। तो असनी कई प्रकार चो वन संसाधन चो एक नियम बनवा गांव चो लोग ग्राम सभा बसुन उन नियम के फिर ले दूसरा ग्राम सभा बसुन उनके प्रस्ताव ने पारित करवा कि आमी आज ही ले आम चो गांव चो नियम ये बना लू से जो ये नियम के पूरे गांव चो लोग मानुक पड़े और उनचो संग संग सीमावर्ती जित लोग गांव लोग उन लोग के बोले ये आम चो गांव चो नियम के पालन करुक पड़े
1: अच्छा
0: ये नियम चो प्रस्ताव बनवा।
1: अच्छा
0: तो पहला ये करुआ तो उनके बाद अब नियम तो बन ली नहीं ना अब आमन मन के काया है वन संसाधन जो वनोपज चो है खरीदी बिक्री उनका है खरीदी बिक्री हम एक गांव ने ग्राम सभा चो एक समूह या फिर एक गांव चो माध्यम ने इकट्ठा बिकवा क्योंकि अभी तक काय है बिचौलिया औने पौने भाव ने धरे सोत। तो हूं चो काज बल ग्राम सभा ने बोसुआत और उन चुकाज बोला हम सांगो कि नहीं असन असन करा बोलते उन मन फिर बोसुन बारी विचार करून एक ग्राम सभा के नाव ने खाता खोल तो काज तय हुआ क्योंकि कानून ने आसे धारा 4 ने ये सीधा सीधा चारिकी ने समिति बनान ग्राम सभा के नाव ने खाता खोल तर।
1: अच्छा
0: तो हुनके बोला हम सांगुलू तो हुनके बोले करला कि ग्राम सभा के नाव ने खाता खोलला जोन खाता खोलला तो उनके बाद खाता खोलो नियम बल बन ली खाता बोले तो उनके बाद एमन संचालित का जे बोले एक ग्राम सभा बस्तो नियम बनवा कि आम के ग्राम सभा कितलो दिन ने बस्तो रहे। तो कई जगह अमन मन देखवा कि 10 ले 15 गांव ने उन मन का एक ग्राम सभा नियम बनाला से कि आम के महीना दिन ने एक हार ग्राम सभा बस्तोर अनिवार्य है।
1: अच्छा
0: तो महीना दिन ने हम काय काय काम होली से और आगे आम के काय काम करते रहे।
1: अच्छा
0: तो लिखित रूप ने उन मन फिर रजिस्टर बोले संधारण करून पूरा सही चीज करून उमन संगात जवात और फिर उन ग्राम सभा बैठ तो काज बल नियम बनाते गेलास।
1: अच्छा
0: तो हुनके बोला मी सामंत गेलो कि यहाँ तू मन मन करतो रहा असन करतो रहा बनते। तो ये बोले हम चो ये भी तक चो प्रक्रिया ये चल ली।
1: अच्छा अच्छा संतु जसन की थी 22/2018 ले लगभग एदाय चो 5 साल असन होली
0: हाँ,
1: तो बोलो भी काय प्रभाव दखा दे से ये चो
0: एबे तक छो दादा आमन मन बल देखवा तुमन मन बल सफाई जाऊन देखो देखा से कि मैं कुछ असन गांव के सांगुक सके जहां जोन सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मिरलो गांव मिरलो बाजुन गांव जहां आगे बोडन बारी सामुदायिक वन संसाधन के प्रबंधन और आपलो हिसाब ने उन मन राखा जागा करुन बारी कर सो तो हुन असन गांव मन प्रभा दुख मिरली से जसन एबे देखवा धुड़मारास धुड़मारास जाऊन देखवा हूँ ता आप लोग गांव ने ग्राम सभा ही सशक्त करून बारे उन मन नियम बल बनान खाता बल खोलून एक आजीविका नागे बढ़ लीस
1: अच्छा
0: आजीविका नागे बढ़ लीस कसन बल एक पानी आस नाला जो तीरथगढ़ ले घसरू है पानी नाला आसे उन मन पानी के बल सुरक्षित करून साफ सुथरा करून हूँ ता एक बांस छो हमी बोलवा डोंगा बोलवा ले बेहुता काया किंग असन नाम दिला से उन मन बनान हुन ताले हुन मन आपलो आजीविका बल कमावत
1: अच्छा
0: हाँ तो बाहरी लोग खूब विदेश ले बोले सोत खूब बड़े बड़े लोग जाए सोत तो हुन सा ले जाऊन देखो बोल सकास कि उता आपन मन अगर 30-35 घर आसे तो 30-35 घर लोग के सबके रोजगार मिलेस
1: अच्छा
0: आगे हमी उता देखते रहो हुन लोग सांगते रहो हमी आंध्रा उन बाटे रोजी जाता लेकिन जब ले आम के अधिकार पत्रक मिरली तब ले आम चो गांव चो आजीविका बल अच्छा होले और गांव चो नीति नियम जो ना व्यवस्था है ठीक ठाक आसे भी तो ये आम के उता दुख मिरली उसनी प्रकार चो तीरिया गांव है एक माचकोट जंगल ने एरियान पुड़े उड़ीसा सीमा ने हुता बोल उसनी आए हुता बोल उसनी पानी के ही सुरक्षित कर हनुमान बोले अच्छा ले आजीविका के बढ़ावा दे सो
1: अच्छा
0: तो जंगल के राखा तराखा कर सो थी उनके संगे संगे एक आप लोग गांव चो आजीविका के युवा वर्ग ने बोले एक समझे ऐसे कि नहीं अब आमन मन की जंगल के बचान जंगल ले आप लोग आजीविका बल बढ़ात रहे और चले कमाई बले हो उनके संग बल ये चले से अभी तक तो दखा दी ली
1: अच्छा तो संतु देख तुम चो बंधन जो सामुदायिक अभियान ये जो काम है बोले पूरे बस्तर संभाग ने बोले अच्छा जसन के भी तु सांगलीस की कई गांव मन ने पर्यटन चो क्षेत्र ने बले हनुमान के रोजगार चो अवसर मिले से मानतर सरासरी ने बले ने कोनी बले पंचायत के बले ने सामुदायिक वंधन जोन अधिनियम चो अंतर्गत ये बना तो काजे तुम चो बाटले कहीं बलुक चाय रेडियो चो माध्यम ले
0: अगर कोनी गांव अगर बना चाय से और ये कानून चो माध्यम ने कि एक गांव के सामुदायिक वन संसाधन अधिकार धरुक चाहे से तो आमन मन बाटले हर तरीके ले सहयोग रह दे उन्हीं आमी बोलुक चाहूँ से कि गांव ने गांव चो लोग एक जागरूक हो तो आप लोग गांव के ग्राम सभा के जागरूक करो क्योंकि जल जंगल जमीन जो ना है आपन मन गांव बिता चो है न कि कोनी सरकार और शासन प्रशासन क्योंकि गाँव ही आए जो जब ले गाँव बोसली से तब ले आप लो जल जंगल जमीन के आप लो संस्कृति के गांव चो व्यवस्था के गांव बीता बचन संगालास उन्हीं का जो कानून बल बले से कि आपन गांव बीता मन ये अधिकार के धरोत और आपन मन जितलो ज्यादा अच्छा लोग सके ये अधिकार के धरून प्रबंधन संरक्षण करुन बारी हूताल आप लो आजीविका बल बढ़ावत और कई अच्छा चीज चाहे पर्यटन हो चाहे पानी ले हो चाहे आप लो खान पान के बल्ले हो ये बे देखुआ देखते जाऊं से कि खान पान के बल्ले हम चो आदिवासी चे जोन व्यवस्था है खान पान है उनकी अब बाहरी चो लोग बल्ले अपना चाहत क्योंकि उन मन समझ ला कि आदिवासी जीवन ने ही पूरा मानव जीवन
1: आसे
0: उन्हीं का जे एवे बोले कई जगह देखुआ कि जहां मंडिया पे जाए धान कुटलो चाउर आए चाहे कोदा कुटकी आए चाहे हरवा दार हो कई जोन चीज आए उन बोले बाहरी लोग बोले अब उनके अपना चाहे तो ये अधिकार आए उन्हीं बोले कि जितलो तुम मन चो जीवन यापन बला से जीवन यापन जीवन देखी जीवित भी बोला हुन बोल तुम चो अधिकार ही के जितलो ज्यादा बचक सका से उतलो ज्यादा खूब बड़े गांव समृद्ध रहे थे और गांव सुरक्षित बने
1: सुरक्षा रहे
0: तो वन अधिकार कानून उन्हीं आए उन खाली जंगल च बात नहीं करे से ना जमीन च बात नहीं करे से खाली जल च बात नहीं पूरे गांव च व्यवस्था के मजबूत कर तो काज बात करे से ही काज मैं पूरे गांव लोग के यही जानू सांगुक चाहे दे कि जितलो ज्यादा हो सके ये वन अधिकार कानून चो माध्यम ले आप लोग गांव चो जितलो बल सामुदायिक अधिकार है उनके बना तो प्रयास करो और ग्राम सभा ने बोसुन गांव के कसन चलात रहे गांव के कसन प्रबंधन करत रहे ये चो बोले नियम बनान बारी एक संचालित आप लो तरीका करो तब कहीं ना कहीं ग्राम सभा के ये पांच अनुसूचित क्षेत्र ने शासन सौ शासन चो बात करे उन्हीं तेवे दखा दे इसे।

0: खास है कई मायनों में, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की, उन विचारों की और उन रास्तों की जो युवा भारत को आकार दे रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे जोश के साथ। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब न टीवी था, न इंटरनेट, न स्मार्टफोन, तो लोग सच कैसे जानते थे, अपनी बात कैसे कहते थे और अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठाते थे? जवाब है एक अखबार से, एक छापाखाना, थोड़ी सी स्याही और बहुत सारा साहस। उदंत मारतंड 30 मई 1826 को तत्कालीन कलकत्ता से शुरू हुए इस अखबार के संपादक और प्रकाशक थे कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो कलकत्ते में वकालत करते थे। यही था हिंदी पत्रकारिता का पहला कदम। और हम इसी ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। ये सफर आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत थी, पाबंदियां थी, हर रोज खतरे से आंख मिलाना था। भारी आर्थिक तंगी और उच्च डाक दरों के कारण ये अखबार बहुत दिनों तक नहीं चल सका और 4 दिसंबर 1827 को इसका आखिरी अंक प्रकाशित हुआ। लेकिन जो बीज उदंत मारतंड ने बोया, वो पेड़ बनकर खड़ा हो गया। हिंदी पत्रकारिता को जैसे एक नई भाषा मिलती गई, एक नई धार मिलती गई और आजादी के बाद हिंदी पत्रकारिता और पकी और फैली। और फिर आया डिजिटल युग, जहां हर हाथ में स्क्रीन है और हर इंसान एक संभावित पत्रकार है। लेकिन आज सवाल ये है कि जब पत्रकारिता डिजिटल हो रही है, जब खबर रील बन रही है, तो इन 200 सालों की विरासत को आखिर आगे कौन ले जाएगा? युवा पत्रकार कैसे दें इस समय के सवालों का जवाब? इसी विषय पर आज हमारा संपादकीय लिखा है और स्वर दिया है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हरेंद्र प्रताप सिंह ने। शीर्षक है समय के प्रश्न और युवा पत्रकारिता के उत्तर। तो सुनिए और सोचिए।
1: पंद्रह अगस्त 1947 के पहले जो हिंदी पत्रकारिता हुई, उसका मुख्य मकसद था देश को आजाद कराना और उस समय जो कुछ अंधविश्वास थे समाज में उसको दूर करना और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास पत्रकारिता को भी सहयोग करना। तो ये तीन मुख्य मकसद थे पराधीन भारत में। और जब देश आजाद हुआ तो जाहिर है कि एक नई शुरुआत थी, लोकतंत्र नया नया स्थापित हुआ, फिर हमारा संविधान सामने आया। तो हिंदी पत्रकारिता ने और भाषाई पत्रकारिता ने मुख्य रूप से देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। और मैं खास करके हिंदी पत्रकारिता में आजाद भारत में रेडियो का, आकाशवाणी का योगदान बहुत ज्यादा मानता हूं, क्योंकि खासकर जो हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, उसमें आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही। भारत की जो आजादी है उसमें पत्रकारिता का और पत्रकारों का तो बहुत बड़ा योगदान रहा ही, लेकिन उसमें भी विशेषकर जो युवा पत्रकार थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बल्कि आप शुरू से ही देखें, उदंत मारतंड हो या फिर दैनिक समाचार सुधा वर्षन, या फिर बाद में एक उर्दू का अखबार आया आपको प्याम आजादी, और कई भाषाई अखबार जैसे मराठी में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा शुरू किया, फिर बाद में महात्मा गांधी ने खुद अंग्रेजी में और गुजराती में, फिर बाद में हिंदी में पत्रकारिता की। तो उस पूरे दौर को यदि आप देखिए, यहाँ तक कि भगत सिंह तक ने भी जो है वो पत्रकारिता की, यशपाल ने पत्रकारिता की। पूरी आजादी की यदि यात्रा आप देखिए पत्रकारों की, तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। बाल गंगाधर तिलक खुद 25-26 साल के थे जब उन्होंने अपना अखबार निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप निकला तो उस समय वो मात्र 24 साल के थे, और भगत सिंह 23 साल की उम्र में 2-3 अखबारों के लिए लिखते थे और प्रताप के लिए तो वो नाम बदल के लिखते थे। तो इस तरह से जितने भी पत्रकार थे उसमें ज्यादातर यंग लोग ही रहे। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उन्होंने यंग इंडिया की शुरुआत की, नवजीवन की शुरुआत की, तो उन्होंने 30 से 35 साल के युवाओं को ही अपनी संपादकीय टीम में रखा। मेरा ये मानना है कि समय चाहे जैसे भी बदला हो और आगे भी बदलता रहेगा, पत्रकारिता के जो मूल्य हैं वो वही रहते हैं। मूल्य है सत्य को सामने लाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, चाहे आप कलम से लिखिए, मोबाइल से लिखिए,

0: मैं आपको याद रखना चाहूंगा कि बीच में स्वतंत्र भारत में एक आंदोलन भी हुआ, वो कहलाता है छात्र आंदोलन, जिसको हम लोग जेपी मूवमेंट भी कहते हैं, 1974-75 का जो आंदोलन है। तो आप यदि देखिएगा तो उसमें भी युवा पत्रकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। और स्वाधीन भारत में दो और खास किस्म की पत्रकारिता शुरू हुई, एक खोजी पत्रकारिता जिसने कहीं न कहीं उन व्यवस्था पे भी जो है एक अंकुश लगाया जहां कुछ उसने देखा कि गलत हो रहा है। और दूसरी जो एक पत्रकारिता जो एक चरम रूप पे आई वो है विकास पत्रकारिता, विकास से जो व्यक्ति छूट गया उसको सामने लाना और मानवाधिकार की बात करना, पर्यावरण की बात करना, पर्यावरण के हितों की बात करना, ये 20वीं सदी की पत्रकारिता की सबसे एक विकसित सोच थी। खबर को एक खबर के रूप के साथ साथ विचार के रूप में भी प्रस्तुत करना, जनसंचार का क्षेत्र ये शुरू से युवाओं को आकर्षित करता रहा है, क्योंकि इसमें एक उनको कहीं ना कहीं ग्लैमर भी नजर आता है। मेरा यह मानना है कि पत्रकारिता आज की तारीख में भी एक लोक सेवा है। मुख्य मकसद वही है कि आपको कलम से या शब्दों से या अपने विचारों से आपको समाज की, देश की और मानवता की सेवा करनी है। पत्रकारिता चाहे 18वीं सदी की हो, 19वीं सदी की हो, 20वीं सदी की हो, 21वीं सदी की हो, पत्रकारिता आज भी एक बड़ा ही पवित्र प्रोफेशन है। मैं कहूंगा युवाओं को, आज भी युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में इस क्षेत्र में आना चाहिए।
1: हरेंद्र प्रताप सिंह के विचारों ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि माध्यम बदलते हैं मगर जिम्मेदारी नहीं बदलती। और जब माध्यम की बात हो तो एक नाम जहन में हमेशा रहना चाहिए, आकाशवाणी। वो आवाज जो दशकों से घर घर तक पहुंचती रही, वो आवाज जो दूर दराज के गांवों में भी उम्मीद की किरण बनती रही। आकाशवाणी के 90 साल के ऐतिहासिक पड़ाव पर इस अंक में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, युवा साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जिन्होंने रेडियो को सिर्फ एक माध्यम के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में देखा, समझा है और इसमें उनकी एक हिस्सेदारी भी रही है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 साल विरासत आज के युवाओं के लिए क्या मायने रखती है।
2: मेरे लिए आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं है बल्कि वह मेरे बचपन की ध्वनि है, मेरे संस्कारों की लय है और मेरी चेतना का एक स्थायी संगीत। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, संचार के माध्यम बदल रहे हैं, आवाजें बदल रही हैं, तब भी मेरे भीतर कहीं एक रेडियो धीरे धीरे बजता रहता है। वही परिचित उद्घोष, वही शब्दों की गरिमा, वही ध्वनि का अनुशासन और वही आत्मीयता। शायद इसलिए मैं आज भी रेडियो सुनता हूँ। टेलीविजन कब देखा था ये मुझे सचमुच याद नहीं। मेरा बचपन गोरखपुर में बीता, शुरुआती शिक्षा भी वहीं हुई। मेरी माँ शिक्षिका हैं, लेकिन मेरे लिए वे केवल शिक्षिका नहीं बल्कि साहित्य, भाषा और संस्कृति से भी मेरा पहला परिचय कराने वाली हैं। उनका आकाशवाणी गोरखपुर से गहरा संबंध है। वे वहां निशा निमंत्रण जैसे साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। मैं अक्सर उनके साथ आकाशवाणी केंद्र भी जाया करता था। आज भी मुझे वह परिसर याद है, वहां का शांत वातावरण, स्टूडियो के बाहर लगी हुई लाल बत्ती, धीमी आवाज में होती बातचीत, स्क्रिप्ट के पन्नों की सरसराहट और प्रसारण शुरू होने से पहले का वह अद्भुत मौन। एक छोटे बच्चे के लिए वह संसार किसी जादुई लोक से कम नहीं था। आकाशवाणी गोरखपुर एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। वहां अनेक बड़े साहित्यकारों, कलाकारों और संगीतज्ञों का आना जाना था। मुझे याद है जब कोई वरिष्ठ कवि या कलाकार स्टूडियो में आते तो वहां का वातावरण एकदम बदल जाता। शब्दों के प्रति आदर और कला के प्रति समर्पण मैंने वहीं देखा। शायद वही संस्कार बाद में मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। बाल सभा के कई कार्यक्रमों में मुझे अवसर भी मिला। रेडियो पर अपनी आवाज सुनना उस समय बहुत रोमांचक था। रिकॉर्डिंग के दौरान माइक के सामने बैठना, सही उच्चारण का ध्यान रखना, शब्दों को स्पष्ट बोलना, ये सब मेरे लिए गतिविधियां ही नहीं थी बल्कि भाषा के प्रति एक अनुशासन का प्रशिक्षण भी था। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि आकाशवाणी ने मुझे बोलना ही नहीं सिखाया बल्कि सुनना भी सिखाया। और सुनना वास्तव में सबसे बड़ी कला है। रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह श्रोता की कल्पना को जीवित रखता है, आपको अपने भीतर दृश्य रचने की स्वतंत्रता देता है। रेडियो सुनते हुए हम केवल श्रोता नहीं रहते, हम सह रचनाकार बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बदला, मैं उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय आया। एक नया शहर, नया वातावरण, नए संघर्ष, लेकिन इस परिवर्तन के बीच भी एक चीज स्थिर रही, आकाशवाणी से मेरा संबंध। दिल्ली आने के बाद मुझे युववाणी का हिस्सा बनने का अवसर मिला। ये मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव था। युववाणी केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की अभिव्यक्ति का मंच था। वहां विचार थे, ऊर्जा थी, भाषा का उत्साह था और समाज को देखने की एक नई दृष्टि। बाद में मुझे हिंदी वार्ता और संस्कृत वार्ता से भी जुड़ने का अवसर मिला। ये मेरे लिए प्रसारण ही नहीं बल्कि भाषा और विचार की साधना भी रही। आज सोशल मीडिया के समय में सूचनाएं बहुत हैं, लेकिन विश्वसनीयता कम होती जा रही है। ऐसे समय में आकाशवाणी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ शब्दों के पीछे उत्तरदायित्व है। कई बार मुझे लगता है कि रेडियो सुनना दरअसल अपने भीतर लौटना है, क्योंकि रेडियो हमें थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर से बचाकर शब्दों और ध्वनियों की एक शांत दुनिया में ले जाता है। और शायद यही कारण है कि आकाशवाणी 90 वर्षों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला। मैं अपनी माँ के प्रति भी कृतज्ञ हूँ, जिनके माध्यम से मेरा परिचय इस संसार से हुआ। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को मेरा विनम्र प्रणाम है।
1: तो जैसा अभी विशाल पांडे ने कहा, आकाशवाणी ने हमेशा ही नई पीढ़ी को अभिव्यक्ति का मंच दिया है, और आज की युवा पीढ़ी अभिव्यक्ति के नए नए रास्ते खोज रही है। कोई कैमरा उठाता है, कोई माइक थामता है, और कोई निकल पड़ता है अनजाने रास्तों पर, बस एक बैग, एक कैमरा और एक जज्बे के साथ। सफर को कंटेंट बनाना और कंटेंट को करियर बनाना, ये कमाल कर रहे हैं आज के ट्रेवल ब्लॉगर्स। जब घर की चार दीवारी को छोड़कर पहाड़, समंदर और अनजान शहर ही दफ्तर बन जाए, तो जिंदगी कुछ और ही रंग ले लेती है। आज हम मिलने वाले हैं दो ऐसे ही युवाओं से, श्वेता राठौर और सौरभ परमार, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं। इनके लिए रास्ता ही मंजिल है और हर मोड़ पर एक नई कहानी है। आइए सुनते हैं उनसे उनके रिस्क, उनकी रील्स और उनके रास्तों की बात, जो इन्होंने खुद चुने हैं। रास्ते, रिस्क और रील्स। श्वेता राठौर और सौरभ परमार से बातचीत की मैंने, यानी नवोदिता और प्रांजल ने।
3: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक AI और एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं, यूथ के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। आपका जो एक ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बहुत क्वर्की स्पॉन्टेनियस कंटेंट से भरा हुआ है। आपके सोलो ट्रैवलिंग जर्नी में प्लानिंग से लेके उसका एग्जीक्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है और आपका उसमें क्या प्रोसेस है?
4: जब हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं तो बिल्कुल अनप्लान करते हैं, हमारी कोई आइटिनरी नहीं होती, क्योंकि हमारे हिसाब से ट्रैवलिंग वैसे ही होती है। जब आप एक्सप्लोर करने जाते हो किसी जगह को और आप मन में बिठा के रखे हो हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो खत्म है वहां पे एक्सप्लोरेशन, क्योंकि आप टारगेटेड ट्रैवल कर रहे हो। तो हम जब भी प्लान करते हैं तो हम बस जगह को देखते हैं, ये हमें पसंद आ रही है जगह, चलो चलते हैं। कैसे जाना है वो उसी दिन डिसाइड होता है, आपको बस से जाना है, आपको फ्लाइट से जाना है, आपको ई रिक्शा लेके जाना है, इट्स अप टू यू। और आइटिनरी की बात तभी आई जब हम फॉरेन ट्रैवल करना शुरू किए, क्योंकि वहां पे नेसेसिटी बन जाती है, आपको दिखाना है वीजा ऑफिसर को कि आइटिनरी एक सर्टेन वे में होनी चाहिए। वहां पे भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सके हमारे प्लान में हम उतना रखें। और ट्रैवलिंग करते समय आपको बहुत ही स्मार्टली चलना होता है, बेवजह रिस्क नहीं ले सकते हैं। जैसे यूथ जो है या सोलो ट्रैवलिंग वाली जब बात आती है तो मोस्टली ऐसी आती है कि इज इट सेफ, कैसे हम जाएं, कैसे बजट हैंडल करें। मान लीजिए आपका बजट 10,000 है, आप प्लान कीजिए आसपास की जगहों का, हो सकता है कि आपकी जो ट्रैवलिंग हो वो 1,000-2,000 में ही हो जाए। तो अगर आपको ट्रैवलिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले तो आसपास की जगहों को घूमना शुरू कीजिए, देखिए कि आपको कितना मजा आ रहा है और क्या एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है। तो उससे आप ना लॉन्जेविटी ला सकते हैं। अगर आप आगे जाएंगे ना बड़े स्टेट्स में किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपको हैंडल करने का तरीका आता होगा। और आपसे ये जानना चाहेंगे, जितनी आसानी से श्वेता ने कहा कि

0: हम एकदम उसी दिन प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका पर्पस तो है कि उस चीज को आपको कवर करना है और आप उसको किसी भी तरीके से आपको देखने सुनने वालों के सामने रखना है। क्या वाकई ये इतना स्पॉन्टेनियस होता है या फिर?
1: मुझे लगता है श्वेता ने झूठ बोला, इससे भी ज्यादा स्पॉन्टेनियस है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि हम लोग जो पूरा का पूरा कॉन्टेंट है स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है। हम लोगों ने जब इनिशियली ट्रेवल स्टार्ट किया था तो हम सिर्फ ये नहीं करना चाहते थे कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, ये करना चाह रही हूँ। हम लोग सच में एक बहुत ही ऐसी जगह पे फिक्स थे दोनों के दोनों अपने लाइफ में कि हम वहां से निकल नहीं पा रहे थे। शी वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट ऑफिस और मैं मीडिया एडिटिंग कर रहा था। जब इसने जॉब छोड़ी श्वेता ने, तो हमने सोचा कि हम इसको ना एक आइडिया बेस लेके चलते हैं, कॉन्टिन्यूटी रखते हैं इसमें। तो इनिशियली ऐसा हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमने एक स्टोरी जनरेट की। स्टोरी मतलब वो रियल लाइफ से ही जनरेटेड थी कि श्वेता ने अपनी जॉब छोड़ी है और जॉब छोड़ के उसने ट्रेवलिंग करना शुरू किया है। बट ट्रेवलिंग के लिए आपको पैसे चाहिए और स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ ऐसे 10-12 हजार रुपए थे दोनों के पास मिला के, ये हमारी सेविंग्स थी। तो हम लोगों ने एक हफ्ता ट्रेवल किया। एक हफ्ता जब हमने ट्रेवल किया तो हम लोगों ने सोचा कि मैं पूरा कॉन्टेंट संभालूंगा और तुम पूरा फाइनेंस संभालो। तो ये हमारी स्टोरी चली। तो क्या हुआ कि विद इन 3 मंथ्स हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और सिर्फ 10 हजार से हमने शुरू किया था उस टाइम।
0: आपके जवाब में एक्चुअली 2-3 ऐसे पॉइंट आए जहां पर मेरे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है। एक तो ये कि जब आपने बोला कि श्वेता ने अपनी नौकरी छोड़ी, आई वुड होप कि आपके अंदर भी वो एक सेंस ऑफ नर्वसनेस, वो इनसिक्योरिटीज होंगी कि छोड़ तो दी, आगे कैसे होगा। और जो आपने एक जिक्र किया कि आपके पास 10 हजार फॉलोअर्स थे, वो 10 हजार भी कैसे आए। और दूसरा ये कि आपने ये कहा कि जो चीजें आप कह रहे हैं, आप स्टोरी सोचते हैं, हम लोग तुरंत उसको करना चाहते हैं, कभी कोई आपके आसपास कोई सोशल ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करी है, पॉलिटिकल है, या जानबूझ के आप ऐसे कंटेंट से दूर रहना चाहते हैं जहां पे किसी भी तरह के डिस्प्यूट की कोई गुंजाइश हो?
1: हम लोगों का जो मेन कॉन्सेप्ट है और जो कंटेंट का मेन कोर है वो ये है कि हम लोगों को ना दुखी नहीं करना चाहते। देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस गोइंग ऑन और चीजें होती रहती हैं आसपास। अगर हम किसी भी चीज को टच करें तो आप कभी भी सही या गलत नहीं हो सकते पूरी तरह से। देखिए, हम थोड़ा सा ना हैप्पीनेस स्प्रेड करना चाहते हैं अपने आसपास, तो इसलिए हम उन टॉपिक से थोड़ा सा दूर रहते हैं। हमारा चैनल ऐसा नहीं था कि यहाँ सुपर पॉपुलर है और लोग वीडियोज देख रहे हैं, वो एक दो वीडियो पे व्यूज आ गए थे, इस वजह से हमारे फॉलोअर्स हो गए थे। हमने बेसिकली ये सोचा कि हम ऐसे वन ऑफ करके नहीं चल सकते हैं, हमें थोड़ा सा कमिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें करना था ये।
0: श्वेता, एक सवाल और बनता है आपसे बीच में कि आप एक जॉब में थी, तो उस जॉब को छोड़ते वक्त कुछ तो आपने पैटर्न देखा होगा कि कुछ तो बेहतर कर सकते हैं।
2: सबसे बढ़िया बात मेरे अंदर मुझे यही लगती है कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ। जैसे कि आप बंजिंग जंपिंग करने जा रहे हो तो आप साथ में ये भी रखो कि आप बैकआउट नहीं करना मुझे, ये मेरे दिमाग में। लेकिन बात कौनती रहती थी कि तू सर्वाइव कैसे करेगी, घर से पैसे नहीं लेने, सबको इंडिपेंडेंट तो हो गए अब। तब मैंने शुरू की फ्रीलांसिंग। पहले शुरू किया अपने आसपास के लोगों से, फ्रीलांसिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और कोई आसपास कर भी नहीं रहा होता। तो फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट भी है मैडम। जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई। फ्रीलांसर्स की ना अलग दुनिया है।
0: कुछ जो अभी यूथ अभी हमारे इस प्रोग्राम से सुन रहे हैं तो उनके लिए आप क्या बता सकती हैं, जो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे उस हिसाब से मैं अपनी प्रोफाइल को चेंज करना पड़ा? कैन यू गिव सम एग्जांपल्स?
2: हाँ, जैसे एक वेबसाइट है फ्रीलांसर, अपवर्क है, एक फाइबर है, तो ये ना पॉपुलर वेबसाइट्स हैं।
3: तो जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं तो हर एक कंटेंट का एक यूएसपी होता है। जब हम आपका कंटेंट देखते हैं तो उसका एक यूएसपी है कि यूनिक वॉइस ओवर्स होते हैं, संस्कृत का यूज करते हैं, कभी शुद्ध हिंदी का यूज करते हैं। कुछ वर्ड्स हैं, जैसे आप रेलवे को बहुत अलग प्रोनाउंस करते हैं,
2: लोपद गामिनी।
3: और उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है?
2: इंस्पिरेशन एक तो देखो, हिंदी ना बहुत सुंदर है, मतलब हिंदी बहुत ही प्यारी लगती है। हमने स्कूल में वैसे सीखा नहीं है जिस तरह से हमें सीखना चाहिए था, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने माध्यम से हम खुद भी सीखें। हम हर बार जब स्टोरी लिख रहे हैं, जैसे ये स्टोरी लिखने बैठा है, जैसे अभी मैं बोलूंगी ना तो कंप्लीट हिंदी नहीं बोल पाऊंगी, मुझे कुछ कुछ वर्ड्स, जैसे इंग्लिश वर्ड्स जो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है तो उसमें, जैसे अभी बोला मैंने तो नहीं आती। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसकी हिंदी लेके आते हैं, क्योंकि लगता है हमें बेहतरीन हिंदी, और हमें ऐसा लगता है कि लोगों को ना बहुत मजा आता है हिंदी सुनने में, जैसे हमें मजा आता है। बाकी आधा हिस्सा इसका भी है इसमें।
1: मुझे लिखने का बहुत पहले से शौक था। हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, भारत माता टेम्पल है, जब हम वहां पे गए तो मैंने सोचा कि यार अगर यहाँ पे इतने सारे गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, हमारा पहला टेम्पल विजिट था वो मेजर, तो हम उनको ऐसे साधारण भाषा में बोल नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल करना पड़ेगा। तो जब हमने किया तो हमें खुद अच्छा लगा, और दूसरा हम एक तरह से हिंदी को थोड़ा सा ना प्रमोट भी करना चाहते थे कि हम ना मुहावरों का बहुत इस्तेमाल करते हैं।
3: आपने एक इंडिया सीरीज शुरू की थी जिसमें आपने 500 डेज का चैलेंज लिया था, आपने पूरा इंडिया घूमा, तो अगर उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें और लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक हर राज्य में अलग कल्चर है, अलग भाषा है, अलग खाना है, तो कुछ एक्सपीरियंस और कुछ ऐसी चीज जो जिससे आप एनकाउंटर हुई हो।
2: एक तो भारत कितना भी घूम लो खत्म नहीं होने का है, बहुत जगह कवर की, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे स्टेट्स में गए, लेकिन अभी तक स्टिल ऐसे लगता है हमें जब कोई वीडियो आती है कि अरे यार यहाँ तो गए ही नहीं, ये तो एक्सप्लोर ही नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि बहुत कुछ जानने को मिला, और बताए ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहां पे हमें लगा कि जब आप घूमना शुरू करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि ये हमारा जो भारत है ना सही में बहुत डाइवर्स है।
0: मतलब जो डाइवर्सिटी हम किताबों में पढ़ते हैं उसका जब वास्तविक रूप हमें देखने को मिलता है तो फिर वो डेफिनेटली वो हमें
2: बहुत ही मजेदार होता
0: है। एक क्रिएटर के तौर पर जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज होती है लाइक ट्राईपॉड है या छोटे मोटे और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो अगर डिफिकल्ट टेरेन में गए मान लीजिए आप, तो वो हैंडल करना कितना मुश्किल है, चैलेंजिंग होता है आपके लिए या इजी है?
1: इसमें जो टेक्निकल आप एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नए क्रिएटर्स के साथ आती है वो ना ओवर थिंक करते हैं चीजों को। हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था हमारे पास एक फोन था उसमें 4K वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं होती थी, और हमारे चैनल 3 महीने में जो हमारा 1 मिलियन हुआ वो सिर्फ उस फोन से हुआ। उसके आप वीडियो क्वालिटी देख लीजिए, एकदम बेकार वीडियो क्वालिटी। मेन मकसद ये होता है कि जो स्टोरी है ना एक पूरा पैकेज आप कैसा दे रहे हैं, अब जो बताना चाह रहे हो पहुंच पा रहा है लोगों तक। आपको सुंदर नहीं दिखाना है, हर चीज सुंदर नहीं हो सकती है या फिर हर चीज आसान नहीं हो सकती है, तो जो हमारे पास है सबसे पहले में उससे ही स्टार्ट करना चाहिए, वो ही इस्तेमाल करना चाहिए। पहले हमारे पास कैमरा था, फिर हमने GoPro भी लिया, फिर हमने अलग अलग कैमराज खरीदे, लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि ये सब ना बस हिंड्रेंस है, ये सब हमारी उसमें काम में बाधा डाल रहा है। अगर मान लीजिए हम ट्रैक कर रहे हैं और कोई लाइक 5 घंटे का ट्रैक है और मैं बैग पैक करके बैग में सामान लेके चल रहा हूँ तो मेरे लिए आसान नहीं है। तो हमने ये रियलाइज किया कि एक अच्छा फोन लीजिए आप और उसी फोन से आप जितना हो सके उतना कीजिए,
0: और छोटे मोटे जो आपको उसकी एक्सेसरीज मतलब जैसे ट्राइपॉड
1: ये चीज, जितना छोटा हो सके मतलब
2: कॉम्पैक्ट रखो।
1: जो गोल है, गोल ये नहीं है कि दूसरों के लिए आसान बनाना है, गोल ये है कि मुझे अपने लिए काम आसान बनाना है।
0: लास्ट सवाल एक्चुअली मेरा आपसे यही होने वाला था कि क्या लगता है फॉलोअर्स और सक्सेस?
2: सक्सेस मेरे दिमाग में ये रहता है कि क्या मैं जो बना रही हूँ उससे मैं खुश हूँ इररेस्पेक्टिव ऑफ फॉलोअर्स। हमें ऐसा लगता है जो हमने इतने 4 सालों में एनालाइज किया है कि हमारी रीच बहुत ज्यादा है, हम जब लोगों से बात करते हैं बहुत मजेदार लगता है, ये है सक्सेस हमारे लिए कि हमारी बात जो है वो इस तरह तक पहुंची कि लोग मजे ले रहे हैं उसके और लोग उसको बहुत दिन तक याद रख रहे हैं। आपने जो वो वाली वीडियो बनाई थी ना उसमें जो आइसक्रीम खाई थी बहुत मजा आया था, वो जो बच्चे, तो वो है सक्सेस हमारे लिए। फॉलोअर्स हमारे लगभग 700K है इंस्टाग्राम पे, जैसे 5 मिलियन उस पर यूट्यूब पे है, तो वो हमारे लिए नंबर है। बस जब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि जो हम दे रहे हैं वो 100% हमारा है, हमको मजा आता है, हम उसमें कंटेंट बनाते हैं।
1: आपके पास जो है जैसा है वहां से स्टार्ट करो, पुट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डोंट एक्सपेक्ट एंड इट विल वर्क आउट अगर आपने इनफ मेहनत करी है तो।
4: श्वेता और सौरभ की बातें सुनकर एक बात साफ हो जाती है कि आज के युवा के लिए करियर का मतलब बदल चुका है, वो अपने लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं अपनी अभिव्यक्ति के लिए और उससे अपने रोजगार के लिए। लेकिन हर युवा का सपना और हर युवा की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। कोई घर से दूर पहाड़ों पर कंटेंट बना सकता है, तो कोई घर की जिम्मेदारियों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी करने का सपना देख रहा होता है, और पढ़ाई भी ऐसी जिससे भविष्य में रोजगार की कुछ उम्मीद हो। और ऐसे में एक नाम जहन में आता है भरोसे का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, जहां शिक्षा की कोई सीमा नहीं, न उम्र की, न दूरी की, न परिस्थिति की। आज हमारे साथ हैं इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू किस तरह नए आयाम छू रहा है और क्या युवाओं के लिए वाकई यहाँ आकाश जितनी संभावनाएं हैं। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
5: जी धन्यवाद।
4: सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति, हालांकि अब उस नीति को आए हुए भी अब समय हो गया है, और जो
0: ओपन लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा है, वर्तमान से इसके भविष्य की संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं?
5: देखिए, अगर हम बात करें दूरस्थ शिक्षा की तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये एक ऐसी शिक्षा पद्धति है कि इसमें विद्यार्थी को केंद्र में रख के सारी मेथोडोलॉजी डिजाइन की जाती है। मतलब इसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी को कुछ हम ऐसी सहूलियतें दें कि वो अन्य काम अगर कर रहा है पढ़ाई के साथ साथ, मान लीजिए स्वरोजगार कर रहा है या किसी रोजगार में है, कोई गृहिणी है या कोई किसान है, तो उनको सहूलियतें मिलें कि वो अपने पेस के अनुरूप अपनी पढ़ाई कर सकें। मुझे लगता है कि ये समय की मांग है और यही प्रयास सरकार का भी है।
0: तो आपको क्या लगता है कि अभी जो जन सामान्य में जो जागरूकता है इस तरह की पढ़ाई को लेकर, इस तरह के कोर्सेज को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, वो किस स्तर पर है और उसको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
5: जागरूकता का स्तर तो काफी अच्छा है, खासतौर से कोविड के बाद जब लोगों ने देखा कि सारे वेज एंड मीन्स बंद हो गए हैं लर्निंग के, तो वहां पर दूरस्थ शिक्षा एक बहुत इम्पोर्टेंट विकल्प के रूप में उभर के आया और अब ये युवाओं की एक तरह से चॉइस बन चुका है। खासतौर से ऐसे युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको एक उच्च कोटे की अध्ययन सामग्री मिलती है जिसको अगर वो पढ़ते हैं तो उनके कंपटीशन में सेलेक्ट होने के संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं। प्लस वो अध्ययन अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसे उन्हें अगर मान लीजिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए कहीं पर कोई काउंसलिंग लेनी है या कॉलेजेस में जाना है या संस्थानों में जाना है तो वो उसको भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। प्लस जो दूरस्थ शिक्षा के कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद से जो डिजाइन किए जा रहे हैं उसपे ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी स्किलिंग का कॉम्पोनेंट है।
0: जी,
5: तो अगर आप सामान्य बीए, बीकॉम, बीएससी भी कर रहे हैं तो उसमें स्किलिंग के ऐसे कॉम्पोनेंट हैं कि अगर आप जो सरकारी सेवा है उसकी ओर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाना चाहते तब भी इन कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बहुत अच्छी रहती है। ऐसे ही जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं वो भी अगर स्किलिंग करना चाहते हैं तो उनके पास भी अवसर है। तो यहां पर सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारा जो युवा हो वो स्किल्ड हो और एजुकेटेड हो।
0: जिनकी पढ़ाई में कुछ ब्रेक लग गया किसी भी कारण से, वापस अगर एक ब्रेक के बाद उन्हें पढ़ाई शुरू करनी है तो किस तरह इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं? अगर इग्नू की बात करें तो
5: देखिए, ब्रेक के बाद अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इग्नू तो इसीलिए बना हुआ है। कोई माइग्रेशन, कोई टीसी की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में इच्छा जागी कि हमारी पढ़ाई छूट चुकी है या हमें अपने नॉलेज को इन्हांस करना है, आप विश्वविद्यालय के किसी पर्टिकुलर पाठ्यक्रम में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं, मिनिमम एज लिमिट है 10+2 आपने किया हो, ज्यादातर कोर्सेज में एलिजिबिलिटी है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इग्नू सपोर्ट करता है। एडमिशन की जो मेथोडोलॉजी है वो ऑनलाइन है। सिंपल इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे, एडमिशन का जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करेंगे, फीस पे करेंगे और अगर वो सारी चीजें सही हैं तो उनको एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा। देखिए, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वी डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट्स बट वी गेट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप आवर टैलेंट। यानी हम सभी के टैलेंट बराबर नहीं होते मगर हमें अवसर मिलता है अपने टैलेंट को बढ़ाने का, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का, अपने नॉलेज को अपडेट करने का। तो ये सारे ऑप्शंस इग्नू जनमानस के द्वार पर उनको उपलब्ध कराता है। अब लोगों को करना क्या है कि एक कदम आगे बढ़ाना है, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रहण करना है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आज की इस पत्रिका में हमने की बेहद खास बातें। हरेंद्र प्रताप सिंह से हमने जाना कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी कभी पुरानी नहीं पड़ती और युवाओं को तो इसमें एक खास भूमिका निभानी है। विशाल पांडे ने बताया कि आकाशवाणी की आवाज और 9 दशकों के इतिहास में युवाओं की भी एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमने सुना श्वेता और सौरभ से कि हिम्मत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और फिर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह से हमने जाना कि शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आपको तय करना है कि किस शिक्षा के जरिए आपको कौन सा रोजगार चुनना है। तो फिर मिलेंगे युवा भारती के अगले अंक में। पत्रिका में हमारे सहयोगी रहे नेत्रा और प्रांजल के साथ। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: मीडियम व्यू पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमें मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। रात्रि के 10 बजे हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: श्रोताओं, लोक वाद्य धुनों के कार्यक्रम पाड़ में आइए सुनते हैं मावली माता पाड़ और फिरंता देवी पाड़। वादक कलाकार है मंगलू और साथी।

पहाड़ में अभी आप सुन रहे थे मावली माता पहाड़। आइए अब सुनते हैं फिरंता देवी पहाड़। वादक कलाकार हैं मंगलू और साथी।

0: लोकवाद धुनों के कार्यक्रम पाड़ में आप सुन रहे थे मावली माता पाड़ और फिर अंता देवी पाड़। वादक कलाकार थे मंगलू और साथी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजे हैं। समाचार
1: शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉ सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।